FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026। इस वक्त प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब प्रारंभ होती है।

FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरूआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हिंदी में समाचार अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं समूह स्वरों में इस देश वंदना के साथ।

समूह स्वर में ये देश वंदना अभी आपने सुनी और अब लीजिए प्रस्तुत है हरिओम शरण की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

हरिओम शरण की आवाज़ में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। और अब अगला भक्ति गीत लीजिए, सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में।

कार्यक्रम आराधना की अंतिम प्रस्तुति अभी श्रोता सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इसी के साथ कार्यक्रम आराधना का ये अंक अब यहीं समाप्त हुआ। प्रातः की

0: 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेती की बात। आज कार्यक्रम में जानकारी का विषय है गोबर और गौमूत्र का जैविक खेती में उपयोग। वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का।
1: किसान संगी हुआ राम राम, जय जोहार। संगवारी हुआ खेती के बात कार्यक्रम में आज हमन बात करबो एक ऐसा हा चीज के जेन हर किसान के घर में आसानी से मिल जाते, फिर ओकर सही उपयोग करे ले खेती में चमत्कार हो सकत है। तो जाना था आज के विषय हवा गोबर और गोमूत्र जैविक खेती में एकर उपयोग। तो अब जानिन गोबर और गोमूत्र सिर्फ कचरा नो है बल्कि खेती पर अमृत के समान होते। तो संगी हुआ आज के समय में रासायनिक खातू और कीटनाशक के लगातार उपयोग ले जमीन के उर्वरता कम हुआ जात है, माटी कड़ा हुआ थे और लागत बढ़त है और उत्पादन के गुणवत्ता ऊपर घलो असर पड़त है। तो यही से आज जैविक खेती के महत्व बढ़ गए। हमारे देसी गाय के गोबर और गोमूत्र जैविक खेती के महत्वपूर्ण आधार आए। तो सबसे पहली बात करत हन गोबर की। गोबर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये सब जौन जरूरी पोषक तत्व है ना वो हर रथे। एकर उपयोग ले माटी नरम रहते, पानी धरे के क्षमता बाढ़ते और माटी में लाभकारी जीवाणु के संख्या घलो बाढ़ते। तो गोबर ले किसान मन बढ़िया कंपोस्ट खातू तैयार कर सकत हैं और खेत के पराली, सूखा पाना और घर के जैविक कचरा जौन होते ना साग भाजी के कचरा हो जाते, ये सब ला गोबर संग मिला के खातू बनाए जा सकत है। ये खातू ला खेत में डारे ले माटी के सेहत सुधरते और फसल तको मजबूत होते। अब बात करें गोमूत्र के। तो गोमूत्र में कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व और प्राकृतिक रोगनाशक गुण रहते। गोमूत्र के सही उपयोग ले फसल में लगैया कई प्रकार के बीमारी और कीड़ा के प्रकोप कम हो सकत है। तो गोमूत्र के उपयोग करके किसान मन जीवामृत तैयार कर सकत हन। जीवामृत बनाए पर लगभग 10 किलो ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन या चना के आटा और थोड़ा कन माटी ला 200 लीटर पानी में मिला के 5-7 दिन तक छांव में रखे जाते और रोज लकड़ी ले जलाए जाते। तैयार होए के बाद इला सिंचाई के पानी संग या खेत में उपयोग करे जा सकत है। अजीवामृत ले माटी में लाभकारी जीवाणु तेजी ले बढ़ते और पौधा ला पोषण जल्दी मिलते। तो एकर अलावा घन जीवामृत घलो बनाए जा सकत है जेकर उपयोग बोनी के समय या पौधा के जड़ में करे जाते। गोमूत्र के उपयोग ले प्राकृतिक कीटनाशक घलो बनाए जा सकत है जैसे कि नीम के पाना होगे, धतूरा होगे, करंज होगे। लहसुन और हरा मिर्ची ला गोमूत्र में कुछ दिन भिजो के छान लेवा, एक घोला पानी में मिला के फसल ऊपर छिड़काव करिया ना, तो एकर ले कई प्रकार के कीड़ा के नियंत्रण में मदद मिलते। ये तरीका ले पर्यावरण में सुरक्षित भी है और फसल हानिकारक रसायन अवशेष ले भी बचाया जा सकत है। तो गोबर के एक और बढ़िया उपयोग है वर्मी कंपोस्ट बनाना। केचुआ की मदद ले गोबर के उत्तम खातु तैयार होते। ये खातु में पोषक तत्व तो अधिक रहते और एकर उपयोग ले फसल के बढ़वार और उत्पादन में भी सुधार दिखते। आज कई किसान मन गोबर ले बायोगैस घलो बनावत हैं। गैस बने के बाद जौन स्लरी बचते ना वो घलो बहुत बढ़िया जैविक खातु बनते। तो किसान भाई बहनी मन गोबर और गोमूत्र के उपयोग ले खेती के लागत कम होते, बाहर ले महंगा खातु और दवाई खरीदे के जरूरत भी कम पड़ते। तो माटी के उर्वरता बरकरार रखना है, पर्यावरण सुरक्षित रखना है और अपन खेती के उपज के यदि गुणवत्ता बढ़ाना है तो गोबर और गोमूत्र के बनाए ये जम्मो खातु और दवाई के प्रयोग करना है। अगर आप मन धीरे धीरे रासायनिक खेती ले जैविक तरीका अपना हाँ, तो निश्चित रूप ले खेत के सेहत और किसान की आमदनी दोनों सुधार हुई। और याद रखो स्वस्थ माटी ले स्वस्थ फसल और स्वस्थ समाज बनते। तो किसान संगी हुआ आज हम जानकारी देहेन आप मल्ला कि गोबर और गोमूत्र के सही उपयोग करके कम लागत में टिकाऊ और लाभकारी खेती करे जा सकत है। तो आज खेती के बाद के विषय रही से गोबर और गोमूत्र के जैविक खेती में महत्व।

0: महत्व। यदि आप मन ये विषय में अधिक जानकारी चाहत हो तो नजदीकी के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग के विशेषज्ञ मन से सलाह जरूर ले। आज के खेती के बात में अत के संगी हुआ, कल फिर नवा विषय के संग भेंट करबो। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।
1: कार्यक्रम खेती के बात अभी श्रोता सुन रहे थे। आज जानकारी का विषय था गोबर और गौमूत्र का जैविक खेती में उपयोग। वाचन स्वर था चित्रलेखा तिवारी का। प्रातः के 6:35 हुए हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रामचरितमानस गायन। गायन स्वर भूपेंद्र सिंह का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।
2: एपिसोड नंबर 130

प्रस्तुत है रामचरितमानस के बाल कांड का ये अंतिम प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राम के यश की कथा कही है।

0: कार्यक्रम रामचरित मानस गान का प्रसारण अभी किया जा रहा था। मुख्य गायन स्वर भूपेंद्र सिंह का, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम में सुनते हैं मृत्यु विषय पर स्वामी आत्मानंद के विचार।
1: को बचाने का उपाय करता है। एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विशेष प्रयास करके मृत्यु के डर को जीत सकता है। अन्य प्राणियों में यह क्षमता होती ही नहीं। मैंने कुछ समय हिमालय में बिताया, कुछ महीने वशिष्ठ गुफा में काटे। तब एक सिद्ध महात्मा वहां वास करते थे। वन पर्वतों में जाने का मेरा वह पहला ही अवसर था। स्वाभाविक ही मुझे भय लगता। जंगली जानवरों की आवाजें रात में सुनाई देती। चारों ओर घना जंगल है। एक रात मैंने दो रीछों को लड़ते भी देखा। भय मेरे भीतर इतना घुस गया कि साधना में विघ्न पड़ने लगा। एक दिन महात्मा जी ने मुझे समीप बुलाया। वे मेरे भय को ताड़ गए थे। उन्होंने स्नेह पूर्वक मुझसे पूछा, अच्छा बेटे, यह तो बताओ तुम्हें इतना डर किस बात का लगता है? मैं कोई उत्तर न दे सका। तब उन्होंने स्वयं उत्तर दिया, मृत्यु का ही न, इसीलिए तो डरते हो ना कि कोई जंगली जानवर कहीं तुम्हें खा न ले। बात ठीक ही थी। मैंने कहा, हाँ महाराज, डर तो मरने का ही लगता है। वे इस पर बोले, अच्छा देखो, थोड़ा इस ढंग से विचार करो। यदि तुम्हारे कपाल में हिंस्र पशु के हाथों मरना लिखा हो, तो जब तुम दिन में शौच के लिए या नदी पर स्नान के लिए जाते हो, तभी कोई जंगली जानवर तुम पर हमला कर सकता है। और यदि तुम्हारे भाग्य में उसके हाथों मरना न लिखा हो, तो रात में चाहे तुम्हारे पास आकर तुम्हें सूंघ जाए, तुम्हें कोई हानि न पहुंचेगी। इस तर्क को मानते हो? बात तो अत्यंत सरल थी। इसे मानने में भला क्या आपत्ति हो सकती थी? यदि भाग्य में किसी के हाथों मरना लिखा हो, तो उसे कोई मेट नहीं सकता। और यदि न मरना लिखा हो, तो हिंस्र पशुओं के बीच रहकर भी मनुष्य सुरक्षित निकल आएगा। इस सीधे तर्क से भला कौन इनकार कर सकता था? मैंने हामी भरी। इस पर उन्होंने कहा, तुम कुछ दिन इसी मंत्र पर ध्यान करते रहो और उसे अपने भीतर भिदा लो। देखोगे भय नाम की कोई चीज न रह जाएगी। मैंने वैसा ही किया। अब मैं सतत इस मंत्र का चिंतन और ध्यान करता रहता। यदि मेरे कपाल में जंगली जानवरों के हाथों मरना लिखा हो, तो वे दिन में भी मुझे मार सकते हैं। और यदि उनके हाथों मरना न लिखा हो, तो रात में यदि वे मुझे जंगल में पालें, फिर भी मेरा बाल बांका न होगा। विधि का विधान मेटा नहीं जा सकता। और सचमुच इस सरल से दिखने वाले मंत्र के जाप ने 15 दिनों में ही भय को जीवन से सदा के लिए निकाल दिया। बात साधारण सी थी, तर्क बिल्कुल सरल था, उसमें कोई अपूर्वता न थी। पर वह एक ऐसे पुरुष के मुंह से निकली थी जिसका जीवन ही अनुभूतिमय था, इसलिए वह मेरे भीतर बैठ गई। हमारे साथ मुश्किल यह है कि हम भूल जाते हैं कि मृत्यु जीवन का एक विलक्षण सत्य है, और इसलिए हम उसके प्रति आंखें बंद करके उसके भय से त्रस्त होते रहते हैं। खरगोश जब शिकारी कुत्ते द्वारा पीछा किए जाने पर भागकर थक जाता है,

0: धूल में अपने सिर को टांगों के बीच गड़ा लेता है और अपने को सुरक्षित समझता है। पर क्या वह सचमुच सुरक्षित है? क्या उसने भय को जीत लिया? शिकारी कुत्ता थोड़ी ही देर में पास आकर उसके मृत्यु भय को तीव्र कर देता है। मृत्यु के भय को जीतने का उपाय यह नहीं कि हम उसके प्रति अपनी आंखें बंद कर लें, पर यह है कि हम उसे जानें और समझ बूझ कर उसका सामना करें। यदि हम आंखें बंद कर लेंगे तो मालूम नहीं हमें कितनी बार मरना पड़ेगा। जब तब यह मृत्यु भय का हवा हमें डराता रहेगा। सच तो यह है कि मृत्यु को भुलाने की चेष्टा ही हमारे भय की जड़ों को जल सींचा करती है। अतएव मृत्यु भय को जीतने का मंत्र यह है कि हम मृत्यु को विस्मृत करने की चेष्टा न करें, बल्कि उसकी अनिवार्यता को जान उसकी उपेक्षा कर दें। गीता का यह श्लोक याद रखें, जातस्य हि ध्रुव मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे नत्वं शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में मृत्यु विषय पर स्वामी आत्मानंद के विचार श्रोता सुन रहे थे। और अब लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आपको जानकारी दे दें आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह और सुबह 9 कार्यक्रम बातों बातों में। हमारे केंद्र से सुबह 10 कार्यक्रम अमराई सुनिएगा। कार्यक्रम में सुनिएगा छत्तीसगढ़ी लोकगीत। कलाकार होंगे उमेश साहू, सरस्वती साहू और तीरथ राम गढ़ेवाल और साथी। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह हम लेकर आएंगे सुबह 7:05 पर और इस कार्यक्रम के बाद आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे का। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने सुबह 10:30 पर हम लेकर आएंगे। विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे सुबह 9:15 पर दिन के 11:00। दोपहर 12:00 से शाम 5:00 तक और रात्रि 9:15 से रात 11:00 तक। सीएफओ विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण शाम 5:00 किया जाएगा। फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें। गीत सुनने का समय होगा शाम 5:35, शाम 6:20 और शाम 7:00 का। शाम 7:20 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। शाम 7:30 पर कार्यक्रम किसानवाड़ी में भेंटवार्ता में सुनिएगा बदलते मौसम में किसानों का सुरक्षा कवच कृषि वानिकी। इस विषय पर श्री अजीत विलियम्स वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर से ली गई जानकारी। भेंटकर्ता होंगे महंगू भैया। गैर फिल्मी नगमों का कार्यक्रम सुगम संगीत रात 8:00 लेकर आएंगे। इसमें सुनिएगा पिनाज मसानी को और रात 8:15 पर होगा कार्यक्रम रजनी गंधा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त हुआ। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्वकप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जा रहा था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

आज सुबह जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। इन्हीं प्रेरक पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आज सुबह में। कीजिए स्वीकार रेडियो साथी खुशबू का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, समय बदलता है, युग बदलते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके विचार हर पीढ़ी को नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और एक नई दिशा देते हैं। आज की इस सुबह हम स्मरण कर रहे हैं ऐसे महापुरुष को जिनके विचार समय की सीमाओं से परे हैं। वे केवल एक सन्यासी नहीं थे, बल्कि युवा चेतना के प्रेरणा स्रोत, ओजस्वी वक्ता, प्रकांड विद्वान, महान दार्शनिक और मानवता के सच्चे उपासक थे। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्होंने 4 जुलाई साल 1902 को बेलूर मठ में महासमाधि ग्रहण करी। लेकिन उनके विचार आज भी उतने ही जीवंत हैं। श्रोताओं, समय बदलता है, परिस्थितियां भी बदलती हैं, लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हर युग में हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार भी ऐसे ही हैं। साथियों, आज हमारे पास आधुनिक तकनीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इंटरनेट है, दुनिया हमारी मुट्ठी में है, लेकिन क्या मन की शांति भी उतनी ही सहज है? क्या आत्मविश्वास, धैर्य और संवेदनशीलता भी उतनी ही बढ़ी है? शायद यही वे प्रश्न हैं जहां स्वामी विवेकानंद हमें रास्ता दिखाते हैं। बचपन से ही जिज्ञासु रहे स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी साल 1863 को नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ। वे हर बात को तर्क की कसौटी पर परखते थे। भारतीय वेद, उपनिषद, गीता, इतिहास, दर्शन, साहित्य के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन और आधुनिक विज्ञान का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया। श्रोताओं, स्वामी विवेकानंद का कहना है, शिक्षा वह है जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाए। आज जब शिक्षा को अक्सर केवल अंकों और नौकरी तक सीमित कर दिया जाता है, तब वे विचार कितना प्रासंगिक लगता है। शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का विकास भी है। साथियों, स्वामी विवेकानंद ने समाज को केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि सेवा को जीवन का आधार भी बनाया। उनका मानना था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसलिए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवा के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में की। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीबों की सेवा करना, विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय, अस्पताल और

सेवा केंद्र स्थापित किए। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य, जरूरतमंद लोगों तक भोजन, दवाइयाँ और कई अनेक सहायताएं भी पहुंचाई और आज भी ये संस्था देश विदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। साथियों, स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण कर गरीबों, वंचितों और युवाओं की समस्याओं को समझा और शिक्षा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को समाज की उन्नति का आधार बताया। उनका विश्वास था कि चरित्रवान और जागरूक युवा ही राष्ट्र का भविष्य बदल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं की शिक्षा और सम्मान पर भी विशेष बल दिया। जाति, भाषा और वर्ग से ऊपर उठकर मानवता, समानता और सेवा का संदेश दिया और यही कारण है कि उनके विचार आज भी समाज को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। श्रोताओं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो और उसी के बारे में सोचो, उसी का स्वप्न देखो, उसी पर कार्य करो, यही सफलता का मार्ग है। आइए साथियों, हम उनके जीवन से तीन बातें अवश्य अपनाएं, आत्मविश्वास, चरित्र और सेवा। इन तीन मूल्यों को अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अगर स्थान दे तो ना केवल उसका जीवन बेहतर होगा बल्कि समाज और राष्ट्र भी अधिक सशक्त बनेगा। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। उनके विचार हमें निरंतर प्रेरित करते रहे और हम सब अपने जीवन में उनके संदेशों को अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करें, तभी ये जीवन हमारा भी सफल होगा। और चलिए अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कार्यक्रम आज सुबह में पुनः स्वागत सभी श्रोता साथियों का। श्रोताओं, स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेने के साथ ही साथ आज हम एक ऐसे जननेता को भी स्मरण करते हैं जिन्होंने सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से सार्वजनिक जीवन को नई गरिमा प्रदान की। आज भारत के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की जयंती भी है। 4 जुलाई यानी आज ही के दिन साल 1898 को उनका जन्म हुआ। वे दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और दोनों ही अवसरों पर उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। गुलजारी लाल नंदा ने श्रमिकों के कल्याण, श्रम सुधार और योजनाबद्ध विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। वे मानते थे कि राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब समाज का प्रत्येक वर्ग सम्मान और अवसर के साथ आगे बढ़े। उनका सादा जीवन, ईमानदार कार्यशैली और जनसेवा के प्रति समर्पण आज भी सार्वजनिक जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम आज सुबह में समय हो चला है आज के ट्रैफिक अपडेट का, तो चलिए आपको सुनवाते हैं ट्रैफिक अपडेट उमा शंकर पांडे से और जानते हैं आपके शहर बिलासपुर में आज क्या रहेगा ट्रैफिक का हाल।
1: ट्रैफिक अपडेट से बिलासपुर में उमा शंकर पांडे से आप सुन रहे हैं अपने जिले की आज की यातायात की स्थिति। आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर नगर निगम अर्थात शहरी क्षेत्र की सभी सड़कों, चौक चौराहों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह शहर से बाहर भी सभी राष्ट्रीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग के अलावा सभी ग्रामीण सड़कों में भी सुगम आवागमन बना हुआ है। अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि जिस प्रकार जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में विभिन्न प्रकार के वाहनों की भी संख्या सड़कों में बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में सहज सुरक्षित आवागमन कठिन है। सड़कों में वाहनों का घनत्व बहुत अधिक है, उसमें भी तेज रफ्तार। ऐसे में थोड़ी सी चूक बड़ी से बड़ी आफत बन सकती है। इसी चूक का परिणाम है कि प्रतिदिन छोटी से बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो ही रही हैं। लोग घायल हो रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं।

0: जानते हैं जिन्होंने इन हादसों में अपनों को खोया है। दोस्तों, इसलिए यदि हम इन छोटी छोटी सावधानियों को अपना कर चलें तो बड़ी सी बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। जैसे सबसे पहले जिस वाहन में आप सफर कर रहे हैं वह पूरी तरह स्वस्थ हो, अर्थात टायर, ब्रेक, लाइट, गियर, स्टीयरिंग आदि बिल्कुल सही काम कर रहे हो। सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण वाहनों को तेज गति में होना पाया गया है, अतः सीमित गति में चले। किसी भी दिशा में मोड़ने से पूर्व रात में इंडिकेटर लाइट और दिन में हाथ से संकेत जरूर करें। वाहन चलाते नजरें सामने सड़क पर रखें, न कि अगल बगल सौंदर्य दर्शन में। वाहन चलाते मोबाइल का प्रयोग हरगिज न करें। ओवरलोड माल या यात्री कभी न चले। दो पहिया में तीन सवारी कभी न चले और हमेशा हेलमेट पहनकर ही यात्रा करें। कार में सीट बेल्ट लगाकर ही चले। नशा कर वाहन भूल कर न चलाएं और क्रोध, मानसिक तनाव या बीमार होने पर वाहन न चलाएं। स्टंट से हमेशा बचकर रहे, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ट्रैफिक अपडेट अभी आप सुन रहे थे उमा शंकर पांडे से। और जाना क्या रहेगा आपके शहर बिलासपुर में आज ट्रैफिक का हाल। श्रोताओं, ऐसी छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखकर यातायात नियमों का पालन करें और अपना और दूसरों का जीवन भी सुरक्षित रखें। साथियों, जब एक हाथ दूसरे हाथ का सहारा बनता है तभी हमारा समाज मजबूत बनता है, और जब मैं की जगह हम की भावना आ जाती है तभी विकास की असली कहानी लिखी जाती है। सहकारिता इसी हम की भावना का उत्सव है। आज जुलाई का प्रथम शनिवार है और पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मना रही है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हम मना रहे हैं। श्रोताओं, ये दिवस केवल एक दिवस नहीं बल्कि उस विचार का उत्सव है जो हमें सिखाता है कि साझा प्रयास, साझी जिम्मेदारी और आपसी विश्वास ही किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। सहकारिता का अर्थ केवल मिलकर काम करना नहीं बल्कि एक दूसरे की उन्नति में सहभागी भी बनना है। जब किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा और छोटे छोटे उद्यमी एक मंच पर आके अपनी क्षमता और संसाधनों को साझा करते हैं तब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है, और यही सहकारिता की सबसे बड़ी विशेषता है। साथियों, भारत में सहकारिता आंदोलन ने कृषि, दुग्ध उत्पादन, बैंकिंग, विपणन और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। और गाँव में सहकारी समितियों ने किसानों को उचित मूल्य, सस्ती ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई, आधुनिक कृषि संसाधन और बेहतर बाजार भी उपलब्ध कराने में अपनी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और छोटे छोटे पशुपालकों को दुग्ध सहकारी संस्थाओं ने आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत और समावेशी विकास की बात कर रहे हैं तब सहकारिता का महत्व और भी बढ़ जाता है। साथियों, ये हमें बताती है कि सफलता अकेले आगे बढ़ने में नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर हम ये संकल्प लें कि अपने परिवार, कार्यस्थल और समाज में सहयोग, विश्वास और सहभागिता की भावना को और मजबूत करेंगे, क्योंकि जब मैं से हम की यात्रा हमारी पूरी होती है तभी विकास का रास्ता सबके लिए खुलता है। और आज श्रोताओं, हम साथ ही साथ याद करेंगे गीतकार भरत व्यास जी को। साल 1950 से 1960 के दशक के हिंदी सिनेमा के दिग्गज गीतकार और कवि रहे भरत व्यास। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्में की, जैसे गूंज उठी शहनाई, दो आंखें, बारह हाथ, सारंगा जैसी फिल्मों के लिए अमर गीत लिखे।

श्रोताओं, गीतकार पंडित भरत व्यास हिंदी सिनेमा के उन महान और कालजयी रचनाकारों में से थे जिन्होंने उर्दू वाले दौर में भी विशुद्ध हिंदी और संस्कृत निष्ठ शब्दावली का उपयोग कर बेहद लोकप्रिय और अमर गीत लिखे। 6 जनवरी साल 1918 को बीकानेर के राजस्थान में इनका जन्म हुआ और अपनी शिक्षा इन्होंने कलकत्ता से पूरी की। आज ही के दिन 4 जुलाई साल 1982 को मुंबई में उनका निधन हुआ। फिल्मी दुनिया में केवल एक गीतकार के रूप में ही नहीं बल्कि कई रूपों में भी वे सक्रिय रहे और अपने करियर की शुरुआत साल 1943 में आई फिल्म दुहाई से बतौर फिल्म के गीतकार के रूप में की और जिस सभी फिल्मों के लिए उन्होंने 9 गाने लिखे। साथ ही शुरुआती दौर में उन्होंने फिल्मों में अभिनय और गायन भी किया। साल 1949 में एक राजस्थानी पृष्ठभूमि की हिंदी फिल्म रंगीला राजस्थान का निर्देशन भी किया और जिसमें उन्होंने 3 गानों का संगीत भी तैयार किया। श्रोताओं, भरत व्यास वी शांताराम के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी, बेहद मशहूर हुई। उन्होंने राजकमल कला मंदिर बैनर के तहत कई फिल्में बनाई, 2 आंखें 12 हाथ, तूफान और दिया, 9 रंग और स्त्री जैसी कालजयी फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत लिखे। और आपको हम अब सुनवाते हैं उन्हीं का लिखा गीत फिल्म 2 आंखें 12 हाथ से।

श्रोताओं, जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं की कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना है। और स्वामी विवेकानंद के इन्हीं विचारों के साथ दीजिए कार्यक्रम आज सुबह यहीं।

आज सुबह। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण अभी किया जा रहा था। सुबह के 7:30 हुए हैं और अब समय हुआ है श्रोताओं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म लोफर से लीजिए सुनिए। मोहम्मद रफी की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: लोफर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और अब आपको सुनवाते हैं हम आपके हैं कौन इस फिल्म से, लता मंगेशकर एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ों में रविंद्र रावल का लिखा और राम लक्ष्मण के संगीत से सजा ये नगमा।
1: Let's start the fun!

0: पहले तो आएगी ना।
1: सुगंध क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे।
1: पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
6: और अब लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाजों में सिर्फ तुम इस फिल्म का गीत। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम शवन।

0: सिर्फ तुम इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की थी, समीर के बोल थे, नदीम शवन का संगीत।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज
5: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली
0: और अब लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज में गुलजार के लिखे बोल, आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत फिल्म इजाजत से।

0: इजाजत फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज़ थी, गुलजार के बोल, आरडी बर्मन का संगीत। और अब इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग

0: ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी

0: दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @IRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्ट्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक वित्तीय तकनीकी निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के 2रे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को 2रे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया।

0: सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी एप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas.

0: श्रोताओं नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बच्चों से संबंधित कुछ विशेष रोग के बारे में। हम देखते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल और खेलकूद ये काफ़ी आवश्यक है, लेकिन बदलते दौर में खान पान की अनियमितताएं और कम शारीरिक मेहनत होने के कारण मोटापा और कई तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। और श्रोताओं, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है बच्चों को स्वास्थ्य को लेकर। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटी मोटी बीमारियां बच्चों में होती रहती हैं, लेकिन कभी इस तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं कि जिसका पता देर से चलता है। और जब वो बात हमारे मूत्र तंत्र की हो, हमारा जो मूत्र तंत्र है उसमें कई अंग शामिल होते हैं और इन अंतरूनी अंगों में हमारा किडनी जो है वो काफ़ी विशेष होता है। किडनी का जो काम होता है शरीर में मूत्र के छानने जैसी प्रक्रिया इसमें शामिल होती हैं, और किडनी के सही काम ना करने से कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। और श्रोताओं, किडनी की समस्याएं बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में होती हैं। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम बच्चों से संबंधित किडनी की कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे और किडनी से संबंधित बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं, इनका कारण क्या होता है और इनका उपचार क्या हो सकता है, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर विनय राठौर, किडनी रोग विशेषज्ञ हैं और MD बाल रोग विशेषज्ञ हैं एम्स रायपुर में। तो डॉक्टर विनय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया कि जो बच्चों में आजकल मोबाइल की लत है उससे जो आंखों पे बड़ा दुष्प्रभाव होता है, तो इस तरह की अगर हम बात करें, आजकल जो है बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में मेहनत की कमी हो गई है, बच्चे घर में रहना पसंद करते हैं, खेलना कूदना कम हो गया है, तो कुछ बच्चों में बीमारियां होती हैं छोटी मोटी जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन कुछ बीमारी होती है जैसे हमने बताया किडनी से संबंधित, कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं?
1: जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि किडनी की बीमारियां बच्चों में भी होती हैं, और कई बार हम जब बताते हैं तो लोग आश्चर्य करते हैं कि किडनी की बीमारियां बच्चों में भी हो सकती हैं क्या। सामान्यतः यह देखा जाता है कि किडनी की बीमारियों को बड़ों की बीमारी माना जाता है, शुगर वालों की, जिनको शुगर है, जिनको BP है, इनकी बीमारी माना जाता है, मगर बच्चों में काफ़ी किडनी की बीमारियाँ भी होती हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। लगभग लगभग 10% की जो नेफ्रोलॉजी की OPD होती है उनमें बच्चे होते हैं, और इन बच्चों में कई तरीके की किडनी की समस्याएं होती हैं। तो जहां तक बड़े हैं उनको मुख्य समस्या शुगर, BP, इनकी वजह से किडनी की बीमारी होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें मुख्य जो किडनी की बीमारियाँ होती हैं वो तकरीबन आधे केसेस में जन्मजात होती हैं। जन्मजात कहने का मतलब, इस बीमारी को कहा मेडिकल भाषा में कहा जाता है काकुट, जिसका मतलब होता है कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड किडनी। तो ये एक समस्या होती है जिसमें हमारे जो मूत्र और किडनी के जो जो पेट में हमारी जो बनते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार के कुछ दुविधाएं होती हैं जो आगे जाकर के किडनी की बीमारी, बच्चों में किडनी की बीमारी का कारण बनती हैं। तो एक ये सबसे बड़ी समस्या होती है। इसके अलावा कुछ बीमारी होती है जो किडनी में कॉमन होती है, जैसे कि पेशाब में इन्फेक्शन, UTI, तो ये भी एक तरीके की बच्चे का की किडनी की बीमारी है। और यदि बच्चों में UTI हो रहा है तो ये अमूमन ये बताता है कि बच्चे के किडनी में या फिर उनकी जो मूत्र नलिकाएं का जो तंत्र है उसमें कुछ ना कुछ खराबी है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या होती है या जो कॉमन समस्या होती है वो होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये एक बीमारी है जो हमारी किडनी है वो छन्नी की तरह काम करती है, वो हमारे खून में से जितनी भी गंदगियां हैं उनको निकालती है और अच्छे जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे प्रोटीन है इनको हमारे शरीर के अंदर रखती है। तो इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी में ये दिक्कत आती है कि किडनी है वो हमारे शरीर के अंदर से प्रोटीन को ही बाहर निकालने शुरू कर देती है, और ये एक बहुत कॉमन समस्या है, इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, और ये बच्चों में ये देखी जाती है। इसके अलावा जो और कुछ बीमारियां होती हैं जो किडनी बच्चों में देखी जाती है उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, यानी कि ऐसी बीमारियाँ जिसमें किडनी में इन्फ्लामेशन बहुत बढ़ गया हो। कुछ बीमारियों को AKI कहा जाता है। AKI का मतलब होता है एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी जैसे किसी को दस्त हुआ या मलेरिया हुआ, उस समय किडनी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और उसकी वजह से किडनी की बीमारी होती है। और एक और कॉमन बीमारी होती है पथरी। तो हम हमेशा सोचते हैं कि पथरी बड़ों की बीमारी है, मगर कुछ बच्चों को भी पथरियों की बीमारी होती है और पथरी की बीमारी की वजह से भी किडनी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो ये लगभग लगभग कारण है। कहने का मतलब ये है कि हमें सजग होना चाहिए कि बच्चों में भी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है और उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, तो इसमें किन

0: किन एज ग्रुप के बच्चों को आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव होता है?
1: जी, तो जैसे मैंने कहा कि किडनी की बीमारियां बहुत छोटे बच्चों से लेके, इनफेक्ट जो बच्चे पैदा हुए हैं उनसे लेके 18 साल तक के बच्चों में सभी में मिलती हैं। और जो कंजेनेटल एबनॉर्मलिटीज, जैसे मैंने बताया कि काकुट जो बीमारी बोल रहे हैं, वो अमूमन छोटे बच्चों में होती है। मगर ऐसा नहीं होता है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि ये हमें बाद में यानी कि 13-14 साल की उम्र में भी पता चलती है। तो सारी उम्र, इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि पेट के अंदर से ही ये बीमारियाँ शुरू हो जाती है। तो आज के डेट में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कुछ किडनी की बीमारियाँ जो होती हैं वो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से 20वें सप्ताह में भी जो प्रेगनेंसी होती है उसमें भी पता चल जाती है। तो ये सब जो बीमारियाँ हैं जो बच्चों की, वो सारे एज ग्रुप्स में देखी जाती हैं। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी है, टिपिकली 3 से लेकर 8 साल की उम्र के बीच में बच्चों को देखी जाती है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ये सब बीमारियां हैं, ये कुछ बड़े उम्र के बच्चों में भी, जैसे 13-14 साल के बच्चों में भी है, उनमें भी देखी जाती है। तो ये बीमारियां सारे एज ग्रुप को ही इन्वॉल्व करती हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जो मैं आपने बताया कि जो काफ़ी छोटे होते हैं उनमें भी किडनी डिसीज होती है, तो छोटे बच्चे तो जैसे उनमें कुछ तकलीफ होगी वो बता भी नहीं पाएंगे, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते
1: जी,
0: हैं?
1: ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सामान्यतः बड़े जो होते हैं वो अपनी शुगर बीपी के बारे में वो नपा जाके हॉस्पिटल में नपवा लेते हैं या
0: जी
1: शुगर का चेक करा लेते हैं। उसके बाद उनको पता होता है कि उनको किडनी की बीमारी हो सकती है, तो वो टेस्ट कराते रहते हैं। या कुछ और कारण होता है, जैसे पेशाब में जलन वगैरह होती है, तो वो तुरंत बता देते हैं कि भाई पेशाब में जलन है, अस्पताल में जाके डॉक्टरों को दिखा देते हैं। मगर छोटे बच्चों के साथ ये मुश्किल होती है कि वो अपने लक्षण नहीं बता पाते, और लक्षण बता पाते हैं तो वो कुछ वेग होते हैं कि हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन फिर भी किडनी के पेशेंटों में कुछ कुछ लक्षण होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे उनमें से सबसे कॉमन है वो है सूजन आना। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन होता है। आंखों में आप देखेंगे तो सूजन आता है। अब दिक्कत ये होती है, कई बार ये सूजन है सुबह सुबह तो रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे सूजन चले जाती है। तो माँ बाप, उनको लगता है कि ये कोई लक्षण बहुत चिंताजनक नहीं है, मगर यदि आंखों के नीचे यदि सूजन आ रहा है तो ये चिंताजनक विषय है और इसमें डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। उसी तरीके से दूसरा जो कॉमन लक्षण होता है वो पेशाब में खून का आना, ये दिख जाती हैं तो तुरंत माँ बाप सलाह ले लेते हैं। तीसरा कॉमन लक्षण होता है कि पेशाब बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना। अगेन, इसमें जो है माता पिता अपने डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मगर कुछ चीज़ें होती हैं जो लक्षण जिनको हम इग्नोर करते हैं, उनमें से सबसे एक है, कॉमन है, वो है बुखार का आना। तो यदि बुखार आ रहा है किसी बच्चे को, 1 साल से नीचे बच्चे को या 2 साल से नीचे नीचे बच्चों को, और उसको कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, उसको वायरल फीवर नहीं लग रही है, सर्दी खांसी नहीं है और बुखार आया हुआ है, तो ये अमूमन लक्षण होता है कि किडनी में या यूरिनरी ट्रैक में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से बच्चों को यूटीआई हुआ है, यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है। और इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि बार बार बच्चों को बुखार आ रहा हो, बुखार का कारण पता ना चल रहा हो, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और किडनी के बारे में सोचना चाहिए। एक और कॉमन लक्षण जो हम भूल जाते हैं वो है सरदर्द, और ये बड़े बच्चों में होता है। बड़े बच्चों में सरदर्द होता है तो हम उसको सोचते हैं कि ये सिंपल सरदर्द है और दर्द के दवाइयाँ दे देते हैं और उसके बारे में हम ज़्यादा चिंता नहीं करते। और कई बार डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वहाँ पे भी यही होता है कि सरदर्द की दवाई देता है। हम ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं कि किडनी से समस्या से भी रिलेटेड हो सकता है। किडनी बीमारी जब होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर से सरदर्द होता है। तो हमें यदि सरदर्द हो रहा है तो एक बार ज़रूर से बच्चे का प्रॉपर तरीके से किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाके बीपी का चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सरदर्द भी एक बहुत बड़ा कारण होता है किडनी की बीमारी होने का, और ये लक्षण हम अमूमन मिस करते हैं। इसी के तरीके से कुछ और तकलीफें होती हैं, जैसे कि किडनी के आसपास में एरिया में दर्द होना। ये दर्द हम पेट दर्द की तरह इग्नोर करते हैं, कई बार सिंपल पेट दर्द है इस तरीके से, मगर यदि ये पथरी का निशानी हो सकता है। तो इसलिए यदि पेट में दर्द हो रहा हो, बहुत तेज दर्द हो रहा हो, तो डॉक्टरों को दिखाना चाहिए और आगे के टेस्ट कराने चाहिए। तो ये कुछ कॉमन लक्षण हैं, हमें कभी भी इग्नोर करना नहीं चाहिए। बीपी के बारे में, सर दर्द को, बुखार को, ये तीन चीजें जो हम इग्नोर करते हैं। बाकी चीज़ें, पेशाब में कमी होना, पेशाब में खून का आना या सूजन आना, ये हमें दिख जाती है और इसके बारे में हम सलाह ले लेते हैं। तो मैं श्रोताओं से इसके बारे में सजग रहने के लिए कहूँगा कि छोटे बच्चों में यदि या बच्चों में सर दर्द हो रहा है या उनको इस तरीके की कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके प्रति, किडनी बीमारी के प्रति सजग रहें।
0: डॉक्टर साहब, हम बातें और करेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक गीत सुनें।
1: तो मेरी पसंद का एक गीत, हम तेरे प्यार में साला आराम को बैठे,
0: तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर वीना राठौर जी से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं एम्स रायपुर में, किडनी रोग विशेषज्ञ हैं और बाल रोग में MD भी हैं। डॉक्टर वीना जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे जो बच्चे हैं उनमें किडनी से संबंधित कुछ रोग के बारे में, तो आपने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जैसे सिम्टम्स होते हैं, उस सिम्टम्स से हम पहचान सकते हैं कि इनमें किडनी के रोग भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे जो बच्चे थोड़े बड़े हैं एज में, तो उनमें किस तरह के सिम्टम्स आमतौर पर देखे जाते हैं जो प्राइमरी किडनी के डिसीज के सिम्टम हो सकते हैं?
1: जी, तो अब जैसे कि मैंने बताया था कि छोटे बच्चों में तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, वो बता नहीं पाते, लेकिन बड़े बच्चे में जो दिक्कतें होती हैं वो बता सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो सिम्टम बताते हैं वो पेशाब में जलन का है, पेशाब में रोक नहीं पाने का है, या पेशाब बार बार जाने का है। तो ये जो लक्षण होते हैं ये किडनी डिजीज को बता सकते हैं। थोड़े बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक और चीज़ जो हम बहुत किडनी की बीमारियों में दिखते हैं वो है ग्रोथ और डेवलपमेंट की कमी का,
0: जी
1: और ये माँ बाप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और ये अगेन एक ऐसी चीज़ है जो मिस हो जाती है। यदि आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, यदि आप बच्चे की वेट नहीं बढ़ रही है, तो आप ये सोचते हैं कि ये खाना पीने की वजह से नहीं हो रहा है या किसी अन्य कारण से नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि हाइट नहीं बढ़ रही है और ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे की, ये भी एक मार्कर हो सकता है कि बच्चे को किडनी की बीमारी है। और अगेन इसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह लेनी

0: की जरूरत होती है। कंप्लेन बताते हैं कि पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब में झाग आ रहा है, पेशाब में कुछ अलग तरीके से स्मेल आ रही है। ये एक कुछ लक्षण होते हैं जो बड़े बच्चे हमें बता सकते हैं, और ये गाइड करते हैं कि बच्चे को कोई किडनी की संभावित बीमारी हो सकती है। इसी बात में मैं एक और चीज़ जो बताना चाहूँगा कि पेशाब का धार, ये पर्टिकुलरली जरूरी होता है पुरुषों के लिए, जो मेल बच्चे होते हैं, तो पेशाब का धार में यदि कमी आ रही है वो भी एक मार्कर होता है कि पेशाब में बच्चे के मूत्र में तंत्र में कोई ना कोई दिक्कत है, और इसके लिए भी हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, आप जब हमने इसके लक्षणों की बात की है, तो यदि बच्चों में कुछ इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट और जांचें हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा आप किडनी रोग से ग्रसित होने वाला है या हो गया है?
0: जी, तो जब भी हमें बच्चों में इस तरीके के लक्षण दिखें तो हमें पीडियाट्रिशियन से संपर्क करना चाहिए या नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं, बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं आजकल, इवन जिला अस्पताल और उससे भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी अवेलेबल होते हैं। वो है सिंपल पेशाब की जांच कि पेशाब में प्रोटीन कितनी जा रही है, पेशाब में माइक्रोस्कोपी करके देखा जा सकता है कि उसमें पस है कि नहीं है। दूसरा, खून के कुछ जांच होते हैं जिसमें जिसको सीरम क्रिएटिनिन कहा जाता है। क्रिएटिनिन एक प्रोडक्ट होता है जो हमारी किडनी छान के हमारे शरीर से बाहर निकालती है, तो उसका लेवल यदि बढ़ा होता है वो एक मार्कर होता है कि किडनी की बीमारी है कि नहीं है। जैसे मैंने बताया ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट, अगेन आप जाके, अब बच्चों में ब्लड प्रेशर मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए पीडियाट्रिशियंस के पास हमें जाना होता है वो, ताकि वो तरीके से ब्लड प्रेशर ले सके। तो ये तीन मेजर टेस्ट होते हैं। इसके अलावा एडवांस टेस्ट में जैसे मैं बताऊँ तो एक अल्ट्रासाउंड कराना कि पेशाब के रास्ते में किडनी कितनी है, क्या उसका आर्किटेक्चर है, ब्लेडर कैसा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। इसके अलावा कई बार जैसे मैंने बताया कि बच्चों का यदि पेशाब का फ्लो कम है तो यूरोफ्लोमेट्री नाम की एक टेस्ट होती है, MCU, एक्स्ट्रा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, कई बार CT स्कैन, ये कराने पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि किस बच्चे को क्या बीमारी है, बट बेसिक टेस्ट जो है वो पेशाब की जाँच, क्रिएटिनिन मेजर करना और एक सोनोग्राफी, ये तीन से अधिकतर बीमारियों का पता लगाया जा सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे इन सब जांचों के बारे में आपने बताया, और इन जांचों में यदि प्रारंभिक स्तर पर पता चल जाता है कि किडनी की डिसीज होने वाले हैं या किडनी की जो रोग है प्रारंभिक स्तर पर है, तो उसके ठीक होने या उससे रिकवरी के कितने चांसेस होते हैं?
0: जी, अब ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि हम कोई भी जांच इसलिए करते हैं कि हम उसका पेशेंट को इलाज करके रिकवरी कर सकें,
1: जी।
0: और यही मकसद भी होना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़रूरी तो ये होता है कि दो तरीके की बीमारियां होती हैं, जैसे एक नेफ्रोटिक, एक एक्यूट किडनी इंजरी, एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो जहाँ तक एक्यूट किडनी इंजरी है वो रिवर्सिबल होता है, यानी उसका सही तरीके से इलाज हो जाए तो रिवर्स हो जाती हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कंप्लीट रिवर्सिबल पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सकता है, और मैनेज करके उनके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, अगेन एक बीमारी है जिसमें 70 से 80% पेशेंटों को हम इलाज करते हैं तो कंप्लीट रिकवरी होने की गुंजाइश होती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हमें बीमारी का पता जल्दी से जल्दी पता चले, ताकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करके मैक्सिमम आउटकम को हम ले सकें। यदि बीमारी का ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो अमूमन सारी किडनी की अधिकतर बीमारियां रिकवरी एक्सपेक्टेशन होती है।
1: तो डॉक्टर साहब, कई बार किडनी रोगों से ग्रसित लोगों या बच्चों के लिए कहा जाता है कि डायलिसिस की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये डायलिसिस क्या होता है?
0: जी, जैसे कि मैंने बताया कि कई बार लोग आश्चर्य करते हैं कि बच्चों में भी डायलिसिस होती है क्या, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों में भी डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस क्या होता है? हमारी किडनी मुख्यतः हमारी शरीर से जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। जैसे जैसे किडनी फेल होती जाती है तो वैसे वैसे हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तब इसको आर्टिफिशियली तरीके से इसको शरीर के बाहर से निकाला जाता है, तो उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस दो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेट में हम एक कैथेटर लगा देते हैं, उस कैथेटर में हम एक PD फ्लूइड आता है, पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड, उसको हम पेट के अंदर डालते हैं और सारी शरीर की जो गंदगी होती है वो उस पेरिटोनियल फ्लूइड में इकट्ठा हो जाती है, फिर उस इकट्ठा फ्लूइड को हम शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। तो यह प्रक्रिया को पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। छोटे बच्चों में यही एक डायलिसिस का माध्यम होता है, क्योंकि जो मशीनें होती हैं, अगला बात मैं बताने वाला हूँ हीमोडायलिसिस के बारे में, वो इनमें करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो छोटे बच्चों में ये काफ़ी कारगर तरीका होता है, जिससे ये डायलिसिस के माध्यम से हम वेस्ट प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा मैंने बताया हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में एक मशीन होती है जिसमें हम शरीर के से खून को

0: एक डायलेजर कहा जाता है, जिसको जिसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसमें डाला जाता है। वहाँ से शरीर की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल जाती हैं, और फिर जो जो अच्छी खून है उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलने के बाद जो खून है उसको वापस पेशेंट के या बच्चे के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। तो इसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है। हीमोडायलिसिस में एक मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, डायलिसिस टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है, एक संस्थागत रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हॉस्पिटल में ही किया जाता है। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ट्रेनिंग दे देते हैं माँ बाप को, तो उसके माध्यम से वो घर बैठे बैठे भी अपने घर में पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते।
1: तो डॉक्टर साहब, कोई बच्चा क्रोनिक किडनी डिसीज से पीड़ित है तो अब उसे डायलिसिस की आवश्यकता कब पड़ेगी?
0: जी, अब ये भी जैसे मैंने कहा कि कई बार हमें लोगों को समझाने में मुश्किल होती है कि बच्चों में भी किडनी की बीमारी हो सकती है क्या, उसी तरीके से माँ बाप को या लोगों को समझाने में ये भी मुश्किल होती है कि क्या बच्चों को भी डायलिसिस होता है।
1: जी
0: तो जी, बच्चों का भी डायलिसिस होता है, और बच्चों को डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब किडनी बिल्कुल इस लेवल तक काम करना बंद कर दे कि उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सारे शरीर से बाहर ना निकल पाएँ और शरीर को हार्म कर रही हों। अमूमन जो मेज़र किया जाता है वो GFR में से, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है, उसके माध्यम से मेज़र किया जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब लेस देन 10-15 और 10 से लेस के आसपास होती है तब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। बट ये और भी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि डायलिसिस की ज़रूरत बच्चे को कब पड़ेगी, इंक्लूडिंग उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसका हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसमें खून बन रहा है कि नहीं बन रहा है इत्यादि। जैसे मैंने बताया, किडनी का सिर्फ एक ही काम नहीं होता कि वो पेशाब को, हमारे शरीर के खून को छाने, खून भी बनाना एक हमारे किडनी का बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा किडनी हमारी हाइट, वेट, बोन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि इन सब चीज़ों में भी कमी आती है तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस दो तरीके के होते हैं। छोटे बच्चों में पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत इफेक्टिव और कारगर होती है, और हीमोडायलिसिस जो बड़े बच्चे हैं उनमें, कई बार छोटे बच्चों में हीमोडायलिसिस नहीं किया जा सकता। अमूमन 10 से 12 kg जब होता है, या 5 से 6 साल बच्चे, उनमें ही हीमोडायलिसिस की संभावना दिखती है। ऐसे बच्चों में पेरिटोनियल डायलिसिस एक अच्छी मोडालिटी है। बड़े बच्चों में हीमोडायलिसिस भी किया जा सकता है।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अब जब डायलिसिस की नौबत आ गई है, और ऐसा भी पता चल रहा है कि कभी कभी इस तरह भी होता है कि डायलिसिस के बाद भी आराम नहीं होता है, तो हम देखते हैं कि बड़ों में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहा जाता है, तो क्या बच्चों में भी ऐसी नौबत आ सकती है?
0: जी बिल्कुल, जो जिन बच्चों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, या जैसे मैंने बताया आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्योंकि अब ये बीमारी रिवर्स नहीं हो सकती, तो ऐसी बीमारियों में बच्चों में भी ट्रांसप्लांट की नौबत आ सकती है। और इनफैक्ट ट्रांसप्लांट बच्चों में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है उनमें यदि ट्रांसप्लांट हो जाए तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि एक नई किडनी मिलने से बच्चे की ग्रोथ, हाइट और स्कूल जाना, ये सब बहुत आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस में रहने में। लेकिन अब इसमें डोनर्स होते हैं, वो अमूमन घर के रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ये डोनेट करते हैं किडनी, और ब्लड ग्रुप मैच करने के बाद, बाकी और टेस्ट करने के बाद यदि ट्रांसप्लांट हो जाता है तो बच्चों की ज़िंदगी बहुत हद तक नॉर्मल हो जाती है। छत्तीसगढ़ में अभी कैडेवर ट्रांसप्लांटेशन और डिसीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन का भी प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो उसके माध्यम से भी जिनके पास डोनर नहीं है, ब्लड ग्रुप मिल नहीं पा रहा है, ऐसे जो मरीज होते हैं वो उसमें अपना नाम लिखा सकते हैं इस प्रोग्राम में। और छत्तीसगढ़ की तरफ से एक बहुत अच्छा पहल ये लिया गया है कि यदि कोई ब्रेन डेड डोनर जो डोनेट करने वाला है वो बच्चा है, तो वो किडनी बच्चों को ही अलॉकेट की जाती है, या बच्चों को प्राथमिकता मिलती है उसमें अंगदान में के माध्यम से। और अभी अभी हाल ही में ये एक बच्चे को ट्रांसप्लांट हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों की किडनी की ट्रांसप्लांट एक बहुत ही अच्छी पद्धति है जब किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाए, और इसके माध्यम से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए जाते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो एम्स है, यहाँ भी कई तरह की आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं अभी उपलब्ध हो चुकी हैं, तो हम देखें तो किडनी डिसीजेस के बारे में, खासकर बच्चों के संबंध में, तो अभी एम्स में कौन कौन से जो ऐसे चिकित्सक की सुविधाएं उपलब्ध हैं?
0: जी, तो एम्स रायपुर में काफ़ी हद तक किडनी, बच्चों की किडनी से रिलेटेड बीमारियों के इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स है जो सबसे पहले बच्चों को देखता है और वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है। वहाँ पे बच्चों की अधिकतर किडनियों की बीमारी जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या यूटीआई है, इस तरीके की बीमारियों का वहाँ पे इलाज हो जाता है और वहाँ पे डेली ओपीडी चलती है, वहाँ पे संपर्क किया जा सकता है। सीरियस केसेस में पीडियाट्रिक इमरजेंसी है, वो 24/7 खुली रहती है, वहाँ संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी और डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी है, जहाँ पे बच्चों की पेशाब के रास्ते हैं उसमें यदि कोई समस्याएं होती हैं तो उनके ऑपरेशन की जरूरत

0: जाती है उनकी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और उसमें चाहे जैसे मैंने बताया कि मेल बच्चों में पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व एक नाम की एक बीमारी होती है जिसमें एक वॉल्व होता है हमारे पेशाब के रास्ते में, तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, या वेसाइटो जो को यूरेट्रिक रिफ्लक्स होती है जिसमें पेशाब हमारा बाहर निकलने के बजाय कई बार वापस बैक किडनी की तरफ जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है, उसकी आधुनिक इलाज उसका उपलब्ध है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बात की कि यदि किडनी फेल हो जाए और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े तो डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में डायलिसिस दोनों पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस बच्चों के लिए इसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ट्रांसप्लांट के लिए अगेन हम एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक क्लिनिक चलाते हैं जिसकी ओपीडी हर गुरुवार को नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है, वहाँ पे हम बच्चों के लिए डेडिकेटेड ओपीडी होती है, तो वहाँ ऐसे पेशेंटों को हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए जो टेस्ट होते हैं जो तैयारियाँ होती हैं वो उस ओपीडी में भी की जाती हैं।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि किडनी डिसीजेज ना हो, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, हम किडनी के रोगों से कैसे बच सकते हैं?
0: जी, अब रोकथाम बहुत जरूरी है किडनी की बीमारियों में। आज जैसे आपने बताया कि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है
1: जी,
0: वो इतनी चेंज हो चुकी है कि हम एक्सरसाइज, बच्चों में एक्टिविटी, खेलना कूदना ये बहुत कम हो गया है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है
1: जी,
0: और इसके साथ साथ हमारा सेवन जो खाना है वो अब घर तक की घर का बना हुआ खाना से हटके बहुत हद तक फास्ट फूड की तरफ जा चुका है
1: जी,
0: और इस फास्ट फूड में अधिकतर बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल और खान पान ये हमारी किडनी को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं
1: जी,
0: और लॉन्ग रन में जो बच्चे हैं जो तो अभी हैं उनको अगले 50 साल 60 साल तक की ज़िंदगी उनके सामने है तो इसमें ये बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं, धीरे धीरे एक्युमुलेट करती जाती हैं नुकसान। तो इसलिए जैसे आपने पहले भी कहा था कि स्वस्थ लाइफस्टाइल
1: जी,
0: एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल ये बहुत जरूरी चीज है। नमक का सेवन कम से कम रहना चाहिए, कोशिश बच्चों के लिए भी ये लागू होता है। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि हम एक्टिविटी बना के रखें, कम से कम बच्चे खेलें एटलीस्ट।
1: जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है और हमारे श्रोता जो भी कार्यक्रम सुन रहे होंगे वो डॉक्टर साहब की बताई गई बातों पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर होना अच्छा है, जब तक कोई अनहोनी ना हो उससे पहले हमें गंभीर हो जाना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और ख़ासकर जब बात शरीर के अंदरूनी अंगों की होती है, किडनी जैसे अंगों की होती है, तो हमें ज़रूर सजग रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपने आज हमारे श्रोताओं को बच्चों से संबंधित किडनी रोग के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे बच्चों में किडनी से संबंधित रोग लक्षण कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर विनय राठौर से भेंटवार्ता। भेंट करता थे रमा शंकर। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें सुनिए मॉनसून की स्थिति के मद्देनजर किसानों को खेती संबंधी सलाह। इस विषय पर कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्णदास से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो चुका है। हालांकि जून महीने में मानसून ने पिछले सालों के मुकाबले निर्धारित समय अवधि से थोड़ी देरी से छत्तीसगढ़ में दस्तक दी, और दस्तक देने के बावजूद पूरे जून महीने में हम लोग देखें तो औसत से कम बारिश प्रदेश में दर्ज की गई है। इस वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। हालांकि अब मानसून सक्रिय है और बारिश भी हो रही है। मानसून के आगमन से पहले ही मौसम विभाग ने इस साल यह आशंका जता दी थी कि इस वर्ष मानसून के दौरान औसत से कम बारिश हो सकती है। इसकी वजह अल नीनो प्रभाव बताया जा रहा है। इन सब स्थितियों के बीच हमारे जो किसान भाई हैं वो क्या करें? खासतौर से जो धान उगाने वाले किसान हैं वे धान की कौन सी किस्म लगाएं, या फिर धान के बजाय अन्य कौन सी फसल लगाना इन स्थितियों में फायदेमंद हो सकता है? इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि मौसम विज्ञान विभाग में प्रोफेसर डॉ

0: गोपी कृष्ण दास। डॉक्टर दास, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद सर।
0: डॉक्टर दास, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पिछले सालों से यदि हम तुलना करें तो इस बार मानसून की स्थिति कैसी लग रही है, क्योंकि किसान थोड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ में अगर हम वर्षा के आंकड़ों को देखें
0: जी,
1: इस वर्ष मानसून थोड़ा सा देरी से प्रवेश किया है।
0: जी
1: वैसे तो लंबे समय के आंकड़ों का अध्ययन करें
0: जी,
1: तो 2004, 2009, 2023 में भी मानसून जो है 24, 26 और 23 जून को पहुंचा था।
0: जी
1: तो ये इस प्रकार की स्थिति पहले भी निर्मित हुई है।
0: जी
1: मगर अपन खेती किसानी के संदर्भ में देखें तो मानसून निश्चित रूप से 10-15 दिन के डिले से यहाँ पर पहुंचा है।
0: जी
1: और अभी जो है खेती किसानी में धान की बुआई थोड़ा सा जो है पिछड़ा है।
0: जी
1: बाकी उत्पादन पर अभी प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना नहीं है।
0: अच्छा, एक बात और है डॉक्टर साहब, कि मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल अल नीनो का प्रभाव देखा जा रहा है। कुछ तो ये कह रहे हैं कि सुपर अल नीनो प्रभाव है। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या मानते हैं कि बारिश की स्थिति कैसी हो सकती है?
1: अलनीनो के कारण जो है यह देखा गया है
0: जी
1: कि भारतवर्ष में वर्षा की मात्रा में कमी या सूखे पड़ने की संभावना होती है।
0: जी
1: और अगर यह स्थिति जारी रहेगी तो इस प्रकार की आशंका जो है हो सकती है या इसकी स्थिति निर्मित हो सकती है।
0: जी
1: अभी वर्तमान में जो है ऐसा कोई लक्षण दिख नहीं रहा है।
0: जी
1: सामान्य रूप से थोड़ा डिले हुआ है, जो कि पहले भी कई बार हो चुका है।
0: जी
1: तो अभी हम कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, परंतु सावधानी बरतना ही उचित होगा।
0: जी डॉक्टर दास, ये बताएं कि जैसे यदि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं, और इस वर्ष जैसे मानसून ने देरी से दस्तक दी है और थोड़ी सी अनियमितता अभी देखी जा रही है, तो इन स्थितियों को देखते हुए ये जो फसलें हैं, चाहे धान हो या दूसरी फसलें हो, उनकी बुआई की अभी इस समय क्या स्थिति है?
1: छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से जो है धान की खेती की जाती है।
0: जी
1: लगभग खरीफ में 48-49 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है, जिसमें 38-39 लाख हेक्टेयर में धान रहता है। बाकी क्षेत्रों में मक्का है, मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, तिल है, मूंगफली है, इत्यादि फसलों की खेती की जाती है।
0: जी
1: और धान की खेती चूंकि बहुतायत क्षेत्र में होती है, अधिकांश क्षेत्र में होती है, तो धान के बारे में हम कह सकते हैं कि इसकी खेती तीन प्रकार से की जाती है प्रमुख रूप से।
0: जी
1: पहला तो जो है सूखी बुआई,
0: जी
1: जिसमें किसान अपना जो है खुर्रा बोनी कहते हैं वो कर चुके हैं।
0: जी
1: दूसरा है बतर बुआई, जो मानसून का वर्षा होने के पश्चात जब खेत जो है वर्केबल कंडीशन में या काम करने योग्य अवस्था में आता है तब उसकी बुआई की जाती है।
0: जी
1: इसी को गीली बुआई भी कहते हैं।
0: जी
1: और तीसरा है रोपा विधि से धान की खेती करना।
0: जी
1: अब रोपा विधि से धान की खेती करने के लिए ही पर्याप्त समय है। बतर बुआई या गीली बोनी करने के लिए अभी अपने किसान भाई को इंतजार करना चाहिए।
0: जी
1: क्योंकि अभी सभी क्षेत्रों में समान रूप से जो है पानी नहीं गिर पाया है। अगर खेत ठीक से अगर गीला नहीं होगा या जमीन में जो है नमी का प्रवेश अंदर तक नहीं होगा तो बीज के अंकुरण के प्रभावित होने की संभावना है।
0: जी
1: तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि धान की जो है बतर बुआई करने के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करें। लगभग 1 से 1.5 फुट का जब जमीन गीला हो जाता है उसके बाद जब खेत बोने लायक स्थिति में आए तब बतर बुआई करना चाहिए, और इसी स्थिति में दलहन तिलहन की ही बुआई करनी चाहिए।
0: जी तो इसमें ये भी बताइए कि जैसे धान में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है ना, धान के उत्पादन में, तो क्या कोई ऐसी किस्में हैं धान की जिनको जो मानसून के अभी जो वर्तमान स्थिति है या आगे जैसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो क्या कोई ऐसी किस्में हैं जिनको उगाने से किसान को मतलब नुकसान की आशंका ज्यादा ना हो?
1: छत्तीसगढ़ में जो है 3-4 टाइप की भूमि है।
0: जी
1: अपन मुख्य रूप से करें भाटा, मटासी, डोरसा, कन्हार।
0: जी
1: भाटा जमीन थोड़ा सा एकदम जो है ऊपरी हिस्सा रहता है।
0: जी
1: इसमें धान की फसल की खेती नहीं करनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: उसके बाद मटासी, डोरसा और जो है कन्हार भूमि में धान की खेती की जाती है और करने में कोई नुकसान नहीं है।
0: जी
1: इस वर्ष वर्षा की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है वो जल्दी पकने वाली किस्मों का चयन करें।
0: अच्छा,
1: इससे क्या होगा कि यदि किसी भी कारण से अल नीनो की स्थिति में वर्षा की मात्रा में कमी आती है तो हमारा धान का उत्पादन प्रभावित ना हो, और इसके लिए जो है 110 से 125 दिन के बीच की वैरायटी का चयन करना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा, अब इसमें जैसे ये तो आपने बता दिया कि जो जल्दी पकने वाली फसल है उनको यदि किसान चुनते हैं तो उनके लिए ज्यादा ठीक होगा। इसमें मतलब कौन से समय का ठीक रहेगा, क्या अभी और इंतजार करें किसान या क्या करें?
1: नहीं, अभी तो जैसे मैंने बताया खुर्रा बोनी किसान भाई कर चुके हैं।
0: जी
1: उसमें तो अब कोई ये गुंजाइश है नहीं।
0: जी
1: अब बतर बोनी के लिए गीली बुआई करने के लिए अपने पास समय है।
0: जी
1: तो जैसे ही मानसून जो है अपना पूरे रूप में आ जाएगा या अगर खेत गीला हो जाता है, जहां जहां कुछ जगह पर अच्छी बारिश हुई है
0: जी,
1: वहां किसान भाई जो है गीली बुआई में या बतर बोनी में जा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में छिड़काव विधि से बुआई ना करें। अगर कतार में बुआई करें

0: तो मान लो ड्राट की स्थिति पैदा होती है, सूखा की स्थिति पैदा होती है, तो खरपतवारों की मात्रा बढ़ जाती है, तो दो कतार के बीच में मशीन से या निंदाई करने में आसानी होता है।
1: जी, इसमें एक बात और है डॉक्टर दास, के जो चाहे वो केंद्र सरकार हो या छत्तीसगढ़ सरकार हो, इस बात के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो धान के अलावा दूसरी फसल जैसे दलहन तिलहन है वो भी उगाएं। इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसको फसल हम विविधीकरण भी कहते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप सलाह किसानों को देना चाहेंगे?
0: फसल विविधीकरण के लिए बहुत दिनों से प्रयास जारी है
1: जी
0: और इस वर्ष राज्य शासन ने एक बहुत अच्छी योजना निकाली है,
1: जी
0: जिसमें अगर किसान भाई धान को छोड़कर
1: जी
0: अगर दलहन तिलहन की खेती करते हैं
1: जी
0: या अन्य फसल लगाते हैं तो उनको प्रति एकड़ 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
1: जी
0: तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस वर्ष जो है एलनिनो के कारण जो है पानी कम गिरने की या अनियमित वर्षा होने की संभावना है,
1: जी
0: इस स्थिति में जो भर्री जमीन है या ऊपर की जमीन है जिसमें पानी कम रुकता है उसमें दलहन तिलहन की खेती को अवश्य रूप से करें, राज्य शासन की योजना का लाभ उठाए। इससे फसल विविधीकरण में जो है फायदा होगा या उसकी जो है मात्रा बढ़ेगी जिसका किसान को भी फायदा मिलेगा।
1: जी बिल्कुल। इसमें एक बात और है कि जैसे बारिश में कुछ कमी देखी जा रही है या एक अनियमितता की स्थिति है, तो फसलों के उत्पादन पर जैसा आपने भी कहा थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये जो जोखिम होता है किसानों को, उससे बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को केंद्र और राज्य सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं, जैसे एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और भी यदि कोई योजना हो तो उनके बारे में हमारे किसान भाइयों को विस्तार से बताएं।
0: देखिए, जोखिम से बचाने के लिए जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक जो है प्रमुख योजना है,
1: जी
0: जिसमें किसानों को मात्र 2% तक प्रीमियम देना पड़ता है
1: जी
0: और 98% जो है प्रीमियम की राशि है, बीमा की जो प्रीमियम की राशि है वो
1: जी
0: आधा आधा केंद्र और राज्य सरकार जो है वहन करती है।
1: जी
0: तो जो किसान भाई लोन लेते हैं उनका तो वहां पर ऑटोमेटिक जो है बीमा हो जाता है,
1: जी
0: जो किसान भाई लोन नहीं लेते हैं वो भी आवश्यक रूप से अपने फसल का बीमा कराएं,
1: जी
0: जिससे अगर सूखा की पड़ता है तो जो फसल का नुकसान होगा तो उसका जो है भरपाई बीमा के माध्यम से हो सकता है।
1: जी
0: इसी तरह से उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित पुनर्गठित फसल बीमा योजना की जो है व्यवस्था की गई है, तो जो फसल सब्जी भाजी खेती करते हैं या फल फूल की खेती करते हैं उनको भी इस योजना का लाभ लेना चाहिए,
1: जी
0: इससे जो है जोखिम को कम करने में मदद मिलेगा।
1: एक बात और है डॉक्टर साहब, आपने बात की धान की, बात की दलहन तिलहन की, बात की ये जो नकदी फसल होती हैं कुछ, है ना, जैसे उद्यान की फसल की भी आपने बात की, कुछ नकदी फसल होती हैं क्योंकि कई बार उनका बड़ा अच्छा दाम भी मिल जाता है बाकी फसलों की तुलना में, इनके बारे में हमारे किसानों को बताएं कि कौन कौन सी फसल छत्तीसगढ़ की जो जमीन है, आपने बताया कि अलग अलग तरह के अलग अलग इलाकों में जमीन है, तो किस तरह की जमीन में किस तरह की नकदी फसल उगाई जा सकती है और इनका बाजार में इनका मूल्य किस तरह से मिल सकता है, कितना फायदा हो सकता है?
0: नकदी फसल में तो हम लोग प्रमुख रूप से जो है जैसे सब्जी वाली फसलों को अभी कह सकते हैं,
1: जी
0: जिसका बाजार में तत्काल और तुरंत जो है लाभ मिलता है या ज्यादा लाभ मिलता है।
1: बिल्कुल
0: अभी आप देखेंगे कि ये राज्य शासन ने जो है बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन बोर्ड की भी योजनाएं हैं
1: जी
0: जिसमें पाली हाउस का भी निर्माण किया गया है अनुदान के माध्यम से।
1: जी जी
0: तो पाली हाउस में हम साल भर सब्जी की खेती कर सकते हैं और उन सब्जी वाली फसलों की खेती कर सकते हैं जो सामान्य मौसम में आसानी से जैसे वर्षा काल में नहीं हो पाता है,
1: जी
0: और इन फसलों को लगाएं। इसमें खरीफ की जितने भी सब्जियां हैं वो लगा सकते हैं
1: जी
0: और धनिया को लगा सकते हैं, धनिया बहुत हाई रेट में बिकता है, मिर्ची हाई रेट में बिकता है और जिसको जो पसंद है, क्योंकि इसमें हमारा तापक्रम और वर्षा से बचाव हो जाता है, टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है,
1: जी
0: नमी भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो
1: जी
0: सब्जी वाली फसलों को पाली हाउस में लगाएं तो
1: जी
0: बाजार में बढ़िया कीमत मिलता है,
1: अच्छा
0: हर प्रकार की सब्जी लगा सकते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में गन्ने की खेती होती है
1: जी
0: तो गन्ने की फसल को भी जो है किसान भाई लगा सकते हैं, राज्य शासन ने कुछ क्षेत्रों में इसको बढ़ावा भी दिया है,
1: जी
0: इसको भी जो है खेती करके जो है लाभ कमा सकते हैं।
1: एक बात और है डॉक्टर दास की, अभी जैसे पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति बनी उससे जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी आपूर्ति प्रभावित हुई है और राज्य सरकार नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, किसानों को प्रोत्साहित कर रही
0: प्रोत्साहित कर
1: है,
0: रही है।
1: तो फसल की पैदावार पे क्या इसका कोई असर तो नहीं पड़ता है और कितना अच्छा है ये?
0: नैनो यूरिया जो है बहुत ही उपयोगी, मतलब जो है सूक्ष्म जो है पोषक तत्व तो है, नाइट्रोजन ही है,
1: जी
0: मगर इसको कम मात्रा में जो है देकर हम जो है हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं
1: अच्छा
0: या बल्क में जैसे जो चीज उपलब्ध नहीं है
1: जी
0: यूरिया जैसे अभी नहीं हो पाएगा, तो
1: जी
0: हम नैनो यूरिया का जो है उत्पादन करके इसका उपयोग करेंगे तो इसका जो नाइट्रोजन की कमी से उत्पादन कम होने की संभावना है उससे हम बच सकते हैं।
1: जी
0: तो किसान भाइयों को इसका प्रयोग करना ही चाहिए और ये कम मात्रा में अपन खेत में डालते हैं, क्योंकि इसको इस कम मात्रा में जो है घोल के डाल देंगे
1: जी
0: तो लाभ तो उतना ही होता है।
1: बिल्कुल
0: और अगर युद्ध के समय जो है उर्वरक की कमी महसूस की जा रही है
1: जी,
0: उस स्थिति में

0: हमारे किसान भाइयों को सलाह है कि वो बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करें। नैनो
1: अच्छा
0: यूरिया तो है, ये बायो फर्टिलाइजर भी
1: जी
0: उपलब्ध है,
1: जी
0: जैविक खादों का उपयोग करें। और हमारे वर्तमान में बहुत सारी जो है देसी विधियां हैं,
1: जी
0: गोबर के माध्यम से जो है हम जो है उसको पानी में घोल कर जो है कुछ दिन रख कर उसमें कई सारे चीजें मिलाकर जीवामृत घनामृत सब बनाते हैं,
1: जी
0: इसका भी उपयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। ये सब का उपयोग करेंगे तो यूरिया के ऊपर निर्भरता कम होगी
1: जी
0: और उसकी कमी महसूस नहीं होगा और
1: जी
0: उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्पादन हमारे या तो उतना मिलेगा जितना पहले मिल रहा था
1: जी
0: या फिर बढ़ोतरी भी हो सकती है।
1: बिल्कुल
0: और इसका दूसरा फायदा है
1: जी
0: कि हमारा जो मृदा के स्वास्थ्य है उस पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है।
1: जी
0: रासायनिक खादों के प्रयोग से मृदा के स्वास्थ्य को हानि होती है, खराब होता है। इसको अपने को रोकने के लिए ये सब चीजों का प्रयोग करें। इसी तरह से आने वाले समय में
1: जी
0: जब हम जैविक खेती की बात करते हैं
1: जी
0: तो हमको तो, या केमिकल फ्री रसायन मुक्त खेती की बात करते हैं
1: जी
0: तो हमको धीरे धीरे इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा।
1: जी
0: तो हमारे पास एक विकल्प है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, इसका भरपूर मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है।
1: जी
0: अगर किसान पहले से अपना डिमांड रख दे
1: जी
0: तो हम उतने मात्रा में उनको उत्पादन करके उनको दे सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी में ही आपसे पूछने ही जा रहा था कि जैसे जो आपने बताया कि जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य के लिए, मृदा के स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है, तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसानों को क्या-क्या उपाय करना चाहिए?
0: किसानों को सबसे पहले तो उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना है।
1: अच्छा
0: अगर उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा, आर्गेनिक मैटर अगर बढ़ जाता है
1: जी
0: तो अपने आप में वो बफर एक्शन शुरू हो जाते हैं, उसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन बहुत रहता है। तो
1: जी
0: माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है, हम जितने भी रसायन खेत में पहले से प्रयोग कर चुके हैं
1: जी
0: और उसका जो रेसिडुअल इफेक्ट है
1: जी
0: उन सबको न्यूट्रलाइज कर देगा वो।
1: बिल्कुल
0: एक बार जब रसायन फ्री हो जाएगा हमारा खेत
1: जी
0: तो जैविक खेती के लिए वो प्रमाणित हो जाता है। प्रमाणीकरण में ये कंडीशन रहता है कि
1: जी
0: विगत 3 वर्षों से वहां जो है रसायनों का जो है प्रयोग ना किया गया हो। अगर
1: जी
0: हम गोबर खाद या जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाते हैं
1: जी
0: तो निश्चित रूप से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं
1: जी
0: और आने वाले समय में जैविक खेती की संभावनाएं बढ़ेंगी।
1: जी
0: इसके उत्पाद का जो है हमको मार्केट उपलब्ध कराना पड़ेगा, इसका रेट भी ज्यादा मिलेगा।
1: जी
0: और किसान भाई जो है रसायनों का जितना से धीरे धीरे प्रयोग कम करें,
1: जी
0: मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएं,
1: जी
0: जल का संरक्षण करें,
1: जी
0: तो हमारा जो है मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दास, आपने बड़े विस्तार से हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत अच्छा लगा, और निश्चित रूप से हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको इस जानकारी का लाभ पहुंचेगा। एक बार पुनः हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये सुन रहे थे आप कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास के साथ हमारी बातचीत। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
2: कार्यक्रम बातों बातों में अभी आप सुन रहे थे। इसमें मॉनसून की स्थिति के मद्देनजर किसानों को खेती संबंधी सलाह, इस विषय पर कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ. गोपी कृष्ण दास से ली गई भेंट वार्ता अभी आपने सुनी। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की थी।
3: कार्यक्रम बातों बातों में अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

फिर से बहुत स्वागत आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आप सोनू निगम की आवाज में और साथियों की आवाजों में सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था, अमाल मलिक और प्रीतम ने मिलकर इस गीत की धुन बनाई थी। दोस्तों आज है 4 जुलाई, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सहकारिता को बढ़ावा देना और ये बताना कि मिलजुल कर काम करने से समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन अधिक सशक्त बनता है। एक अकेला इंसान जिस काम को थोड़ी अधिक समय में कर सकता है, वही काम साथ मिलकर कम समय में किया जा सकता है और साथ मिलकर सफलता तय करना ये बताना है। जब व्यक्ति अपने हित के साथ समाज के हित को भी महत्व देता है तब विकास का रास्ता मजबूत होता है। आइए संकल्प लें, सहयोग और साझेदारी की इस भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वर्ष 2026 की ये थीम है, शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता। ये थीम समाज में न्याय और एकजुटता को बढ़ावा देने में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। सुनते हैं हम ये गाना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गदर 2 फिल्म का गीत आप उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में सुन रहे थे। इस गीत को संगीत से सजाया था मिथुन ने। आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं तक, आपसे आज्ञा चाहते हैं आज का कार्यक्रम समाप्त करने की। दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक कम चर्चित संगीतकार की बातें।
1: मंद

गाने ऐसे हैं जिनमें उनकी बांसुरी ने मधुरता पैदा की है। और कई गाने ऐसे हैं जहां सुनाई देती है उनकी शहनाई की मीठी तान। इस संगीतकार ने भले ही बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन उनका काम अपने आप में बेमिसाल रहा।

रामलाल चौधरी का जन्म 15 अगस्त 1922 को बनारस में हुआ था। बचपन से ही उन्हें शहनाई बजाने का शौक था। शहनाई और बांसुरी शौकिया तौर पर वो बजाया करते थे। मशहूर संगीतकार राम गांगुली के भाई कमल ने रामलाल की बांसुरी और शहनाई सुनी तो उन्हें बनारस से बंबई ले आए। सन 1944 में रामलाल समंदर के किनारे वाले इस शहर मुंबई में आए। 14 साल तक वो संगीतकार राम गांगुली के सहायक रहे। राम गांगुली को राज कपूर की पहली फिल्म आग मिली। 1948 में राज कपूर की फिल्म आग में संगीतकार राम गांगुली के लिए कई गानों में रामलाल ने बांसुरी और शहनाई बजाई।

रामलाल ने मुंबई में पृथ्वी थिएटर में 80 रुपए की तनख्वाह पर शहनाई वादक की नौकरी कर ली थी। पृथ्वी थिएटर में एक नाटक चल रहा था, शकुंतला। इस नाटक की संगीत टोली में काम करते हुए रामलाल का परिचय राज कपूर से हुआ था। रामलाल बांसुरी और शहनाई बजाया करते थे। इसी दौरान वी शांताराम ने रामलाल को राजकमल स्टूडियोज में काम करने की पेशकश की। तनख्वाह ज्यादा थी तो रामलाल राजकमल स्टूडियोज में आ गए और बन गए शहनाई और बांसुरी वादक। वी शांताराम की कई फिल्मों में उन्होंने शहनाई और बांसुरी बजाई है, जैसे फिल्म सुबह का तारा।

इसी दौरान राजकमल स्टूडियोज यानी वी शांताराम ने रामलाल को बाहर की फिल्में करने की इजाजत भी दे दी। स्वतंत्र संगीतकार के रूप में रामलाल को पहला मौका मिला पी एल संतोषी की फिल्म तांगावाला में। पी एल संतोषी यानी प्यारे लाल संतोषी एक गीतकार और निर्माता, आज के जमाने के निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता। फिल्म तांगावाला में मुख्य भूमिका में थे राज कपूर और वैजयंती माला। रामलाल का करियर शुरू हो रहा था लेकिन अफसोस ये फिल्म बंद हो गई। अब रामलाल बतौर बांसुरी और शहनाई वादक फिल्म उद्योग में अपना काम करते रहे। बतौर संगीतकार उनकी ख्याति अभी बननी बाकी थी लेकिन बतौर बांसुरी और शहनाई वादक उनकी बहुत ख्याति थी। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी शहनाई के सुर छेड़े, जैसे फिल्म मुगले आजम।

यानी 1952 में रामलाल को एक बार फिर से स्वतंत्र संगीतकार बनने का मौका मिला। फिल्म थी हुस्न बानो। इस फिल्म के गाने लिखे थे साहिर चांदपुरी ने। इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत सुधा मल्होत्रा की आवाज में।

सन 1957 में आई फिल्म नागलोक। भरत व्यास का लिखा ये बेमिसाल गाना इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफी ने गाया था। संगीत रामलाल का था।

0: పశే అంబరేచన్ గృబాలు నాదు బోలే.
1: సన్ 1960 में आई माया मच्छिंद्र. इस फिल्म के गाने पंडित मधुर ने लिखे थे. ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक मधुर गीत.

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म माया मच्छेंद्र में संगीतकार रामलाल के सहायक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसके बाद रामलाल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक मिला। वी शांताराम ने अपनी फिल्म सेहरा में संगीत देने के लिए रामलाल को चुना और इस फिल्म के सारे गाने बेमिसाल बने। जा, जा, जा।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना सुनिए। इसमें रामलाल जी की शहनाई भी सुनाई पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि रामलाल ये गाना खुद गाना चाहते थे।
1: तुम तो रहो सलाम।

0: फिल्म सेहरा का सबसे प्रसिद्ध गाना है ये। आपको बता दें, इस गाने में पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया है।
1: तो

0: संगीतकार रामलाल बरसों पहले विविध भारती के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी।
1: शांताराम बापू हमको बुलाए, वहीं से फिर 200 रुपया शुरू हुआ। फिर बसंत देसाई साहब के साथ बाहर काम भी करना शुरू हुआ पिक्चर विक्चर में, तो वहां से जरा हमको कुछ ज्यादा पैसे मिलने लगा। हमको 150 मिलता था पृथ्वी थिएटर्स में और शंकर जी को 120 मिलता था और जयकिशन जी को 80 रुपया मिलता था। कौन वो लोग बाद में आए थे, टांगा वाला पी एल संतोषी साहब ने हमको दिया था 1950 में। वो हमारे गुरु थे टांगा वाला, राज कपूर वैजयंती माला। उसके गाने रिकॉर्ड हुए थे मगर फिल्म नहीं बनी, उसके गाने रिकॉर्ड हुए। उस गाने से हुसन बानू बनी, वो गाना खरीद कर हुसन बानू बनाए प्रोड्यूसर।
2: गाना कौन सा था?
1: प्यार करने का आया जमाना, अब चलेगा न कोई बहाना, हो प्यार करना पड़ेगा। लता भाई ने गाया था।
0: वी शांताराम ने इसके बाद बनाई गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में भी संगीतकार के तौर पर रामलाल को चुना गया। गीत गाया पत्थरों ने एक बेमिसाल फिल्म थी। इस फिल्म के जरिए जितेंद्र ने अपनी यात्रा शुरू की थी। हीरोइन थी वी शांताराम की बेटी राजश्री। इस फिल्म का आशा भोसले का गाया ये गाना सुनिए।

गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने एक और कमाल किया, उन्होंने राजी किया जयपुर घराने की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर को एक फिल्मी गाना गाने के लिए, और ये गाना कालजयी बन गया। राग दुर्गा पर आधारित था ये गाना।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले होंगे।
1: यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार सुनिए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संभावित अल्प वर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से IIM रायपुर में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश भर के सभी जल भंडारों की निगरानी करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की सुचारू और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चालू खरीफ सीजन और संभावित अल्प वर्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को किसानों के लिए खाद बीज और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश को 46,000 टन से अधिक DAP उर्वरक की आपूर्ति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण रोजगार पर विशेष

0: जोर देते हुए सभी जिलों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्य योजना तैयार रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि संभावित अल्पवर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। बैठक में बताया गया कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त रासायनिक खाद उपलब्ध है। राज्य सरकार ने किसानों से कम वर्षा की आशंका को देखते हुए धान की रोपा पद्धति के बजाय डीएसआर यानी सीधी बुआई तकनीक अपनाने की अपील की है। सरकार के अनुसार इस तकनीक से पानी और लागत दोनों में बचत होती है तथा फसल जल्दी तैयार होती है। किसानों को दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती, बीज उपचार, संतुलित उर्वरक उपयोग, वर्षा जल संरक्षण और ड्रिप तथा स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने की भी सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में शुरू होगा। शिविर में विकसित छत्तीसगढ़ के विजन, सुशासन और भविष्य की विकास रणनीति पर मंथन किया जाएगा। नीति, नवाचार, नेतृत्व और परिणाम आधारित शासन व्यवस्था पर राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। शिविर में कृषि, उद्योग, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, सुशासन और जनसेवा सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा होगी। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आज समापन होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल इस सम्मेलन का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधि जारी रहेगी। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालु अमरनाथ जी गुफा मंदिर पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीर्थ यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संभावित अल्प वर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से IIM रायपुर में शुरू होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई। श्रोताओं, आज कार्यक्रम अमराई में हम आपको सुनवाएंगे उमेश साहू, सरस्वती साहू और तीरथराम गढ़ेवाल और साथियों के गाए कुछ चुनिंदा छत्तीसगढ़ी लोकगीत। तो चलिए कार्यक्रम का पहला लोकगीत आपको सुनवाते हैं उमेश साहू, सरस्वती साहू और साथियों की आवाज़ों में।

कार्यक्रम का पहला लोकगीत अभी आपने सुना उमेश साहू और सरस्वती साहू और साथियों की आवाज़ों में, और अब आपको सुनवाते हैं अगला लोकगीत तीरथ राम गढ़ेवाल और साथी की आवाज़ों में।

0: कार्यक्रम अमराई में अभी आपने सुना तीरथ राम गढ़ेवाल और कुंवाराबाई मार्को को। अगला लोकगीत इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: कार्यक्रम अमराई अभी श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से FM बैंड 103.2 MHz पर। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति। स्वर है उमेश साहू और सरस्वती साहू का।

कार्यक्रम अमराई में आज श्रोता सुन रहे थे उमेश साहू, सरस्वती साहू, तीरथराम गढ़ेवाल और साथियों के गाए कुछ चुनिंदा छत्तीसगढ़ी लोकगीत। और अब इसी के साथ कार्यक्रम अमराई का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। सुबह के 10:30 हुए हैं, सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला तराना लीजिए सुनिए, इश्क तेरा। इस फिल्म से आवाज़ें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की है, मनोज यादव के बोल, स्वप्निल का संगीत।

इश्क तेरा इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ दी थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने, मनोज यादव के बोल थे, संगीत दिया था स्वप्निल एच डिगडे ने। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत बर्फी फिल्म से, स्वर पेपॉन और सुनिधि चौहान का, नीलेश मिश्रा के बोल, प्रीतम का संगीत।

और अब अगला तराना लीजिए, सुनिए सत्य प्रेम की कथा। इस फिल्म से आवाज़ें हैं इसमें अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की, बोल गुरप्रीत सैनी और अली सेठी की है, संगीत दिया है रोचक कोहली और अली सेठी ने।

0: कार्यक्रम नए तराने में अब समय हो चला है श्रोताओं आज के ट्रैफिक अपडेट का। तो चलिए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट उमा शंकर पांडे से।
1: नमस्कार, ट्रैफिक अपडेट आप बिलासपुर में उमा शंकर पांडे से आप सुन रहे हैं। अपने जिले की आज की यातायात की स्थिति, आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर नगर निगम अर्थात शहरी क्षेत्र की सभी सड़कों चौक चौराहों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह शहर से बाहर भी सभी राष्ट्रीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग के अलावा सभी ग्रामीण सड़कों में भी सुगम आवागमन बना हुआ है। अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि जिस प्रकार जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में विभिन्न प्रकार के वाहनों की भी संख्या सड़कों में बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में सहज सुरक्षित आवागमन कठिन है। सड़कों में वाहनों का घनत्व बहुत अधिक है, उसमें भी तेज रफ्तार। ऐसे में थोड़ी सी चूक बड़ी से बड़ी आफत बन सकती है। इसी चूक का परिणाम है कि प्रतिदिन छोटी से बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो ही रही हैं। लोग घायल हो रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। इसकी पीड़ा वे ही जानते हैं जिन्होंने इन हादसों में अपनों को खोया है। दोस्तों, इसलिए यदि हम इन छोटी छोटी सावधानियों को अपना कर चलें, तो बड़ी सी बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। जैसे सबसे पहले जिस वाहन में आप सफर कर रहे हैं वह पूरी तरह स्वस्थ हो, अर्थात टायर ब्रेक लाइट गियर स्टीयरिंग आदि बिल्कुल सही काम कर रहे हो। सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण वाहनों को तेज गति में होना पाया गया है, अतः सीमित गति में चलें। किसी भी दिशा में मुड़ने से पूर्व रात में इंडिकेटर लाइट और दिन में हाथ से संकेत जरूर करें। वाहन चलाते नजरें सामने सड़क पर रखें, न कि अगल बगल सौंदर्य दर्शन में। वाहन चलाते मोबाइल का प्रयोग हरगिज न करें। ओवरलोड माल या यात्री कभी न चले। दो पहिया में तीन सवारी कभी न चले और हमेशा हेलमेट पहनकर ही यात्रा करें। कार में सीट बेल्ट लगाकर ही चले। नशा कर वाहन भूल कर न चलाएं और क्रोध मानसिक तनाव या बीमार होने पर वाहन न चलाएं। स्टंट से हमेशा बचकर रहें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ट्रैफिक अपडेट अभी आप सुन रहे थे उमा शंकर पांडे से। और अब कार्यक्रम नए तराने में आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं ट्यूबलाइट इस फिल्म का ये गीत, स्वर आतिफ असलम का।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं

0: फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मिर्जया से ये गीत। स्वर है मामे खान और शंकर महादेवन और साथियों का, गुलजार ने इसे लिखा है, संगीत शंकर एहसान लॉय का।

मामे खान, शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में मिर्ज़िया फिल्म का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे। गीत के बोल गुलजार के थे, संगीत शंकर अहसान लॉय का। और अब इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम नैतरानी यहीं समाप्त हुआ। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं। अब हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था दूसरा आदमी। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे राजेश रोशन।
1: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
2: जब पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लैप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते। हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
1: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म लवर्स का दो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। युगल स्वर लता मंगेशकर और अमित कुमार के हैं, रचना आनंद बख्शी की और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित की, फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार थे रविंद्र जैन। इस गाने के साथ ही आज का ये चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, बारिश प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो चिलचिलाती गर्मी से हमें राहत दिलाता है और ताजगी और ठंडक प्रदान करता है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही मिट्टी से एक बहुत ही मनमोहक और सौंधी खुशबू आने लगती है। आसमान में काले काले बादल छाते ही मन हर्षित हो जाता है, है ना? और ये बादल तो हमेशा ही मानव मन में कल्पना जगाते हैं, प्रेम और उमंग जताते रहे हैं। चाहे वो नीले आसमान में तैरते रुई जैसे गोले हों, या सावन के गहरे उमड़ते घुमड़ते बादल या काली घटाएं, ये सभी हमारे मन को बहुत लुभाती हैं। हमारे ही मन को क्यों, हमारे फिल्मकार, हमारे गीतकार इससे अछूते थोड़ी रहे हैं। वो भी इन काले बादलों पर अपना मन हार बैठते हैं और अपनी फिल्मों में या अपने गीतों में इन काले काले बादलों को स्थान देने लगते हैं। तो आज मैटिनी शो में उन्हीं कारे कारे बदरवा पर लिखे कुछ गीत हम लेकर आए हैं।

तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कारे बदरा पर आधारित कुछ फिल्मी गाने। और जब बात कारे बदरा की चले और फिल्म भाभी का गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ये फिल्म थी भाभी, 1957 की फिल्म है और लता मंगेशकर की आवाज थी, संगीतकार चित्रगुप्त थे, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। और एक भावुक और बहुत ही मधुर गीत लिखा गया और इस गाने में अभिनेत्री श्यामा ने बहुत ही शानदार अभिनय किया था।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में लिया है। 1953 की फिल्म है शिकस्त, संगीत शंकर जयकिशन का था। और सबसे बड़ी बात कि ये भी वर्षा के मौसम और प्रियतम की याद में जो गीत गाए गए, जो गीत लिखे गए, उन्हीं शुरुआती बेहतरीन गानों में से एक ये भी गीत है। फिल्म का नाम है शिकस्त और इसके गीतकार हैं शैलेंद्र।

बादलों ने हमेशा प्रकृति प्रेमी को लुभाया है। हमारे गीतकार, हमारे फिल्मकारों ने तो इनका वर्णन किया ही है, लेकिन जो हमारे महान साहित्यकार हुए हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, महान छायावादी कवि, उन्होंने भी बादलों के घूमने और उनके सौंदर्य पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। घिर रहे घूमड़ कर आसमान में, भर रहे गर्जन गंभीर, शून्य में उड़ते विहग अब लौट चले अपने कुटीर। यानी ये काले बादलों के भव्य, शांत और गंभीर रूप का उन्होंने इन पंक्तियों में चित्रण किया है। तो ऐसी ही एक फिल्म है 1969 की फिल्म धरती कहे पुकार के, और इस फिल्म का गीत है जारे जारे कारी बदरा। बहुत ही खूबसूरत गीत, हमें बेहद पसंद आता है, आप सभी को भी पसंद आता है। लता मंगेशकर की आवाज है और नंदा और जितेंद्र पर इस गीत को फिल्माया गया है, और ये गीत बादलों को संबोधित करके अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए बहुत ही मशहूर है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्मों में, खासतौर से हिंदी फिल्मों की ही बात चल रही है, बादल एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। कभी ये दूर रहने वाले प्रियतम को संदेश पहुंचाने वाले दूत का प्रतीक होते हैं, तो कभी किसी बिछड़े प्रेमी के गहरे दुख को दर्शाते हैं। कभी प्रेमिका के घने लहराते बालों की तुलना आकाश के काले भूरे बादलों से हम करते हैं, तो कभी कुछ और। ये बादल अशांत, चंचल, शरारती और कभी कभी निर्मम भी हो जाते हैं, और बहुत सारे गीतों में इनको याद किया जाता है। कभी बादल के रूप में, कभी बदरा के रूप में, कभी घटा के रूप में, कभी मेघा के रूप में, अलग अलग शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन भाव वही होता है कि हम जब किसी को याद करते हैं तो लगता है कि ये बादल शायद हमारे लिए मेघदूत का काम करेंगे। एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है। आशा भोंसले, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। ये फिल्म है धूल का फूल।

दोस्तों, बादल केवल बारिश का पानी ही नहीं लाते हैं, बल्कि ये आसमान के कैनवास पर प्रकृति द्वारा उकेरी गई एक ऐसी कविता होती है जो पल पल अपना रंग रूप बदलती रहती है। बादल हमें कभी किसी रूप में नजर आते हैं, कभी किसी आकृति में, और हम जब बादलों को बहुत ही गौर से देखते हैं तो न जाने कैसी कैसी सुंदर आकृतियां बन जाती हैं, है ना? तो चलिए फिल्म दिल दे के देखो, जो कि 1959 की फिल्म है, उसका एक सदाबहार गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बेहद रोमांटिक और मनमोहक गीत है। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार उषा खन्ना हैं। और इस गाने में बारिश के मौसम की प्राकृतिक सुंदरता और नायिका की भावनाओं के बीच का संबंध गीतकार ने लिखा है। यानी बोल जैसे हैं, मेघारे बोले घनन घनन और पवन चले सनन सनन, यानी बारिश के आने और ठंडी हवाओं के चलने का वर्णन गीतकार ने बहुत ही शानदार तरीके से इस गीत में किया है, जो वातावरण में एक मादक और खुशनुमा माहौल पैदा कर देते हैं। और जैसे ही मौसम सुहावना होता है, नायिका का मन जियारा मोरा डोले अपने प्रियतम के लिए पुकारता है और उसका जिया मचलने लगता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये गीत नायिका के उस मनभावन इंतजार और अपने प्रेमी के प्रति उमड़ते प्यार को दर्शाने वाला बहुत ही प्यारा गीत है, जो बारिश के मौसम में और गहरे काले बादल के छा जाने पर ये गीत भी उतना ही गहरा हो जाता है।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 11:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संभावित अल्प वर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश भर के सभी जल भंडारों की निगरानी करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चालू खरीफ सीजन और संभावित अल्प वर्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को किसानों के लिए खाद, बीज और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश को 46,000 टन से अधिक DAP उर्वरक की आपूर्ति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण रोजगार पर विशेष जोर देते हुए सभी जिलों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्य योजना तैयार रखने के निर्देश भी। उन्होंने कहा कि संभावित अल्पवर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। बैठक में बताया गया कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त रासायनिक खाद उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की बुद्धि और प्रेरणादायक विचार लाखों युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में देश को नई दिशा प्रदान करती रहेंगी। जल शक्ति मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार का शुभारंभ किया है। सभी आवेदन ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। पात्र संगठन, संस्थाएं और आवेदक अधिक जानकारी के लिए पोर्टल या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग की वेबसाइट jalshakti.dowr.gov.in पर जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि

0: भी 28 अगस्त है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। कबीरधाम जिले के भोरमदेव में पर्यटकों के लिए भोरमदेव इको ट्रेल की शुरुआत आज से होगी। वन मंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि इको ट्रेल के दौरान पर्यटकों को अनुभवी नेचर गाइड के साथ भोरमदेव के वनों का भ्रमण कराया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आज समापन होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संभावित अल्पवर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हिंदी में अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
3: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
2: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी।

0: है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम में आज हम याद करेंगे महान गीतकार पंडित भरत व्यास को। दो आंखें बारह हाथ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं। आवाज लता मंगेशकर की, पंडित भरत व्यास की बोल और वसंत देसाई का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये स्वर है लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है अमर ज्योति। पंडित भरत व्यास की रचना को संगीत में ढाला है वसंत देसाई ने।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पंडित भरत व्यास को। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जय चित्तौड़। आवाज लता मंगेशकर की और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पंडित शिवराम के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना सुनिए। गायिका है सुमन कल्याणपुर और ये फिल्म है कण कण में भगवान।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल सुनिए। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है हम हिंदुस्तानी।

हट न तखट पन घट न घेर घूम घट न छेड़ झट जाने दो पेट मुह भैर देर निर थक समाज तोहे आए न लाज तुहे दगाबाज दगाबाज धक धक धक धक धक धड़के जिया थर थर थर थर थर कांप जिया पर पत सिया हट जा हट जा हट जा।

गोरी गोरी गोरी गोरी कमल किशोरी चंचल चकोरी एक गाँव की छोरी मैं नवल नवेली अलबेली नार समझाए थके तोरे बार बार मैं छुई हुई करू कौन जतन छूते ही हाथ कुमलाए बद मेरा तन मुरारी मत छू मत छू मत छू।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं आया। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एसएन त्रिपाठी की संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मीना कपूर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है अंगुलीमाल। रचनाकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार हैं अनिल बिस्वास।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज फिल्म का नाम भक्त प्रहलाद, गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीत दिया है बी एन बाली ने।

कार्यक्रम का अगला गीत वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, स्वर है मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर और साथियों की, और ये फिल्म है भरत मिलाप।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज में फिल्म गृहलक्ष्मी का गीत सुनिए। गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीतकार हैं अविनाश व्यास।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती। इस फिल्म का गाना पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इकबाल कुरैशी के संगीत निर्देशन में ये पंडित भरत व्यास की अंतिम रचना। इस कार्यक्रम की आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, और ये फिल्म का नाम है चा चा।

इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज हमने पंडित भरत व्यास को याद किया था।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। हमारे ये कार्यक्रम सुनने के लिए बेताब हैं, है ना? बेकरार हैं, है ना? चलिए, तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए, खास तौर से वो श्रोता जो थोड़ा सा गहराई में जाकर संगीत को पसंद करते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि गजल सुनी जाए, है ना? लगता है ना कभी कभी कि आज धूम धड़ाके से अलग हटकर कुछ गजलों का रसास्वादन किया जाए। जिंदगी में बहुत बार हम जब गमगीन होते हैं, दुखी होते हैं, या बहुत धैर्य और गंभीरता से जीवन बिता रहे होते हैं, तो हम गजलों को बहुत पसंद भी करते हैं। और हमारे कुछ श्रोता तो गजलों को ही पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, हमारे कई श्रोता ऐसे भी हैं जो हर तरह का संगीत पसंद करते हैं। तो हम तो हमारे सभी श्रोताओं का ख्याल रखते हैं कि कुछ श्रोता जो आज गजलें सुनना चाहते हैं, तो चलिए उनके लिए कुछ गजलें लेकर हम आते हैं। तो ये जो गजलें हैं, फिल्मी गजलें हैं, जो विशेष रूप से बॉलीवुड के संगीत और फिल्मों के लिए लिखी जाती हैं। और दोस्तों, ये शास्त्रीय गजलों की छंद, तुकबंदी और भाव को बनाए रखती हैं, लेकिन इन्हें फिल्मों के कहानी और मूड के अनुसार थोड़ा सा आसान धुनों में ढाला जाता है। और फिल्मी गजलें उर्दू और हिंदी शायरी के बेहतरीन नमूनों, जैसे कि शेर, मतला, मक्ता, इन सभी को आम लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। तो

गजलों का उपयोग फिल्मों में तब किया गया जब गहराई, उदासी, प्रेम की तड़प या अंतर मन की उथल पुथल को पर्दे पर दिखाया जाता है। तो आज ऐसी ही उथल पुथल बनी रहेगी सुरीला सफर के इस प्यारे से सफर में। तैयार है ना आप इस सफर में, जहाँ हल्की फुल्की उथल पुथल भी है, गहराई भी है, हो सकता है उदासी भी हो। लेकिन हाँ, जब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह की गजलें पसंद करते हैं, क्योंकि आज हमने उन गजलों को चुना है इस कार्यक्रम में जहाँ गजल की संरचना को कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। जैसे जैसे कि गजल में कम से कम 5 शेर होते हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण होता है। दूसरी ओर नज्म में एक ऐसा विषय होता है जो उसके शेरों में समाहित होता है ना? तो प्रत्येक शेर का जो अंत है रदीव यानी शब्द या वाक्यांश से होता है, जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द आता है। तो काफिया और रदीफ ही शेरों को आपस में जोड़ते हैं। तो इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए हमने आज की कुछ खास गजलें आपके लिए चुनी है इस कार्यक्रम में। तो हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं, www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर जिन्होंने अपने विचार लिख दिए हैं, वे तो समझ ही गए हैं कि आज का विषय गजलें हैं और आज हमने क्या टेक्स्ट आपके लिए लिखा है। लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आज का टेक्स्ट है, हमारी फिल्मों में गजलें केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने का सशक्त माध्यम रही हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। जब संवाद ना काफी होते हैं तब गजलें अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को गहराई से पर्दे पर उतारती है। तो आज सुरीला सफर इन्हीं बेहतरीन पुरानी गजलों के साथ। बताइए आज कौन कौन सी चुनिंदा गजल आपके लिए पेश है। पेशी खेत में थे कार्यक्रम की ये पहली गजल। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अदालत, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अदालत। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज का विषय गजल जानकर मुझे गीतकार गोपाल दास नीरज की पंक्तियां याद आ रही हैं। लोग लिखते हैं अखबारों में छपने के लिए, हम लोगों के दिलों पर गजल लिखते हैं। बहुत खूब। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि सुनने वाले के दिल पर गीत से ज्यादा गजल का असर होता है। कभी कभी कोई बात पूरा गीत नहीं समझा सकती तो गजल का एक शेर समझा देता है। एक ही बात को कहने का हर शायर का तरीका अलग होता है। जहाँ महबूब की तारीफ में गालिब कहते हैं कि वो आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है, वहीं मीर तकी मीर कहते हैं हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ के सब असीर हुए। क्या खूब, बहुत सुंदर। फिल्मों में साहिर, शकील, हसरत, कैफे आजमी ने अपने गजलों के माध्यम से खूब वाहवाही बटोरी है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही जिसका अर्थ हिरण होता है, संदर्भ में जब हिरण शेर के डर से भागता है तो अंत में गिर जाने पर उसके मुंह से जो दर्द भरी चीख निकलती है उसे गजल कहा जाता है। पैराग्राफ के आधार पर गजल का निर्माण की अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई, आध्यात्मिक प्रश्नों जैसी गहरे मानवीय जज्बातों को शब्दों में पिरोने से बनती है। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी फिल्मी नगमों में शब्दों का एक बेहद खास और गहरा इतिहास। फिल्म अर्थ है और इस गजल से फिल्म जगत में एक अलग मुकाम बनाते हैं। गिटार और सारंगी के बेहतरीन इस्तेमाल ने इस जिक्र भी किया। मगर शायरों का मानना है कि मिर्जा गालिब के जमाने से पहले शुरू हुआ गजलों का गीतकार शकील बदायूनी, मजरूह, राजा मेहदी अली खान, साहिर लुधियानवी, आनंद बख्शी जैसे लोग लिखते हैं। हमारे फिल्मी संगीतकार ने बहुत ही मधुर धुनें बनाई इनके साथ, खासकर नौशाद साहब, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम साहब, मुझे तो खासकर लता मंगेशकर जी और जगजीत सिंह की सभी गजलें जो उन्होंने फिल्मों में गाई बहुत ही पसंद आती है। जी हाँ, हमारे सवाल जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, हमारे सवाल हैं हमेशा की तरह दो। और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो सवाल हम आपसे करेंगे जब आप उनका जवाब देंगे तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी गजल को आप पसंद कर रहे हैं, वैसे तो आपको जो गीत पसंद है वो सर आंखों पर, हम उसका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन आज हमने कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में वो गजलें चुनी हैं जिसमें पांच शेर हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण है और

प्रत्येक शेर का अंत रदीफ यानी वाक्यांश शब्द यानी वाक्यांश से होता है, और जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द या वाक्यांश से होता है, और काफिया और जो रदीफ ही वही मिलकर जो है इस गजल को बनाते हैं, है ना, शेरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की गजल आप हमें बताएं जो आप पसंद करते हैं। बहरहाल मैं आपको आज के सवाल बता देती हूँ। हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी बहुत निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत उर्दू में भी लिखे। हालांकि हमारे कुछ श्रोताओं ने उनका नाम लिख भी दिया है गीतकारों का, लेकिन फिर भी आप आपकी नजर में ऐसे कौन से गीतकार हैं जिन्होंने फिल्मी गीत लिखे हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी, बस उन गीतकारों का नाम लिखना है। और हाँ, हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि बहुत सारे जो फिल्मी गजलें हैं उनकी कुछ खास पंक्तियां जिसने आपको आपके दिल को झकझोर दिया हो, आपको पसंद हो, उसका जिक्र करें, यानी वो दो पंक्तियां हमें लिखकर भेज सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो मुझे ये पंक्तियां बेहद पसंद है जो अभी आपने फिल्म अदालत की सुनी थी कि मुरझा चुका है फिर भी ये दिल फूल ही तो है, अब आप ही की खुशी से कांटों में सो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। आपको इस तरह की कौन सी पंक्तियां पसंद है उसका जिक्र आप कर सकते हैं। आइए सुनते हैं एसएन त्रिपाठी का संगीत, बहादुर शाह जफर की रचना, आवाज मोहम्मद रफी साहब की, फिल्म का नाम लाल किला।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आइए मित्रों चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में। आज गजलों पर बात होगी, शायरों, गीतकारों और संगीतकारों ने कैसे गजल पर अपनी कलम चलाई, कैसे संगीत बजाया और किन कलाकारों ने अपनी आवाज से गजलों में रंग भरा, यही इस सफर में आज रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि उर्दू भाषा को तहजीब और अदब का प्रतीक माना गया है। उर्दू संस्कारों के इस गुलशन में गजल को सबसे मुकम्मल स्थान हासिल है। दिल तक असर करने वाले मखमली शब्दों से सजी गीत की विधा देश के हिंदी सिनेमा जगत को सराबोर किए हुए है। एक से एक बेहतरीन उर्दू गजलें हिंदी फिल्मों में पेश है। किस तरह की कैसी गजलों ने मुंबईया फिल्म जगत को अपना सुहावना एहसास दिया है, इन पर प्रकाश डालने से पहले गजल को थोड़ा समझ लेना चाहिए। गजल का मतलब प्रारंभिक शेर और दोहा में कोई ज्यादा ही विशेष फर्क नहीं होता। यदि कोई फर्क है तो यही कि मतला कई बहरों में लिखा जाता है और दोहा एक छंद में ही। मतला और दोहा दोनों ही दो मिसरों यानी पंक्तियों से बनते हैं और गंभीर से गंभीर विचार को संक्षिप्त भाव में कहने का भाव रखते हैं। बहुत सुंदर, आपने बहुत तरीके से गजल को समझाया है कि क्या है गजल। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई है। गजल के हर शब्द में बहुत ही गहराई होती है, भावों से परिपूर्ण होते हैं। मैं तो इस सफर में गजल फिल्म नायक सुनील दत्त जी और मीना कुमारी जी के गजल सुन रंग और नूर की सौगात किसे पेश करूं, मन में उतर जाती है और हर शब्द मोहम्मद रफी साहब की नूरानी आवाज भी। वही श्रोता लिखते हैं कि गजल भावनाओं की सबसे कोमल और गहरी अभिव्यक्ति है। इसमें प्रेम की मधुरता है, मोहब्बत की गहराई है, विधा की कसक है, दर्द की सच्चाई है और अंतर्मन की अनकही पीड़ा। संगीत भावुकता और शब्दों की सुंदर लय से सजी गजल सीधे हृदय को स्पर्श करती है। गजल केवल पढ़ी या सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ये मन की उन भावनाओं का दर्पण है जिन्हें अक्सर कह पाना संभव नहीं होता। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलें जो हैं फिल्मों में केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने के लिए रखी जाती हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही निराला होता है और उन गजलों के बीच शायरी तो जैसे सोने पर सुहागे का काम करती है जो सुनने वाले के दिल को छू जाती है। गजलों में अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को इतनी गहराई से पर्दे पर उतारा जाता है कि मानो वो हमारे ही मन का हाल बयां कर रही हो। तो आज का सुरीला सफर उन्हीं बेहतरीन गजलों से भरा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी शुक्रिया कि आप गजलों को इतना पसंद करते हैं और इतनी गहराई से अपने जज्बात पेश कर रहे हैं। हमारे वो श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं और हमारे फेसबुक परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, वो तुरंत हमें ज्वाइन करें। www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो हमारे परिवार का, विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं मिर्जा गालिब फिल्म की गजल आवाज सुरैया की। रचनाकार मिर्जा गालिब और गुलाम मोहम्मद साहब यानी गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत है।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा, जब तक फिल्मों में गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब का उल्लेख या कोई भी गजल न लिखी जाए तो शायद गजल को सुनने या गजल गायकी की जानकारी में कमी है, ये कहा जा सकता है। माफ करें, मेरे विचार इस मामले में अलग हैं। तलत साहब गजलों और फिल्मी गजलों के बादशाह हैं और शायद ही किसी श्रोता ने उन्हें यहाँ याद किया है। गजलों पर 10-12 कमेंट छाप दिए गए हैं बिना सोचे समझे, लेकिन गजल को किसी ने भी महसूस किया है वो नहीं दिख रहा। आज तलत साहब की गजलें शामिल होंगी यही उम्मीद है। बिल्कुल होंगी, आप कार्यक्रम को सुनते रहिए। और आपने बिल्कुल सही लिखा कि जब गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब को याद न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर मुझे लगता है कि गजलें वाकई में हमारे संगीत का एक अभिन्न अंग है। जो सुरीला सफर में आज के शब्दों पर गाने होंगे वो जरूरी दिल को छू जाएंगे। गजलें तो जैसे हमारे दिल की धड़कने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छत पर धूप का एक टुकड़ा फैला था और रिकॉर्ड प्लेयर पर लता जी की आवाज में एक गजल अपने ही पूरे शबाब के साथ फिजाओं में तैरती है। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। गजल सुनकर कोई गहरी संवेदना मन को छूती है। ऐसे लगता है हवाओं से कोई आहट आकर मन को सहला रही है। गजल की दुनिया बहुत बड़ी है। गजल ने अपने चाहने वालों के दिलों में एक सुंदर संसार रचा है। भावनाओं का खूबसूरत संसार बुना है गजल ने, तभी तो ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जीवन की हर उदासी में, हौसले में, विश्वास में इन गजलों ने कुछ सीली सी आवाज में समझाइश दी है, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक। वाह क्या बात है, आपने तो बहुत ही क्लासिक तरीके से अपनी बात रखी है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संभावित शब्द आपने लिखे हैं। अरे जब मैंने खासतौर से ये कोशिश की कि हम अपनी इबारत में शब्द कम लिखें और ऐसा टेक्स्ट लिखें जिसे आप समझ पाएं, तो आप अपने शब्द लेकर हमारे सामने आते हैं। चलिए, आपके शब्द हैं गजलें, जज्बात, दिलों को शायरी, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प। बिल्कुल, जहां गजल है वहां ये भाव होते ही हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजलों के लिए एक प्यारी सी बात, गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। हर शेर किसी न किसी दिल की कहानी कह जाता है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि संगीत की सृजनात्मक श्रृंखला में पुनः बिखरे मोतियों को एकत्रित कर नई माला में पिरोकर सफर को नई मनोरंजक दिशा प्रदान करती हुई इबारत है आज की। गजल मन को स्पर्श कर दिलों को झंकृत करती है, कहीं प्रेममय दिलों के तारों को छेड़ती है तो कहीं टूटे दिलों के जख्मों पर मरहम का काम करती है। गति धीमी मगर असर गहरी करने में गजल दिलों को वो मंजिल प्रदान करती है जिसकी तलाश में तन्हा दिल हसरतें रखता है। गजलों में सुरीला सफर गुजारने का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत सुंदर, हमारे श्रोताओं ने बहुत ही गहराई से अपनी इबारत हम तक पहुंचाई है। तो हमारे सवाल आपको याद है ना, हमने आपसे पूछा था कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी उतने ही निपुण थे, तो बताइए कौन से है वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल आपसे था कि फिल्मी गजलों में कुछ खास पंक्तियां जो आपके दिल को छू गई हैं, उसका जिक्र कर सकते हैं आप। और अब पेश खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। फिल्म का नाम है ममता, गायिका लता मंगेशकर, इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म ममता की ये गजल सुनी। हमारे एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत केवल एक लेख नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के संगीत इतिहास की एक सच्ची समझ है। ये लेख सिनेमा और शायरी के गहरे रिश्ते को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। लेखक ने इस बात को बहुत संजीदगी से रेखांकित किया है कि गजलें फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि किरदारों की खामोश जुबां होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर गजलों के साथ है। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैं तो सिर्फ दर्द दिल की बात सुनाता हूँ। हिंदी फिल्मों में बहुत सी गीत ऐसे हैं जिनका मूल रूप उर्दू रूप थोड़ा सा अलग होता है। मिर्जा गालिब जाने माने गजलकार हैं। साहिर, लुधियानवी, हसरत जयपुरी, कमर जलालाबादी, ऐसे बहुत से शायरों ने अपनी गजलें फिल्मों की दी हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, ये मेरी सबसे प्यारी गजल है। आज की सुरीला सफर में इस गजल को शामिल करने की मैं मंदाकिनी से प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो मेरा दिल इस प्रोग्राम में नहीं लगेगा। अरे, हमने तो इस फिल्म की दूसरी गजल आपको सुनवाई और हम उम्मीद करते हैं वो गजल आपको पसंद आई होगी। न किसी की आंख का नूर हूँ, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल दिल के भावों को और प्रेम को बयां करती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज सुरीला सफर में गजलों की बारिश होगी। फिल्मी और गैर फिल्मी गजल तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिल्मों में गजल के माध्यम से अंतर्मन के सभी उद्गारों को व्यक्त करता है। शांत वातावरण में गजल को सुनने का एक अलग ही मजा है। बाकी आपने बहुत सारी गजल

का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है, और आज के कार्यक्रम के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजल सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके रात के सन्नाटे में और भी सुकून मिलता है। गजल का नाम लेते ही पहला नाम जगजीत सिंह जी का आता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरबी भाषा से उत्पन्न एक लोकप्रिय काव्य और संगीत शैली गायन शैली यानी गजल, जो स्वतंत्र दोहों की लयबद्ध तुकबंदी होती है, दोहराए जाने वाले भाव, मीने शब्दों की अदृश्य श्रृंखला यानी गजल, जिसे जादुई आवाज, शब्द उच्चारण और बेमिसाल स्वाभाविक अदायगी से अनुभव किया जा सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत अभिजात गजलें दिखाई देती हैं जिसका जिक्र करें समझ में नहीं आता। एक बात सच है कि आज हमें लता जी, आशा जी, रफी जी के साथ तलत महमूद, पंकज उदास, हरिहरन, गुलाम अली जैसे बहुत सारे कलाकारों की शायद आवाजें सुनाई देने वाली हैं, और आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज गजलों की विदा पर प्रोग्राम लेकर आ रही है, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। जो गजल भूली बिसरी यादों में है सुनने को मिलेगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी अपनी पसंद की गजल हम तो हैं, पर देश में निकला होगा चांद। अच्छा, ये गजल आपको बेहद पसंद है जो अंतर्मन की पीड़ा को दर्शाती है, ये दौलत ले लू वाली, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज के कार्यक्रम में कुछ बेहतरीन गजलें सुनने को मिलने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी, आप इतनी गहराई के साथ अपनी इबारत पेश कर रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना है, तलत महमूद की आवाज़ है, फिल्म का नाम पतिता यानी पतिता फिल्म की ये गज़ल।

महमूद की आवाज थी और फिल्म का नाम था पतिता। और दोस्तों, ये शुद्ध हिंदुस्तानी गजल जिसमें उर्दू का कोई अंश नहीं था, आपने अगर इसको ध्यान से सुना होगा तो महसूस भी किया होगा। और शैलेंद्र सबसे जटिल अवधारणाओं को जो कि सरलतम भाषा में व्यक्त करने में माहिर थे, उन्होंने मतलब जटिल से जटिल बात को वो कितने सरल शब्दों में कहते थे, इस गजल में हमें नजर आता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी ये जो कविता है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, क्योंकि वो लिखते हैं हमारे सबसे मधुर गीत में है वो जो सबसे दुखद विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुरों में गाते हैं। तो ये गीत एक ऐसे साथी को सांत्वना और दिलासा देता है जिसने बहुत दुख झेला है और जिसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे प्यार का दूसरा मौका मिला है, है ना। तो देखिए ना कितना सुंदर तरीके से शैलेंद्र ने इस गजल को रचा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। और हाँ, हम अब आपके जो उत्तर हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। आज आपने उत्तर देने शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गजल वो पसंद करें जो हमारे नियमों का पालन कर रही है, हमारे यानी गजलों के नियमों का पालन कर रही है। कोशिश कीजिए जानने की, समझने की उस गहराई को कि आखिर कोई गीत गजल कब कहलाया जाता है। आइए सुनते हैं नक्श लायलपुरी की रचना, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज़ और फिल्म का नाम दिल की राहें।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। आप लिखते हैं कि फिल्मी गजलों के अलावा भी गैर फिल्मी गजल भी काफी लोकप्रिय है, खासकर गुलाम अली, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह, पंकज उदास और तलत अजीज की गाई जो गजलें हैं हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि गजलों के बादशाह मदन मोहन पहले नंबर पर ही आई, लता मंगेशकर, मदन मोहन, राजेंद्र कृष्ण, यूं हसरतों के दाग, ये गजल बहुत ही पसंद थी। एक श्रोता ने लिखा है कि फिर छेड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, पंक्ति हमें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वह क्या शुरुआत है, आनंद को बयां करना मुश्किल है आज, मदन मोहन फिल्मी गजल में उनका कोई सानी नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तलत साहब का ये गम है, दिल क्या करूं और ये क्या जगह है दोस्तों, गजल बहुत पसंद है। वही हमारा एक सवाल था कि जो अधिकांश हिंदी गीतकार हैं वो कौन कौन है जिन्होंने उर्दू में भी लिखा है। हमारे श्रोता जवाब दे रहे हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूं, गुलजार साहब, जावेद अख्तर। बहुत खूब। श्रोता लिखते हैं कि उर्दू और हिंदी में दोनों में बहुत अच्छे गीतकार हैं, राजेंद्र कृष्ण। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह, तलत महमूद, लता जी, तलत अजीज की आवाज बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि गुलजार और जावेद अख्तर साहब इस श्रेणी में आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी, मजनू, सुल्तानपुरी हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखा करते थे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, गुलाम अली साहब की पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। वहीं कि बड़ी बारीकियां सजोई है आज के कार्यक्रम में, गजलों के रदीफ काफिया मिश्रा गजब है आज का कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आनंद बख्शी, मजरू, सुल्तानपुरी, गोपाल दास, नीरज, राजेंद्र कृष्ण, कैफी आजमी, राजा मेहदी अली खान, ये सभी हैं जिन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1837 से 1857 तक शासन करने वाले भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, इनके जो गजल है वो इन्हें बहुत पसंद है। वहीं राजेंद्र कृष्ण और साहिर लुधियानवी को लोग हिंदी और उर्दू में ज्यादा पसंद करते हैं। और न किसी की आंख का नूर हूँ इस गजल को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और वो कह रहे हैं कि ये गजल हमारे दिल के बहुत करीब है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी, निदा फाजली, जावेद अख्तर और गुलजार साहब इस श्रेणी के गीतकार हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, ये जो बोल हैं वो मुझे बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गैर फिल्मी गजल है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ये गजल हमें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की मेरी लिस्ट में ये गजल न किसी की आंख का नूर हूँ, ये बहुत ही प्यारी गजल है जो इन्हें बेहद पसंद है। आई सुनते हैं आरजू फिल्म की ये गजल, आवाज तलत महमूद साहब की, मजरू, सुल्तानपुरी की रचना, अनिल बिस्वास का संगीत।

तलत महमूद को अभी आपने सुना फिल्म आरजू में। हम आपको बता दें ये 1950 की फिल्म थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद आती है। साथ ही तुमको देखा तो ये ख्याल आया और दिखाई दिए यूं कि खुद बेखुद किया, ये पंक्ति इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल आज शायर है गम एक नगमा, ये पंक्तियां हमें बेहद अच्छी लगती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बेकरारी का आलम न पूछे महोदया, कार्यक्रम सुनने के लिए हमने क्या क्या किया। अरे वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई ही गई, गजल के हर शब्द में बहुत गहराई होती है और आपने एक गजल का जिक्र किया है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताना चाहूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, चंदन दास की ये जो गजल गैर फिल्मी गजल है ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंडित भरत व्यास के सुमधुर नायाब कर्णप्रिय गीतों से सजी आज की यादों की महफिल थी, ये कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आया। एक श्रोता ने लिखा है कि गजल पहले विशिष्ट लोगों की महफिल में ही गाई जाती थी, आम जनता के बीच इतनी लोकप्रिय नहीं थी, पर इसे सामान्य जनता के बीच लोकप्रिय करने का काम जगजीत सिंह और पंकज उधास ने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एल्बम हैं मंदाकिनी जी, जहाँ फिल्मों की एल्बम में हम बात करें तो हमने लाइव ऑडिटोरियम में हमने सुना है, मतलब लाइव प्रोग्राम सुना है किसी ऑडिटोरियम में, और गजल के दीवानों के दिलों को सीधे छू लेता है। इसे सुनने का आनंद तब आता है जब हम एकांत में आंखें बंद करके सुनते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे गजलें अंतर्मन की पीड़ा तन्हाई और प्रेम को गहराई में उतार रही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तलत महमूद की गाई सबसे प्रसिद्ध और सदाबहार गजल फिर वही शाम वही गम, जो वो अपनी मखमली और थरथराती आवाज में गाते हैं, वो इन्हें बेहद पसंद आती है। इस तरह से हमारे श्रोता अपने अपने पसंद का जिक्र कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां आ रहा फिल्म की तेरी आंख के आंसू पी जाए, ऐ मेरी तकदीर ऐसी मेरी तकदीर कहां, ये हमें बेहद पसंद आती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिल्म गजल की ये गजल मैं आपको सुनवा रही हूँ। बोल है नगमा और शेर की बारातकी से पेश करूं। और एक बात यहाँ हम कहना चाहते हैं कि अक्सर हम इस फिल्म का जो गीत है रंग और नूर की बारातकी से पेश करूं, इसे हम गजल समझते हैं और हमारे कई श्रोताओं ने इसकी फरमाइश भी की है कि ये हम सुनना चाहते हैं। असल में दोस्तों ये गजल नहीं है। अगर मतलब आपने कभी इसके बोलों पर ध्यान दिया हो तो आपको पता भी चलेगा कि ये दो पंक्तियों के छंदों में नहीं है, बल्कि इसका जो दूसरा गीत है नगमा और शेर की सौगात, जो मैं अब आपको सुनवाने वाली हूँ, हम आपको सुनवा रहे हैं, ये गज़ल की शर्तों में आती है। ये गज़ल उस नियम वो दायरा जो है गज़ल का उसके अंतर्गत आती है। तो आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की लिखी ये गज़ल। फिल्म का नाम गजल, आवाज लता मंगेशकर की, मदन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था गजल। और अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप सभी के विचार, आप सभी की पसंद हमें जानने को मिली, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और अब अंत में हम ये बताना चाहेंगे, खासतौर से मैं, कि अगर मुझसे पूछा जाए कि किस शायर की कौन सी पंक्ति आपको पसंद है, तो मैं कहूँगी बहादुर शाह जफर की ये पंक्तियाँ मुझे आज भी अंदर तक भिगो देती हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी न मिली कुए यार में। इस पंक्ति को जब मैं पढ़ती हूँ, जानती हूँ, महसूस करती हूँ, तो आँखों से अश्रु अपने आप बह निकलते हैं। आपने भी अपने विचार रखे, अपने पसंद की पंक्तियाँ, अपने पसंद के गीतकारों का जिक्र किया, गजल क्या है आपने उसको महसूस किया। आज के इस कार्यक्रम को, इस सफर को महसूस करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम त्रिवेणी। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। बद्रा, ये शब्द सुनते ही मन में सावन की भीगी भीगी तस्वीर उभर आती है। आकाश में तैरते ये मेघ केवल जल की बूंदे नहीं लाते, बल्कि अपने साथ अनेक भावनाएं भी लेकर आते हैं। तपती धरती को शीतलता देना हो, सूखे खेतों को हरियाली से भरना हो, या फिर प्रकृति को नया जीवन देना हो, बद्रा हर बार अपनी अनोखी भूमिका निभाते हैं। दूर क्षितिज पर उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं किसी उत्सव की तैयारी कर रही हो। उनकी छाया में पेड़ पौधे झूम उठते हैं और हवाओं में एक अलग ही ताजगी घुल जाती है।

भारतीय साहित्य, संगीत और लोकगीतों में भी बद्रा का विशेष स्थान रहा है। कभी इन्हें प्रेम का संदेश वाहक माना गया तो कभी विरह की वेदना का साथी। गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों की सड़कों तक बद्रा का आगमन हर किसी के मन में एक नई उम्मीद जगा देता है। बच्चों के लिए ये कागज की नावों का मौसम होता है, किसानों के लिए समृद्धि का संकेत और कवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। यही कारण है कि बरसात और बादलों का जिक्र आते ही मन अनायास ही गीतों और कविताओं की दुनिया में खो जाता है।

बद्रा हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन कितना आवश्यक है। जैसे सूने आकाश को बादल सजाते हैं, वैसे ही आशाएं और सपने जीवन को अर्थ देते हैं। वे आते हैं, बरसते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अपने पीछे ताजगी, हरियाली और यादों की एक लंबी श्रृंखला छोड़ जाते हैं। शायद यही वजह है कि हर वर्ष सावन के साथ लौटने वाले बद्रा केवल मौसम का हिस्सा नहीं लगते, बल्कि किसी पुराने मित्र की तरह प्रतीत होते हैं, जिनकी प्रतीक्षा पूरे वर्ष बनी रहती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत

0: छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच

0: द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को रब रब बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया।

0: गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सुबीर सेन और लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था छोटी बहन। गीतकार थी हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म अमरदीप का ये गीत सुना। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो आशा भोंसले की आवाज में था। फिल्म का नाम था आखिरी दाव। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे मदन मोहन। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो है फिल्म अमरदीप से, आवाज लता मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सी रामचंद्र की धुन है।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, मेरे को हिमेश भाई बोले सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो नहीं है। मैं कोई वर्ड नहीं है, फिर अचानक मुझे आया हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता, तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी तेरे बिन और हमारा गाना
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म हावड़ा ब्रिज का दो गाने सुनिए। गाने वाले कलाकार आशा भोंसले और मोहम्मद रफी हैं, शब्दकार कमर जलालाबादी और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।
3: मोहब्बत कहाँ

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म काला पानी का गीत सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन बर्मन ने।

आशा भोसले की आवाज में अभी अपनी फिल्म फागुन का गीत सुना। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा था और ओपी नैयर ने धुन बनाई थी। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हम उपस्थित हो गए हैं।

0: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम में लेकर हाजिर हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: भारत राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। ये है सदर नागपुर से कमल गोलचा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता गोलचा और इनका पूरा परिवार। अगला खत हमें मिला है कोलार रोड भोपाल से। लिखने वाले हैं रामबाबू मालवीय, मनीषा, शीतल, उमंग मालवीय और इनके परिवार वाले। ये खत है ग्राम पंचायत काड़ेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमारी संचित वायलका और मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख का। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म खानदान का गीत। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी और संगीत खयाम साहब का।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था खानदान। अगला गीत सुनना चाहते हैं। आप सबने हमें खत लिखा है, ये है काशी निवास बंगाली नागपुर से प्रकाश रंबाड़े, भारती रंबाड़े, हर्षेल रंबाड़े, वैष्णवी रंबाड़े, जैनवी रंबाड़े और बनर्जी और इनका टोनी बारूकर, ललिता बोरकर इनके साथी हैं ये। इन सभी के साथ मिलकर ये गीत सुनना चाहते हैं। आप हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। ये खत हमें मिला है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके परिवार वालों का। और ये है नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीरसागर और संजय चौहान। आप सभी अपने पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है धर्मात्मा, आवाज किशोर कुमार की। गीत को इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था धर्मात्मा। अगले गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। ये हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। ये खत हमें लिखा है बीड शहर से रंजीत कुमार नामदेव, थोराल प्रकाश दादा और इनके परिवार वालों ने। जिला नांदेड़ शहर से प्रकाश जैन, सूरज जैन और संगीता जैन ने यह खत लिखा है और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा हमारे नियमित श्रोता। आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पगला कहीं का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

यह अवस्थी मोहम्मद रफीकी और फिल्म का नाम था पगला कहीं का। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी उड़नताल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, आकांक्षा, समीर और इनका गायकवाड़ परिवार। आप हैं सदर नागपुर से कमल गुलछा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता और इनका पूरा गुलछा परिवार। और ये खत हमें मिला है रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया का। गांव दलपतपुरा से सुनने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। आप सभी मिलकर सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का दो गाना, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपकी फिल्म अभिमान का ये दो गाना सुना। और आइए अब सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्दकार नीरज हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखा। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस, बिमला, सतीश, अनेजा और उनके परिवार वाले। ये खत आया है शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, परपा पैरी पार्वती, राधा चंद्राकर का, और जिला बड़ौदा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का। आइए आप सभी मिलकर सुनिए फिल्म गैम्बलर का ये दो गाना।

0: इस युगलगान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत।
1: विदिशा के राज प्रसाद की संगीत शाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की नूपुरों की ये मधमाती ध्वनि। नव वसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे।
2: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सकें।
1: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
3: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
4: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
3: हमारे साथ ये यज्ञसेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीरसेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञसेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे।
1: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था। और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ लिया। संगीत शाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी।

दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राज प्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी, उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और प्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: अति सुंदर।
1: महाराज देखा?
0: पितृ गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने ठीक ध्यान से इसका चित्र नहीं बनाया।

0: लीजिए महाराज, इसने तो इस गीत के बहाने अपने आप को आप पर न्योछावर कर डाला।
1: मैं भी यही समझता हूँ। सर, इसने हमको संबोधित करके कहा है कि नाथ पशु पर अपनी
2: अलविका, अब तू जा।
3: ठहरो ठहरो ठहरो, अभिनय में कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा, पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
0: महाराज जी भर,
2: मैं क्या पूछूं जी, मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। अलविका ने गीत भागों का ठीक ठीक कर अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
1: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका हैं महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
2: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ आर्य गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
3: महारानी, मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
2: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
1: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
3: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
2: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
3: दे दूसरे का, यही समझ कर दे रहा हूँ।
2: गंडास, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अभी से अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
4: जो आज्ञा।
3: लीजिए महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
1: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आंखों में फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो।

0: धैर्य का द्वार बंद हो गया हो।
1: ओहो महाराज, आप तो निर्धन व्यक्ति की तरह ये भी चाहते हैं वैद्य ही अपने पास ही औषधि भी दे।
2: आर्य पुत्र, अब हरदत्त की दशा का भी अभी देख लिया जाए।
0: देखना था सो देख लिया।
3: क्यों नहीं क्यों नहीं, हम तो देखने को उतर रहे हैं।
2: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो दत्त जी, आपके शिष्या का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे, आप जाकर विश्राम कीजिए।
2: आर्य पुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
3: महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण।
0: सुंदरता में ही नहीं, कला में भी मालविका अद्वितीय है।
1: मित्र, सच पूछो तो विधाता ने सहज सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया? मन के हाथों में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे दिया। अब तुम हमारी कुछ चिंता करो ना।
0: इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवा की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
1: मित्र, शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सके।
0: महाराज, कठिनाई तो ये है कि बादलों में चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है। कि माँ सुनीता की दुकान पर मंडराने वाले दिखते उस पर ललचाए हुए भी है और
1: आप ये घबराहट निवास की तमाम प्राणियों से हमारा एकदम ऊंचा हो गया। मित्र गौतम, सोच कोई उपाय।
0: उपाय महारानी धारणी की दासी बकुला बलिया, उससे सहायता लेनी होगी।
1: हम उसे मालाल कर देंगे।
0: यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो तुम्हें माला माल कर देंगे। हाँ
4: आर्य गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंप कर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है। पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ
2: अरे मालविका, तुम आ गई।
5: दासी सेवा में उपस्थित है देवी। पांव में क्या बहुत कष्ट है?
2: इस दुष्ट गौतम के नकट बन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पांव में ऐसी चोट आई है कि मैं उस पर फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है। आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए। उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती। अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती।
5: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा।
2: तो तुम बकुला बालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
5: जो आज्ञा।
2: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तुम्हें मुँह मांगा पुरस्कार दूंगी।
0: ये जी महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए। तनिक देखे तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है।
1: हाँ, हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा। सुनो मित्र,

0: दूसरे धाम से मानो पूछ रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा सह नहीं पा रहे हो क्या? ये प्रेम की पीड़ा, हे कामदेव, कहां तो एक और जी को ढारस देने वाला तुम्हारा कोमल फूलों का धनुष, और कहां ये हृदय को भी मत डालने वाला प्रेम का रूप। ये ठीक ही कहा गया है, जो इतने कोमल दिखाई देते हैं वो उतने ही कठोर होते हैं।
1: महाराज, तनिक धीरे से काम लीजिए, आपका मनोरथ पूरा करने के मैंने उपाय किया है।
0: हमारा किसी काम नहीं लग रहा, आज ये भार दिन कैसे देगा।
1: चलिए झूला गृह की ओर।
0: झूला गृह की ओर?
1: हाँ, अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने

0: हमारा किसी काम नहीं लग रहा। आज ये बाहर दिन कैसे देगा?
1: चलिए झूला गृह की ओर।
0: झूला गृह की ओर?
1: हाँ, अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था। रानी इरावती ने कहलाया था कि वसंत आगमन के उपलक्ष में आज आपके साथ प्रमद वन के झूला गृह में झूला झूलना चाहती हैं, और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
0: हाँ, मान तो ली थी, परंतु
1: कैसी अचरज की बात है कि
0: क्या हुआ?
1: उधर देखिए माला, उधर सीधे साधे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन इधर चली आ रही है?
0: क्या क्या मालिका आ रही है?
1: और क्या?
0: तो सब जो अब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी, वैसे ही ये जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
1: लीजिए, वो पुष्पविहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
0: ये सीधे साधे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, उसने इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं, गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हीं गिने फूल बचे रह गए हों।
1: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा महाराज?
0: मित्रों को ऐसा ही सूझा करता है। अरे मालिका अपने आप को आओ मित्र, लोग पास वाली लता के पीछे।
1: लेकिन महाराज, छोटी रानी इरावती रहे होंगे।
0: मित्र, हाथी जब कमल को देख लेता है, घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है? आओ उदा के पीछे।
2: दुर्लभ प्रिय है हृदय, मूर्ति तू मिलने की आशा। अरे हृदय, तू ऐसे चाह क्यों करता है जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है, ना जिस तक अपनी पहुंच है। तुझे क्या मिल रहा है?
0: ऐसी उल्टी रीत है, इसने अभी अपने कुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं। अनुमान से इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि ये हमारे ही ये व्याकुल होती है?
1: महाराज, अभी दूर हो गया है वो हमारे साय का बल्ला बल्का। अब
0: बगुला वलिका श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर गायब है।
1: आप भूल गए महाराज कि महाराज ने पांव चोट के कारण चल फिर नहीं सकती, और इधर उनका प्यारा आप भूल गए।
0: अच्छा, अशोक पर पदाघात का नाम मालविका को सौंप दिया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा।
1: और ये तो क्या

0: सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर उधर बढ़ाओ, महावर लगाकर ये रुपए आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना। वाह तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो। अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो। हाँ।
1: वृक्ष में

0: और जैसे इसके चरण महाराज वैसा ही सौंपा गया है।
1: सुंदर सुंदर चरण या तो फूलने की इच्छा करना इस पंडितों के या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर योग्य है।
0: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप भी अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
1: मन चाह भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर पाते।
2: अरे निपुण का आर्य पुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
3: आर्य को तो कहा था रिश्ते मिले। ध्यान से देखिए, आपसे प्रयास करने के विचार महाराज यहाँ कहीं छिपे बैठे होंगे। आइए उन्हें ढूंढे।
2: अरे मन कुछ चाहती कि देखने की अकला है होने पर भी मैं आगे नहीं बढ़ रही।
3: आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेम को पसंद।
2: अच्छा चल।
3: अरे ये क्या स्वामिनी,
2: क्या क्या हुआ रे?
3: हम चली थी आम की ढूंढने और काट चींटी होने।
2: अरे क्या कह रही
3: दीदी? मैंने कुछ देखिए उधर वहाँ अशोक छाया महारानी धारणी की बच्ची बकुलिका मालविका की पहचान रही है।
2: मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
3: मैं समझती हूँ कि पांव की चोट के कारण महारानी धारणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पताघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नीतू पर उतरकर इन दासियों को दे सकती थी?
2: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
3: तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
2: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए। कुछ संदेह हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये साथ से इन्हीं बातों से तो मेरा जी चल जाता है।
4: क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
5: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
4: कह दूं? ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
5: सच? बड़े भाग्यवान हो, पर भी तुम्हें घमंड नहीं।
4: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योग्य तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है। हाँ
5: लो तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया।
4: आहा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिल रहा है। लाओ अपना दूसरा पैर दो। मैं तो मनाती हूँ कि तुम महाराज के अंक में रहो।
5: सखी ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
4: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ
5: मैं तुम्हें प्यारी हूँ।
4: तुम महाराज को भी प्यारी हो?
5: उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
4: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है। हाँ
5: क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो?
4: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
5: सच? पर सखी उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
4: अरे पगले भौरों के डर से कोई कानों में आम मंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। इस पैर में भी महाराज लग गया, अब पहना दूं? लो अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा। अरे क्या सोच रही हो?
5: सखी कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
4: अरे मेरा तो नाम ही बकुलावली का है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक तुम दूंगी।
1: वाह बकुलावली का वाह, मित्र

0: मल्लिका ने चतुराई मालिका के मन को हार लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
1: महाराज उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजे पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
0: यदि इन की पकड़ भी अशोक न खुला तो इनके चरणों का नहीं ही अशोक ही निकम्मा समझा जाए। मित्र, हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
1: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
2: आई गौतम, महाराज भी
1: क्यों बकुला वालिका, सब कुछ जानते हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों?
2: आर्य गौतम, मैं आर्य, इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की थी, महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं।
0: अच्छा, तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़ कर।
1: ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
0: क्यों भद्री, तुम्हारा ये किसले कोमल बाया चरण अशोक पर लगने से दुखने तो नहीं लगा? नहीं मिला
2: महाराज को जाकर सोच ले कि उनकी आज्ञा अनुसार हमने पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले।
0: भद्री, सकती हो, परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
3: मालविकाग्निमित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे हैं। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग का अब संपन्न है।

0: Camera, action!
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक

0: खास मेहमान बैठे हैं, आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार, मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
0: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
1: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी, वो तीज त्योहारों पे ही सब उड़ा करती थी, तो मैंने पहले किसी लेडीज कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी, तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया थे, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर, उसमें भी सलमान भाई थे, तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला, तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
0: बिल्कुल।
1: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ। और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है, क्योंकि दोनों गाने वही थे।
0: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की कि चुनरिया पर ही आपको गीत लिखना?
1: नहीं, मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा एक रोमांटिक चीज, मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हुई है, एक चुनरिया और देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली। ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना जो आप टाइप की
1: टाइप
0: नहीं हुआ कि मैंने चुनरी लिखी, लगभग 5000 गाने मेरे रिलीज हैं तो 5000 चुनरी हैं। और मैंने हर चुनरी अलग स्टाइल में लिखी, बिल्कुल अलग मैंने किया। जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर गया, उसने कहा चुनरी मेरे लिए भी
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी, तो मैं गाना यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग, तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊँगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊँगा, लेकिन एक बात मैं बताऊँ उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी। मैं घर पे बैल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: को जगह ही रहता था
1: अरे,
0: और फुल तैयार बाजा रखा, हाँ बोल, हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने, कि हाँ ना भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया
0: चुनरिया। और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: तो कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए। इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी, मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा,
0: ये सारी फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत, और सीखने की हद यहाँ

0: तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो ना ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूज़िक डायरेक्टर को लूँ। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूज़िक डायरेक्टर और राइटर का
1: जी
0: अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी जी
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया। तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया है? मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तो लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले तो लिख लेना, कोई बात नहीं, इसमें
1: हाँ
0: क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया और ये उनका बहुत बड़ापन था। उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया, और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना
1: मानना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी, मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंदर जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया और एक दिन मुझे फ़ोन करके एक फिल्म के लिए बोले अरे तेरा एक कागज़ उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह
0: तो इतने ग्रेट थे,
1: जी
0: वरना कहाँ रविंदर जैन और कहाँ सुधाकर शर्मा, क्यों मेरे गाने लेंगे वो।
1: सही
0: देखिए
1: बात है।
0: रविंदर जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे कभी भी बांद्रा, जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते। तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल
1: अच्छा
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में ला के दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए
1: हाँ
0: हैं,
1: भूख
0: भूखे प्यास लगी
1: लगी
0: होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन
1: बहुत।
0: बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत खूब।
0: एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर,
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। और मैं सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों? तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा जी,
0: मैं बेचैन हो गया। मैंने
1: हाँ
0: कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया,
1: अच्छा
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ मैं। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सेलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा। तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए।
1: जी
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं। देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया। और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है,
1: अच्छा, धरती की हलचल।
0: हलचल। और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है। ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार
0: अब
1: विजु
0: पहली
1: शाह।
0: बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लकी। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलकी कह दिया तो डर जाते हैं। तो लकी सब में है ना,
1: हाँ
0: दावा बन सकते हैं अपन।
1: जी।
0: तो

0: का नहीं, वो मेरे लिए लकी है, मेरा ठीक है,
1: ओहो।
0: मेरे लिए लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना, डीएवी जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी
0: बोले तू एक काम कर, मेरे घर फोन लगा।
1: हाँ।
0: मैंने उनके घर फोन लगाया मिसेज को, वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये
1: ओ
0: मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल,
0: तो ये इस गाने की कहानी है,
1: बहुत
0: बहुत ही
1: सुंदर
0: खूबसूरत गाना था।
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना बन
0: और
1: गया।
0: मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ, ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया,
1: गाया।
0: उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये
0: जी
1: बातें, ना जानने को
0: जी
1: मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे, आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके
0: जी
1: बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाग्नि जी, आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए, फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूँ, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा, और हम लोग काम करेंगे।
1: जी
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो जो मैं गा रहा हूं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और वो ट्यून जो है ना, गा गा के बनाते हैं। वो ट्यून जो है ना, ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है,
1: अच्छा,
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है
1: हाँ
0: कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे गाड़ी में बैठे हुए,
1: हाँ हाँ
0: तो मेरे को हिमेश भाई बोले सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो।
1: हाँ हाँ
0: मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है यार,
1: हाँ
0: ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त
0: बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे?
1: बिल्कुल।
0: बोले मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए, हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त
1: बिल्कुल
0: के कितने हैं?
1: बहुत,
0: तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है,
0: फिर
1: बहुत
0: मैंने
1: खूब,
0: दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने
1: एकदम
0: तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है,
0: बहुत
1: और
0: सुंदर
1: क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना, एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: तो भाई ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलता था यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है वो, कि अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है।
0: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है, जहाँ एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कुछ चीज को क्रिएट कर रहे हैं।
1: लेकिन नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा

0: होता है। मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है, तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूं। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूं जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊंगा और मैं आपके साथ करूंगा।
1: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा,
0: मैं आ
1: वक्त
0: जाऊंगा, तब
1: दूंगा।
0: वक्त दूंगा तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था तो उसमें अगम निगम साहब, वो
1: सोनू निगम जी के पिताजी
0: जी, वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहां कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा, हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में, एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे। और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते हैं, उसमें कोई
1: बहुत
0: बात
1: बड़ी
0: नहीं।
1: बात आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार के बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी
0: नहीं,
1: है आपने,
0: नहीं,
1: और
0: नहीं, नहीं,
1: आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना?
0: जी,
1: तो ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
0: ये मुझे भी नहीं पता। वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
1: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़ें आपके गीतों को?
0: नहीं, अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है, जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक, बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है मैं हमेशा जहां भी जाता हूं तो ऐसे ही मैं बोलता हूं हाँ भाई लिखो, तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है, तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
1: वो लिख
0: उसको
1: लेता
0: ले
1: है।
0: जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ।
1: अच्छा।
0: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता।
1: अच्छा।
0: हमने फायदा क्या इसका, तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है। तो अभी मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखो क्या, अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है, मैं सकपका गया। और वो इतने ग्रेट हैं, वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूं, तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा तू लिख ले, तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा।
1: तो हाथों हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
0: बिल्कुल
1: आपको
0: लिखवा देते,
1: सिचुएशन बतानी पड़ती है।
0: हाँ, जो भी सिचुएशन बताएंगे
1: बहुत खूबसूरत
0: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
1: हर रिकॉर्डिंग में
0: मैं रहता हूँ। और रिकॉर्डिंग होते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है, मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीजें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती है।
1: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, वो चाहते हो कि सुधार

0: डॉक्टर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
1: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी, लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए, क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था। तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा, जो डायरेक्टर थे हमारे।
0: अच्छा।
1: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद किया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है।
0: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
1: जी मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए। ये है आपका तेरी चुनरी बनो लाखों की।

0: 5000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी।
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की, और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं। इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं, और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी।
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा

0: है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणा का हूं और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं, वीना कैसेट कंपनी
1: जी
0: हमारे केसी मालू जी की है,
1: बिल्कुल
0: वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूं, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता।
1: जी
0: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से,
1: उड़ली।
0: ओडली
1: अच्छा, यहाँ पर भी
0: म्यूजिक,
1: चुनरी आई।
0: चुनरिया अंडरस्टूड है।
1: हाँ जी।
0: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
1: अरे वाह।
0: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए
1: अच्छा।
0: और हम लोग घर पे गए। तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
1: जिनका जिक्र अभी आप कर
0: जिक्र
1: रहे थे।
0: किया। तो मैंने कहा यार सतीश जी मेरे लिए इतना काम कर दो यार, उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं, सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं
1: अच्छा।
0: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए, और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी है ना, जैसे सतीश जी कई बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूं, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूं, जो है
1: जी
0: वो है।
1: जी जी
0: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या पैसा।
1: हाँ।
0: तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूं कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूं। बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो
1: क्या
0: मेरे को
1: बात
0: यकीन नहीं हुआ
1: बात
0: कि
1: करो,
0: अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं
1: 1 रुपया
0: ₹1 नहीं
1: नहीं
0: लूंगा।
1: लूंगा। वाह, अद्भुत
0: ये बहुत ही अद्भुत,
1: बात।
0: और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदर कांड शुरू किया, हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदर कांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा अब शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो 1 पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा,
1: हाँ, सही
0: लेकिन
1: बात
0: मेरी
1: है।
0: औकात ही क्या है, मैं क्या
1: हाँ,
0: करूंगा, कुछ भी नहीं कर
1: उनकी
0: पाऊंगा।
1: महानता देखिए आप, अमित
0: लेकिन
1: कुमार
0: उनकी
1: साहब की।
0: ग्रेटनेस देखिए, हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं और जब भी वो आते हैं बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम, लेकिन इतना लंबा इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है ये बात अलग है, लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं,
1: जी,
0: लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ, और
1: बहुत
0: मैं ईश्वर से दुआ करता हूं
1: सैल्यूट
0: कि
1: है उन्हें।
0: बस वो खुश रहें स्वस्थ रहें एकदम।
1: बिल्कुल
0: ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना,
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी
0: उन्होंने

0: क्लियर किया
1: कि मैं कुछ नहीं लेने
0: मैं
1: वाला,
0: कुछ नहीं लेने वाला।
1: बहुत बड़ी बात सर।
0: तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई हैं और मैं भावुक हो गई हूँ। एक गाना पहले सुन लेते हैं।
0: एक गाना हम लोग सुनते हैं। मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए। तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल।

0: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो। मैं लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत यह है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
1: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना,
0: गाना नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा फिर। तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते गाना जब लिख लिया मैंने, तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा। हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
1: बहुत सुंदर,
0: ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला। गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे एक लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
1: आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता।
0: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं ना।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
1: बहुत सुंदर, और वो हो गया। सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को, क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
0: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर

0: तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करोगे एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं एआई से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं।
1: अच्छा, लेकिन
0: बट एआई जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
1: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात,
0: वो कहानी नहीं ला पाएगा। टेक्निकली वो साउंड कर देगा लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के निर्माता नए नए आ रहे हैं, नई नई तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत नए सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
0: मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तभी आज तक काम कर रहा हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोड़ पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फोड़ पने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
1: बहुत प्यारे तरीके,
0: लेकिन बड़े प्यार से कहा, एक अंदाज से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
1: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, पांच पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया, जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं, बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान ना समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
1: वो कालजयी हो गया।
0: हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता है।
1: जी, जी।
0: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूं तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं, समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल।
1: बिल्कुल।
0: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है।
1: बिल्कुल।
0: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही, तो आप आइए काम कीजिए, हैव पेशेंस। काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल, मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
1: जी, 73 से 82 तक आपने इंतजार किया।
0: इंतजार किया, फिर 82 से 97 तक इंतजार किया
1: दूसरे गाने का।
0: दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए।
1: ओहो,
0: 97 में गाना बाहर आया ओडली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा।

0: कभी भी कुछ भी हो सकता है।
1: जी
0: एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ
1: अच्छा
0: तो कंजके बिठाते हैं उसमें, और उसमें कोई 300 350 रुपए का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजके वंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया। एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहां गया। मैं घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और मैं था, अरे यार मैं तेरे को भी फोन लगा रहा हूं तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूं तब तक तू आ गया। वह जल्दी आ, अंदर आ, अंदर आ, अंदर गया। बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा। ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, तीन गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए, अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। और गाने गा दिए, चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपए थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो।
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ ना कुछ
1: बात करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी, और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला, विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं। इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं से मेरी शुरुआत थी। और आज मैं उस मुकाम पे हूं कि जहां मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा, इतने सब, ये कभी मेरे ख्वाबों में थे और मैं खुशकिस्मत हूं कि इन सबसे मैं मिला हूं।
1: जी, और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया, आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: और श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से।
3: विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम आप सुन रहे थे FM बैंड 103.2 MHz पर, आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर में

0: हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सोनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, खड़गवा, झींगापारा, बोझा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, पेंडारी, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, कनकपुर, टकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, घटगांव, दातीढाब, बाबा पहाड़, बरडाण, कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये कुंजारा, लोटापानी, श्रीटोली, मयूर चूंदी, बोडालता, खड़ा हरदी झरिया, राजा आमा, महेशपुर, पुदरा झरिया, साजा पानी, सोनार पहरी, बर्नी झरिया, सोनगेरसा, बीजा घाट, सारू ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 111 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये गीत कुमारी, लबेद, गुरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, गुजापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मड़ई, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मोहदा, सैहा भाटा, बरबसपुर, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल दादर, खुदमुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वन मंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये ओर, ताराझर, डडईपानी, कोलापारा, बुडार, छिंदौला, लूठापारा, जालकीपारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दीजिए पेश है कुछ संदेश।

0: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
0: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
0: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
2: सखी सहेली,
0: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे,
0: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती
0: सुरीली संदली।
5: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
6: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए, समय के साथ बदले आगे बढ़े, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स, और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:10 होने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अब हम रिले करेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गांव में या खेतों में ही बीता है, हम प्रकृति से जुड़े हुए थे। लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में, और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ, तो चंडीगढ़ पुलिस में वहां की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहां बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहां से मेरा मन भी प्रभावित हुआ, जब पेड़ पौधों की वजह से, पलान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
1: तो ये कब शुरुआत की आपने?
0: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले, और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया, और 2014 में तो बिल्कुल अपने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
1: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप?
0: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
1: जी,
0: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
1: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है, और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
0: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की उठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा, और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट जन आंदोलन के रूप में कार्य।
1: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
0: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
1: अच्छा।
0: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए, और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
1: अच्छा।
0: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है अगर बेटी के, अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर सुनोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अगर भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृ शक्ति ने, वहाँ की जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल, सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में, और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते हैं।
1: कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
0: सोनीपत में ही।
1: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया, और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया, तो अक्सर लोग कहते थे अगर भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है, पेड़ लगाना, वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य

0: करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए, देश के लिए काम करने। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर। जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी, या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ, पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई। जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा। अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है, तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हमें पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है, तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में, परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले, एक हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े। लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी, तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है, एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग, भौतिक संसाधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति, एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है, उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया, और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं, उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला। और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है, ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए, और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गाँव अपना परिवार की तरह है, और पूरा देश अपना एक मातृभूमि, अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृ शक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूँ, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूँ, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: अपने जीव जंतु की बात की, तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है, और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा, विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई, और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को, विचार को हिला दिया, समाज

0: आज मैं जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे थे, लेकिन हम ये मानते हैं जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था, और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी, और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहनें युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और गांव-गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले, और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव-गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं, और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतड़ प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं से या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है, और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे, या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उससे पौधे तैयार करे, और एक छोटे ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाएं, तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने, और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूं, जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं, और खासकर एनसीआर के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है, और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें, और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व, मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जो हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी। हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस, धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं, पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में, तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं बहने बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। एक जैसे घर में त्यौहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं, आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की, वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने एनसीआर या हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें, तो इसमें जैसे एक बेरी का पेड़ है, या नीम का पेड़ है, या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहें और ऑक्सीजन भी खुश होके देश के।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते किसी

0: गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथीन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं, वो कोई भी दाल चीनी या सब्जी लेनी होती थी, वो अक्सर पुराने कपड़े और थैलों का प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनैलिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनैलिटी है, एक इंटरनल पर्सनैलिटी, एक एक्सटर्नल। वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ। प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की 1000 पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गांव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं। और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं, तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो अपना जीवन में, पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे, तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है, तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें, जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली ही अपनाए।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है।
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव पर, जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं, हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ हैं या गांव में पंचायत को मिलती है, या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं, और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े, और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे, तितलियां, मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।

0: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हो, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
1: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है कि इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है, और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है ऑक्सीजन बाग की, और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है एक दो पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं।
0: अरे
1: जब हम
0: वाह,
1: जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
0: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
1: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूं पूरे विश्व में 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया, और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो वो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी। मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना, और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी। मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया। मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
0: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
1: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है। तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
0: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: भारत के नागरिक को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
0: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए, और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद बहन जी।
0: तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम, ईमेल करें, गीत सुनें।

आपके ढेर सारे ईमेल हमारे हाथों में हैं श्रोताओं। ये श्रोता हैं जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक। बीकानेर से नरेंद्र सुरोणा, कांतिलाल, शरद, मयंक, विमल आभाणी, लालेंद्र, होलेंद्र आचार्य, रोनी जैन, प्रमोद दम्माणी। राजस्थान से मेहर अरोड़ा, कीर्ति, भूमिका अरोड़ा, ममता अरोड़ा। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद, कालिंद्री लहरे। सावतपुर से ऋषि, रितेश, कंचन और माही सेन। दिल्ली से सुमित्रा, सोनिया और आयशा रानी। दिल्ली से दिलावर खान, हसीना मानो, एलिजा नायाम। राजकोट से जूली जगदीश, प्राची और प्रवीण पुजारी। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी, नंदा, हनुमान, उत्तम जमदाड़े। सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, सुनीता, मुस्कान, योगेश। पलारी से प्रकाश, निखिल, प्रिंस, यशस्वी वर्मा। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। महाराष्ट्र से रुपेश, महेश, प्रग्रेस और प्रीतेश संघई। यवतमाल से पंजाब, यशोधरा, श्राव्य, रामटेके। वाशी महाराष्ट्र से विठल, सुषमा, परिधि, मायरा। दिल्ली से सोनम, सना और अदीबा। महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना, प्रणय, प्रसिद्धि और महेश, रामटेके। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद, शगुप्ता, अंजुम। भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। बुलढाणा वर्षिंगी से अमोल, शुभाताई, दीपाली और श्लोक कुमार। डोगरगांव से राजपाल, राधिका, अनिष्का, तन्मय, गजभिये। दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, आशीष, राजा, चैतन्य मस्किन। नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, स्वीटी छाबड़ा। पिपरिया से कमलकांत, दीपा, रिमझिम गुप्ता। बागबहरा भदरसी से पन्ना लाल, खुशबू, तारा, कौशल सेन। राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति। तेवरी भाटापारा से गन्नूलाल, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री। ओंकारेश्वर से संपना, अंबिका, अनीता, चिंकी, मिंकी, पिंकी सैनी। देवरी भाटापारा के ये श्रोता हैं केआर साहू, आकाश, कमलेश और मुली छत्री। सुनवा रहे हैं आप सभी के फरमाइश पर कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए पेश है बरसात फिल्म का गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू की युगल आवाजों में। समीर का लिखा हुआ गीत है, नदीम श्रवण का संगीत।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में ये गीत बरसात फिल्म का आपने सुना और अगले गीत की फरमाइशें आप सभी की। अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, जैन मंदिर कुरावली से राशिद हुसैन, नसरीन नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलबीर सिंह, लोहगढ़ ठाकरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप गुरलाल, अविराज, गुरनूर, शुभदीप सिंह, मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज ऋषि, कृष्णा घोड़गे, महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत वसीम अकरम, रुबीना आरिज, वसीम नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम शर्मा, राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, अकोला के ये श्रोता हैं रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय, सहारनपुर से सोनाली, आशा सुरेश, पथिक, कृषि, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी, शुभम, सौरभ रावत, कैदी मुना रायगढ़ से पुरुषोत्तम, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा, लेलू, रितु, डोनी लोहरा बालोद से देवशंकर, अजय देव, तुषार देव, डॉली, पूजा, आरती और प्रभा देवी तामुरिया, दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल, पैठण से सुरेश यादव, अनिता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल जाधव, बगबुड़वा पथरिया से नरे नेताम, कुसुम नेताम, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश की ये श्रोता हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन वर्मा, जवानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाबक, श्राबिया शेख, शेख रहीमुना, भूतकछा लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक, प्रीतम धनराज, पंजाब से राज शर्मा, योगेश मीना, निवान सौरव सेना, मैंडी शर्मा, पंजाब से हरदेव मिका, जयतेक बलविंदर, मिका मिर्क, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता गौरव सैनी, पठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजभक्ति काजल पूर्वी, हेजल राजेश और रेशमा साहू, पूरी भाटा कलतरा से दिलीप चोवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन आप सभी को सुनवा रहे श्रोताओं मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत।

झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मयंक भाटिया, धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत कृष्टि पटवा, भानबेड़ा मुंगवाल से भरत राम पटौदी, जयंती हेमंत, उमंग मोक्ष पटौदी, अमरेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारिणी ठाकुर, दतरंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नुखेलाल वर्मा, बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली श्वेता, सुमित ध्वनि परी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश वासु, डॉली पूर्वेश साहू, दिल्ली से मालती शर्मा, माया दिव्या और सीमा शर्मा, नैला बोरसरा जांजगीर से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन, मीनाक्षी, उमाबाई, विष्णु प्रसाद तिवारी, दिल्ली से सुखेंद्र सिंह सिटी, दीवाना भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल, चंपा साहू, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, रुद्रा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श और आतिका, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुखमनी साहिल, भारती बघेल, भाटापारा से बज कमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस, मुनीरुनिसा, ऐशा तबस्सुम, धुराबंधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव सानेतराम, भूपेंद्र साहू। इसी गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता भी, लुद्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, जिला भंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, निकिता, दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सहज श्लोक, प्रियांश, श्रेयांश, अनुभूति अग्रवाल, मठेरा पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, पार्थ, कश्यप, मिथिलेश, टोमिन, मंछोर, यश, प्रयाण, शिवम वर्मा, दिल्ली से बेबी

अंसारी निशा और डब्लू अंसारी, महाराष्ट्र से कबल साहनी पिंकी अफजल मलिक, करजत मुंबई से हमद भाई दुखना सदफ जूही इकबाल इमरान अहमद आमना नसरीन आसमा परी राबिया और आशु अहमद, गिरिडीह झारखंड से सैमा नवाज यासीन अनजान हसन नवाज अहद मिफरा नवाज चाहत और सादिया। सुना रहे हैं आपको श्रोताओं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी की शब्द रचना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, राजकुमार फिल्मकार के गीत लीजिए पेश है।

चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता, केशु रिधान खुराना, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा, उच्च भट्टी से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी शिवन्या गोस्वामी, पलारी से नीतीश कुमार, लखनलाल सावित्रीबाई, ईशांत तनुजा देवांगन, आमाखोड़ा रेंगा खार से देवी सिंह नेताम राजेंद्र, दक्षप्रिया गीत सरगम नेताम, पिपरलोड सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति शिवांश वर्मा, बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता डिंपल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज सुहान, सरफराज फरदीन, अरजान अबान अब्बासी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश राशी सिटल राजेश, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश निशु दीदी, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा और तुलसी गोस्वामी, लच्छनपुर बलौदा बाजार से विश्वनाथ पंकज तिरुपति साहू, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी लीलावती विनीता रुद्र वर्मा, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार जोई, यामिनी और उमा तिवारी, हरहरपुर मटकली बरेली से शाहनूर अंसारी, मोइन तस्लीम, सर्वेश सैनी, डीजे प्रधान, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, बीड़ शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया और विशाल सपकाल। सुना रहे हैं आपको सलमा आगा की आवाज़ में निकाह फिल्म का गीत, हसन कमाल की शब्द रचना है, रवि का संगीत।

निकाह फिल्म का गीत सलमा आगा की आवाज़ में आपने सुना। इसी गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:05 होने को है। लीजिए पेश है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आज शाम 6:07:20 पर भी ग्राम सभा में आप सुनेंगे किसानवाड़ी। इसमें भेंटवार्ता आज आप सुन सकेंगे बदलते मौसम में किसानों का सुरक्षा कवच कृषि वानिकी। इस विषय पर श्री अजीत विलियम्स वैज्ञानिक वानिकी कृषि महाविद्यालय बिलासपुर से ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। भेंट करता होंगे महबूब भैया। मौसम मंडी और सामयिक सुझाव भी होंगे आज किसानवाणी में। शाम 7:00 पेश करेंगे ईमेल करेंगे सुने का शेष भाग। रात्रि 8:00 सुनेगा सुगम संगीत में विनास मसानी के गाए चंद गैर फिल्मी गीत और गजल। रात्रि 8:15 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, कल के कार्यक्रम में कल सुबह 6:05 पर आराधना पेश करेंगे। खेती की बात में 6:30 पर सुनेगा सामूहिक सुझाव, जिसका विषय रहेगा खेती के साथ पशुपालन से अतिरिक्त आय के अवसर। वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का होगा। रामचरितमानस का गायन 6:35 पर आप सुन सकेंगे।

6:45 पर चिंतन में स्वामी आत्मानंद का आलेख और वाचन सुनिएगा सेवा विषय पर। आज सुबह 7:05 पर और सदाबहार नगमे पेश करेंगे 7:40 पर। 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ में जानेंगे त्वचा रोग के बारे में। सुबह 8:30 पर माटी के स्वर आप सुनेंगे। सुबह 10:00 आओ बच्चों में सुनिएगा हमारे छोटे छोटे प्रयास धरती को हरा भरा बना सकते हैं विषय पर बातचीत। प्रायोजित कार्यक्रम डिजिटल पब्लिक स्कूल बिलासपुर के बच्चों की प्रस्तुति भी आप सुनेंगे आओ बच्चों में।

सुबह 7:05 पर प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सहकारिता ही क्यों। प्रायोजक विजय कुमार गुप्त, प्यारेलाल गुप्त, सृजनपीठ बिलासपुर रतनपुर। सुबह 10:30 पर पेश करेंगे नए तराने। 11 से विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे। कल शाम 5 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। शाम 6:20 पर और शाम 7 सुनेगा ईमेल करें गीत सुने। 6:05 पर जिले की चिट्ठी आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे। 6:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे फाइनल मैच का आंखों देखा हाल। कल शाम 5:05 पर ग्राम सभा में सुनिएगा मोटा अनाज की खेती विषय पर बेरा की गोठ और क्रम फरमाइशी लोकगीतों का आप मन के गीत। कार्यक्रम विवरण समाप्त। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी में समाचार। हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। संसद के मानसून सत्र 20 जुलाई ले हो ही शुरू और 13 अगस्त तक चलही। राज्य मंत्रिमंडल के 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर आज ले नवा रायपुर में शुरू। और मौसम विभाग हा अवैया 3 दिन तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 जगह में भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी देहे। अब समाचार विस्तार ले। संसद के मानसून सत्र ये महीना के 20 तारीख ले शुरू होही और 13 अगस्त तक चलही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू हा बताएं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा 20 जुलाई

0: पहले संसद के मानसून सत्र बुलाए के सरकार के प्रस्ताव ला मंजूरी दे दिहावे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू हाकिहिन की सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दा ऊपर सार्थक बहस चर्चा और निर्णय ले में ध्यान केंद्रित करे जाही। राज्य मंत्रिमंडल के दो दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर आज ले नवा रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में शुरू हो गए है। पहले दिन की शुरुआत मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास के सत्र ले होइस। ओमन मंत्रिमंडल नेतृत्व जीवन मूल्य आंतरिक संतुलन और सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता जैसन विषय ऊपर बात करिन। ये दौरान बताया गया कि जनप्रतिनिधि की भूमिका सिर्फ विभागीय कामकाज तक ही सीमित नहीं है, फिर ओमन ला जनता के बीच भरोसा के केंद्र घलो बनना है। उन्हें सत्र के दौरान अभय करंदीकर मंत्रिमंडल के सदस्य मंडला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा आधारित निर्णय और डिजिटल गवर्नेंस के बदलत भूमिका ले परिचित कराइन। ओमन बताइन कि अवैया बेरा मा वही शासन प्रभावी माने जाही जौन तकनीक के उपयोग सिर्फ सुविधा बर नहीं फिर तेज फैसला बेहतर निगरानी और पारदर्शी डिलीवरी बर कराए। एकर अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद्र कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऊपर मंत्रिमंडल चर्चा करिन। ओमन ग्रामीण आय बढ़ाए बर कृषि मूल्य श्रृंखला ला मजबूत करे बर स्थानीय उद्यम ला बढ़ावा दे बर और गांव केंद्रित विकास के जरूरत ऊपर जोर दिन। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि बस्तर बर अब अगला चरण विकास जनविश्वास और अवसर के हवे। सड़क शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन निवेश और स्थानीय आजीविका ये सबो क्षेत्र में प्रगति बर शासन के नवा सोच जरूरी है। ऐसन में मंत्रिमंडल ला आधुनिक प्रशासन तकनीक और जन केंद्रित नीति समझ ले लैस होना जरूरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चिंतन शिविर ला बदलत समय के जरूरत बताइन है। ओमन की हिंकी शासन ला सरलग सीखे बर पढ़ी खुद के मूल्यांकन करे बर पढ़ी और भविष्य के चुनौती के अनुसार खुद ला तैयार करना होही। श्री साय की हिंकी अब सरकार ला सिर्फ प्रशासनिक दिनचर्या के रूप में नहीं फिर विकसित भारत के लक्ष्य के अनुसार एक प्रशिक्षित जिम्मेदार व्यवस्था के रूप में गढ़ना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा अलनीनो के सेती देश के कुछ एक जगह मा सामान्य ले कमती वर्षा और ओखर प्रभाव के समीक्षा बैठका करिन। श्री शाह कहिन कि सरकार अलनीनो के सेती देश के कुछ एक जगह मा कमती वर्षा और संभावित सूखा के स्थिति मा सरलग नजर राखे हवे। ओमाना कृषि मंत्रालय और दूसर मंत्रालय मनला सतर्क रह के और किसान मनला बने फसल के बुआई के बारे में सलाह दे बर राज्य सरकार मन संग सलाह करे के निर्देश दीन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चालू खरीफ सीजन और संभावित अल्प वर्षा के तैयारी के समीक्षा करत अधिकारी मनला किसान मन बर खाद बीजा और सिंचाई के पर्याप्त व्यवस्था निश्चित करे के निर्देश दीन है। बैठका में बताया गया कि प्रदेश ला 46,000 टन ले ज्यादा DAP उर्वरक के आपूर्ति मिल गया हवे। मुख्यमंत्री हा जल संरक्षण वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण रोजगार ऊपर जोर देवत सबो जिला बर कार्य योजना तैयार रखे के निर्देश दीन। ओमन की हिन की संभावित अल्प वर्षा के चुनौती ले निपटे बर राज्य सरकार हा पूरा तरीका ले तैयार है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगू बाढ़ बाचे समाचार कोती। नई दिल्ली में 16वां वित्त आयोग के अनुशंसा ऊपर रखे गए राष्ट्रीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुईन। कार्यशाला में ग्रामीण स्थानीय निकाय बर अनुदान के अनुशंसा के जानकारी साझा करेगी। एकर अनुसार छत्तीसगढ़ ला अवैया 5 बछर में 11,664 करोड़ रूपया के अनुदान मिली। ए मौका में ग्रामीण स्थानीय निकाय मनला वित्तीय संसाधन के आवंटन पंचायत के वित्तीय क्षमता ला मजबूत करे के और 16वां वित्त आयोग के अनुशंसा में काम

0: कामकाज ले जुड़े विषय पर गोठबात करेगी। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम 11,000 दिव्यांग मनला स्वरोजगार पर ऋण देवाय के लक्ष्य रखे है। संगे संग हितग्राही मनला कौशल विकास प्रशिक्षण उद्यमिता मार्गदर्शन और विपणन सहयोग घलो दे जाही। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया निगम ले अधिकृत आने आने बैंक के प्रतिनिधि मन के बैठका लेके स्वरोजगार ऋण योजना के काम के समीक्षा करिन। ये मौका मा श्री कावड़िया कहिन की राज्य सरकार के उद्देश्य दिव्यांग मनला सिर्फ आर्थिक मदद दिवाना नहीं, फिर वो मनला सफल उद्यमी बना के प्रदेश के विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाना है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में जनसंचार शिक्षा और शोध के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्थापना करे जाही। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल और हिसार के गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई के बीच हुए बैठका में एकर ऊपर सहमति बने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम डहारले अवैध शिकार के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जावत थे। यही कड़ी मां कवर्धा परियोजना मंडल हा नर चीतल के अवैध शिकार के मामला में 7 जन आरोपी मनला गिरफ्तार करके जेल भेज दे है। मिली जानकारी के अनुसार बोड़ला परियोजना परिक्षेत्र के भलपहरी बीट के जंगल में शिकार मां जाल बिछा के चीतल के शिकार करिन। एकर बाद चीतल के मांसला आपस में बांटे के तैयारी करे जावत रीस, तभे वन विभाग के टीम हा दबिश दे के आरोपी मनला गिरफ्तार करीस। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहारले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सब आकाशवाणी केंद्र मन एक संग्रह लेकर ही ए बखत के अंक मा सूरजपुर जिला के बारे में जानकारी दे जाही। अब पेश है मौसम के हाल। राजधानी रायपुर संग्रह प्रदेश के कतकोन जगह में आज गरज चमक के संग तेज वर्षा होए के खबर है। मौसम विभाग वैया 3 दिन तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 जगह में भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी आकाशवाणी समाचार ले गोठ बात करत बताइन कि उत्तर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ऊपर एक ठन चक्रवाती घेरा बने हैं। एकर प्रभाव ले प्रदेश में बारिश के गतिविधि बढ़ गया हवे। ओमन बताइन कि अवैया 24 घंटा के दौरान राज्य के कतकुन जिला में भारी वर्षा होए के संग आकाशीय बिजली गिर सकत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। संसद के मानसून सत्र 20 जुलाई ले हो ही शुरू और 13 अगस्त तक चलही। राज्य मंत्रिमंडल के 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर आज ले नवा रायपुर मा शुरू। और मौसम विभाग अवैया 3 दिन तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 जगह में भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का
2: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। FM बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। छह बजकर 21 मिनट हुए हैं श्रोताओं। लीजिए पेश है ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग।

खोड़ा रेंगाखार से देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह नेताम, दक्षप्रिया गीत सरगम नेताम, पिपल और सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा, बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता, डिंपल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवा सुहान, सरफराज फरदीन, अरजान अबान अब्बासी, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि शीतल राजेश, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, निशु दीदी, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, तुलसी गोस्वामी, लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, गोल सिटी बरकाखाना से अफजलता, शाहीन सुल्तान, तो सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक, अडार नाथघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, भिलाई चौरादा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून, जिशान अहमद, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, पजोनिया जालौन उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया, बोरी खुर्द से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत जगुताई, साक्षी ताई राजे जाधव, कुमार हेड़ा सहारनपुर से सईद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, जालंधर से रोशन जहां, नुसरत जहां, मन्नत जहां। सुनवा रहे हैं आप सभी को आया सावन झूम के फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

पुनः स्वागत श्रोताओं, आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं आप सभी के ईमेल। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु, रिधान खुराना। हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा। ग्राम उच्च भट्टी से मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष, शिवन्या गोस्वामी। पलारी से नीतीश कुमार, लखनलाल, सावित्री बाई, ईशांत, तनुजा, देवांगन।

आया सावन झूमके, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और अगले गीत की फरमाइश आप सभी की, भूजो कैंचिया भटिंडा से परम सिंह जोड़ा मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, एकम, दमन और अभिजोत, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल, मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, दिल्ली से अजीम वकार, माहिर अजीम, जेबा अजीम, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, नागपुर ओकार हाइट्स बहादुरा से ये श्रोता हैं वैशाली, शैलेश कवाड़कर, श्वेता, सुमित ध्वनि, परी, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश गवाणकर, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल नवानकर, ग्राम उच्च भट्टी से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशी और शिवन्या गोस्वामी। सुनवा रहे हैं आप सभी को उपहार फिल्म का ये गीत मुकेश और साथियों की आवाज़ों में। आनंद बख्शी की शब्द रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

0: हम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

श्रोताओं, ईमेल करें, गीत सुने। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के लिए ईमेल पर मिली हुई अगली फरमाइशें आप सभी श्रोताओं की। दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल, अजीत कुमार, आयुष।

और नंदिनी जंघेल, पैठण से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद, सुनल जाधव, बगबुड़वा पथरिया से नरेम नेताम, कुसुम नेताम, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, महसौली सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम शमीम, ममता रानी, पूनम शर्मा, लसोड़िया राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी, भाटापारा से विष्णु साहू, पूरव मीरा, हर्ष कुमकुम और योगेश्वरी साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दयापुर बावली से गजानन गेले, नवदीप विश्वदीप, अशोक गेले, गोगावा खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री, सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देविका रानी, गजेंद्र कुमार, पार्थ और हयांश चंदन, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम, कृष्णा देवांगन, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया आयान, कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पुण्येंद्र, साहिल चंद्राकर, खंडवा से अब्दुल हक डावर, अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वरों में पीछे पेश है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना, फिल्म हाथी मेरे साथी का। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम के ही समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रादेशिक समाचारों के लिए अब जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका

0: का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण

0: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए आज से IIM रायपुर में शुरू हुआ 2 दिवसीय चिंतन शिविर, मुख्यमंत्री ने इसे बदलते समय की आवश्यकता बताया। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार छत्तीसगढ़ को अगले 5 वर्षों में 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर आज से नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में शुरू हो गया है। पहले दिन की शुरुआत मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास के सत्र से हुई। उन्होंने मंत्रियों से नेतृत्व, जीवन मूल्य, आंतरिक संतुलन और सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता जैसे विषयों पर संवाद किया। इस दौरान बताया गया कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका केवल विभागीय कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जनता के बीच भरोसे का केंद्र भी बनना है। वहीं सत्र के दौरान अभय करंदीकर ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा आधारित निर्णय और डिजिटल गवर्नेंस की बदलती भूमिका से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वही शासन प्रभावी माना जाएगा जो तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि तेज फैसले, बेहतर निगरानी और पारदर्शी डिलीवरी के लिए करे। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि बस्तर के लिए अब अगला चरण विकास, जनविश्वास और अवसरों का है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंतन शिविर को बदलते समय की आवश्यकता बताया है। उन्होंने कहा कि शासन को निरंतर सीखते रहना होगा, स्वयं का मूल्यांकन करना होगा और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप खुद को तैयार रखना होगा। नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। कार्यशाला में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की अनुशंसा की जानकारी साझा की गई। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ को आगामी 5 वर्षों में 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। शिक्षाविद और राष्ट्रवादी विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को अक्षुण बनाए रखने राज्य के संभागीय और जिला मुख्यालय वाले सभी नगरीय निकायों में उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बताया कि मूर्ति स्थापना के लिए 10 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि डॉ. मुखर्जी की प्रतिमा राज्य के 32 नगरीय निकायों में लगाई जाएगी।

0: है कि 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। जलवायु परिवर्तन और सुपर अल नीनो के कारण संभावित अल्पवर्षा की चुनौती से निपटने के लिए कल धमतरी में कृषि विभाग द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक्सटेंशन रिफॉर्म आत्मा योजना के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषक मित्रों को आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक खेती और फसल बीमा की जानकारी दी गई, ताकि वे गांव गांव जाकर किसानों को जागरूक कर सकें। प्रशिक्षण में कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों ने कम वर्षा की स्थिति में फसलों को बचाने के लिए किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने मौसम की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए पारंपरिक फसलों के स्थान पर कम अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्मों, दलहनी और तिलहनी फसलों को प्राथमिकता देने की सलाह दी। साथ ही पानी की बचत के लिए वैज्ञानिक तरीके से धान की सीधी बुआई तकनीक अपनाने पर जोर दिया। इसके अलावा खेतों में उपलब्ध पानी का सही उपयोग, संतुलित पोषण प्रबंधन और मिट्टी की नमी को लंबे समय तक बनाए रखने के व्यावहारिक उपाय भी बताए गए। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में जनसंचार शिक्षा और शोध के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल और हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसी राम विश्नोई के बीच हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में सूरजपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम ने 11,000 दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया ने कल विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की और कहा कि हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता मार्गदर्शन और विपणन सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान करंट लगने की दो अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। राजधानी रायपुर स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में आज सुबह मकान की छत पर सोलर पैनल लगाते समय दो मजदूर हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। इस घटना में दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर बिलासपुर जिले के ग्राम भाड़म में कल खेत में काम करने गए पूर्व सरपंच समेत परिवार के 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। मृतकों में मां और के 2 बेटे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक पूर्व सरपंच दसनबाई अपने 2 बेटों के साथ खेत में मवेशियों को घुसने से रोकने के लिए मेड़ पर GI तार और नायलॉन की रस्सी से घेराबंदी करने गई थी। इसी दौरान खेत में बिछे तार में अचानक करंट आ गया और 3 उसकी चपेट में आ गए। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा होने के साथ ही आकाशीय बिजली गिर सकती है।
2: प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहने की आगामी 3 दिन तक रहने की चांसेस है और आज और कल जो है दंतेवाड़ा, नारायणपुर और इससे लगे हुए क्षेत्र में, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और इससे लगे हुए क्षेत्र में अति भारी वर्षा की ज्यादा संभावना है। इसके अलावा भी बिलासपुर, रायपुर, बस्तर और राजनांदगांव संभाग में भी, ये जिलों में भी 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का संभावना है। और परसों से भारी वर्षा का गतिविधि कम होने के चांस है, लेकिन विस्तार रूप से वर्षा जो है वो परसों भी होने की चांसेस है।
0: छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा अवैध शिकार के खिलाफ विशेष अभियान चला

बताया जा रहा है। इसी कड़ी में कवर्धा परियोजना मंडल ने नर चीतल के अवैध शिकार के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बोड़ला परियोजना परिक्षेत्र के भलपहरी बीट स्थित जंगल में शिकारियों ने जाल बिछाकर चीतल का शिकार किया था। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार का शुभारंभ किया है। सभी आवेदन ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की ग्राम पंचायत तरई गांव के सचिव किशन राठौर को प्रशासनिक अनियमितताओं और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इसी जिले में जिला प्रशासन ने मरीजों की जान से खिलवाड़ करने के आरोप में सेमरा स्थित डीडी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू वार्ड को सील कर दिया है। साथ ही अस्पताल का पंजीयन अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है। बालोद जिले के ग्राम संबलपुर में बीते 30 जून को एक व्यक्ति के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोंडागांव पुलिस ने दूधगांव चौक के पास एक मोटरसाइकिल से गांजा तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बीती रात एक अनियंत्रित ट्रक ने गायों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 9 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए आज से आईआईएम रायपुर में शुरू हुआ 2 दिवसीय चिंतन शिविर। मुख्यमंत्री ने इसे बदलते समय की आवश्यकता बताया। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार छत्तीसगढ़ को अगले 5 वर्षों में 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। डीजे पेश है कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग।

जोधपुर राजस्थान के इन श्रोताओं का ईमेल मिला है हमें। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, गर्वी चौहान, जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खटक, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद गरो मंदुरकर, यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी मनवर, प्रियांशी, देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, खुशी, वंदना खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, पांढरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री, सादुर शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। सुनवा रहे श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर एक जान है हम फिल्म का गीत आशा भोसले और शब्बीर कुमार की युगल आवाज़ें हैं। अनजान का लिखा हुआ गीत है अनु मलिक का संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना एक जान है हम फिल्म से आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज़ें थीं। और अगले गीत की फरमाइश ईमेल पर मिली हुई आप सभी की, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, फाजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशु, विशाल, आरबी, टिवांशी, शालिनी खेरा, जीवन, लड्डी खेरा, बुड़गे हंसे, राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति, जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष।

सोनू कान्हा और आदित्य देवांगन, रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोथ निखिल कांगड़ा और तन्वी बोथ, धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप अमूल्य बाठे, गुड़गांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा प्रथमेश और पांडुरंग कुम्भार, हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी प्रिंस बोस, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा और एठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा नेहा, मोनिशा साहू, लालपुर मारो से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी निम्मी पम्मी और निशांत ध्रुव, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पल और विलिस डिकेस्ट्रो, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, पूजा परिहार, ग्राम खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सोमारसाय कलेश्वर, सुखराम हीरामणि पैकरा, निम्नाबाद जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर, बाघामुड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन, जालंधर से रोशन जहां, नुसरत जहां, मन्नत जहां, मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना और चेतन भगत। सुनवा रहे हैं आपको बागमान फिल्म का गीत, अमिताभ और अलका याग्निक के स्वरों में, समीर का लिखा हुआ गीत है, आदेश श्रीवास्तव की धुन।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। और कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सभी की फरमाइश पर लोरमी चचेड़ी से शंकर कोलाम, संतोषी, संजय, संध्या, शिवम कोलाम, चंडीगढ़ से टीरी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आड़ोकार, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेणु, रजनी, प्रियंका देवांगन, हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू, डब्बू, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, भिलाई से मुकेश शर्मा, सरिता, गौरव और गरिमा शर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। सुनवा रहे हैं आप सभी की फरमाइश पर दीवाना फिल्म का गीत। समीर की शब्द रचना है, नदीम श्रवण की तर्ज, कुमार सानू के स्वर में पेश है ये गीत।

दीवाना फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज़ में आपने सुना। इस गीत के साथ ही ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। आइए चलते हैं ग्राम सभा में।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनो यहाँ जम्मू रेडियो श्रोता मयारुख संगवारी मल्ला कजरी दीदी के मया पीरित भरे राम राम जय जोहार। का हाल चाल भाई हमर मीत मितान मन के? भाई असाढ़ के महीना आ गए है और जब हमन देखथन ना कि आकाश में उमड़ घुमड़ के बादल आते त धरती दाई के अंगना में खुशी और हमर किसान भाई मन के मन में जो उमंग रही थे ओकर भर भाई दो लाइन तो बन थे त यही कहबो कि बरसत बदरी हरियर डार, बरसत बदरी हरियर डार महके माटी के खुशबू अपार। और असाढ़ आए देथे संदेश, असाढ़ आगे देथे संदेश मेहनत ले भरी हर घर औ देश। तो भाई मेहनत करे के समय होते संगी हुआ, असाढ़ महीना हा सिर्फ सोझे महीना भर नो है, ये हमर किसान भाई मन बर मेहनत भरोसा और प्रकृति के संग कदम मिला के चले की बेरा आए आए कि नो है भाई। भाई पानी गिरे के पहली खेत की तैयारी करा, जैसे ही एक पानी हो इस हम बोनी शुरू करा तक कदम से कदम मिला के बेरा बखत में अपन हर काम करे के समय आए। तो कदम से कदम मिला के बात करबो तो कहाँ जाए के बेरा हो गए संगवारी हो, हर क्षेत्र में यदि कदम से कदम मिलाबो तभी हमला सफलता मिली। यही क्रम में अब सरकार मन के द्वारा जो बहुत सारा योजना हमर किसान संगी मन पर चला थे ओकरो संग कदम से कदम मिलाना है भाई, है ना भाई, जो हमर किसान संगवारी मन पर सरकारी योजना

0: चलाए जाते ओहर ओ योजना के जानकारी हमन ला लेते रहना है समय मा औ ओकर संग म चलबो तभे तो ओ योजना के हमन ला लाभ मिलही और लाभ लेना भी है तभे तो आगू बढ़बो भाई। हमार धरती महतारी के कोरा ला जौन हमार किसान संगवारी मन हरियर बनात हैं ओ अन्नदाता किसान मन के जिंदगी ला आसान बनाए बर सरकार मन के द्वारा बहुत सारा योजना चलाए जात है और आज वही बहुत सारा योजना में से एक योजना हवे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आज ओखरे बारे में हम जानकारी सकिल के लाए हन संगी हुआ। ये योजना के ले लाखों किसान परिवार मन बर आर्थिक सहारा बनी और आर्थिक सहारा के संगे संग उखर घर परिवार पर भी एक बहुत बड़े लाभकारी योजना ए योजना से हम लाभ ले सकत हन। आगू के बात बहुत अकन है मोटरी गठरी महामार और जानबो भी पर पहली सुने संदेश आला।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
5: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: संगी हुआ संदेशा लसुनेन अगुनेन भी पर संदेशा के पहली बात करत रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के बारे में। ए योजना के शुरुआत आप मतलब बता दें 24 फरवरी 2019 में हुई और ए योजना के तहत पात्र किसान परिवार मतलब हर साल 6,000 रुपया के आर्थिक सहायता दिए जाते और ए रकम हाँ 2,500 रुपया के 3 किस्त में सीधा किसान के बैंक खाता में भेजे जाते। संगी हुआ जैसे कि हम आप मतलब बताएं पात्र किसान परिवार मतलब ता आप मतलब बता दी कि ए योजना के लाभ लेने पर पात्रता का का होना चाहिए। सबसे पहली तो भूमि के स्वामित्व होना चाहिए माने किसान परिवार है ओकर पास यदि खेती योग्य भूमि हावे और 2 एकड़ से अधिक भूमि होना चाहिए ता ओकर ओ कृषि भूमि के होना ओकर नाम में अनिवार्य है। आऊ बता दी कि परिवार के जैसे परिवार में सब जन रहे थे पत्नी पति बच्चा है ना या ओ मन से एक ही एक सदस्य पर ही ए योजना हर रही एक यो सदस्य हर पात्र माने जाही। और एक और बात बता दी ये योजना के लाभ कौन नहीं ले सकत है माने अपात्र काला माने जाही। तो यदि ओखर नामा संस्थागत भूमि है या संस्थागत भूमि धारक है संवैधानिक कोई पद में कार्यरत है ना ओ हर या तो वर्तमान में रही हवा या पूर्व में रही सो ही या कोई सेवारत या सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी है एला हमन अपात्र मानथन ये योजना बर। और ओ किसान जो वर्तमान में या पूर्व में आयकर के भुगतान माने इनकम टैक्स यदि पटाते उहू मतलब अपात्र माने जाते। और यदि पेशे से डॉक्टर इंजीनियर या पेंशनधारी हो ही जेकर पेंशन 10,000 रुपया तक के हवा ओला हमन ओकर जमीन भी है भूया भी है और यदि वह किसान सम्मान निधि योजना के लाभ लेना चाहते तो ओला अपात्र माने जाते भाई। तो चेत करके ध्यान दे के सुना के कौन हर पात्र है जिला हम ये योजना के लाभ किसान संगवारी मतलब दे सकत हन। अब बताबो ये योजना के मकसद का है तो किसान मन के खेती किसानी के जो बूता रहते ना उमा बहुत यदि खर्चा हो जाते तो ओकर मदद हो जावे सरकार के एक योजना के तहत यही ओकर ज़्यादा मकसद है। और ओकर आर्थिक स्थिति मजबूत भी बनी भाई कथे मेहनत के मोल मिले जब तो मन में उमंग जगाए मेहनत के मोल मिले जब तो मन में उमंग जगाए और सम्मान निधि के संगे संग हर सपना सच हो जाए। तो संगवारी हो ए योजना के लाभ लेने पर किसान मन ला कुछ जरूरी बात है ओकर ध्यान रखे बर पर ही तभे ओमल्ला ए योजना के लाभ मिली। तो का चीज है वो है आधार कार्ड जो है आपके वह बैंक खाता संग डायरेक्ट लिंक रहा और ई केवाईसी ओकर पूरा होना चाहिए समय समय में केवाईसी करवात रहा ओला हमन बार बार बोलत रही थन रेडियो में भी बताथन और जौन भी आसपास ओ योजना के जानकारी देने वाला विभाग है ਉਹ ਮੰਨ

देत रथे। ओकर बाद तीसरा बात करबो, जमीन के सही जानकारी दर्ज होए, माने आपके नाम में जमीन है, ये सब जो दस्तावेज लगते वह एकदम सही रहना चाहिए, तभी ये योजना के आप लाभ मिली। और बताबो चौथा बात, बैंक खाता हा सही रहे और सक्रिय हो है, मतलब आवक जावक होकर चलत रहे, तभी काबर की ये योजना के जो पैसा है आप मतलब बताए हैं है ना भाई, कि 2-3 किस्त में सीधा किसान के बैंक खाता में भेजे जाते, तो बैंक खाता सक्रिय रही तभी तो ये योजना के लाभ आप मतलब मिली। और अगर ये जानकारी सही रही तो फिर किस्त समय में आप मतलब मिलत रही। तो भाई यही बात कही बो, धान के बाली हरियर खेत और किसान के चेहरा मुस्काए और सरकार के संग चलो सबो और अपन आमदनी अही में बढ़ाए। तभी संगी हो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है ना, सिर्फ आर्थिक सहायता नो है बल्कि किसान मन के मेहनत के सम्मान घलो है। अगर आप ए योजना ला लेहे के पात्र हवे तो ए योजना के लाभ लेवाओ, और यदि अभी तक यदि नहीं लेहे हो योजना के लाभ ला तो अपन नजदीक के सर्विस सेंटर है, जगह जगह चॉइस सेंटर आजकल खुले खुले है, वहाँ जावा पूरा जानकारी लेवाओ। सबो झन सो बड़े बड़े मोबाइल हवे तो ओमा एकर पूरा जानकारी भी मिल ही और वेबसाइट भी मिल जाए जेमा आप क्लिक करके सीधा फॉर्म भर सकत हो। यदि वह नहीं बना थे तो चॉइस सेंटर जा करके वहाँ से पूरा जानकारी ले करके आप ये योजना पर फॉर्म भराओ, या कृषि विभाग संबंधित अधिकारी ले संपर्क करके जानकारी जरूर लेवाओ। और आखिर में आई कही वो भाई, धरती महतारी के मान बढ़ावाओ और मेहनत के दीप जलावाओ और किसान खुशहाल रहे हमेशा, और आवाओ ये बात ल हम बतावाओ। अब यही कामना के संग आगू कति कार्यक्रम मरेंगी, काबर के पारी आ गए किसान वाणी कार्यक्रम में जाए के।

किसान वाणी कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत हमारे श्रोता संगवारी मन के और झोंका कजरी बहनी के राम राम जय जोहार। संगी हो, जैसे कि अभी बताएं आषाढ़ के महीना और ये महीना हर हर प्रकार के खेती पर सटीक महीना माने जाते, माने हमार किसान भाई मन बतो संजीवनी बूटी ये महीना हर त खेती किसानी के बूता तो करते करथन, परंतु हर प्रकार के पौधा रोपण में के बर यह सबसे बढ़िया समय, कोई भी प्रकार के आप वृक्षारोपण या पौधा रोपण कर सका था और जगह जगह अभी सबे जन पौधा रोपण भी करत रहते हैं। कोई भी संस्था हुआ है, मनखे मन भी पौधा रोपण करते और ये समय के लाभ लेना भी जरूरी है। भाई बरसात के शुरुआत हो है ना, अभी वृक्ष पौधा लगाबो छोटे छोटे तो देखिया एक साल के गए कैसन रह रहा है, और जब बोला आप देखिया तो कतका आनंद आते, कतका सुघर लगते, वो जो आनंद के अनुभूति है ना वो कुछ चीज में नहीं मिला। तो आवा संगी हुआ सब झंझूर मिल के एक अभियान चलाइन जेकर से हमार धरती पर्यावरण और आने वाला पीढ़ी ला अमूल्य उपहार मिला है ना भाई। तो चला का चीज के अभियान है, फलदार वृक्ष लगाए के। तो चला सबे जन फलदार वृक्ष लगाए के बूता शुरू करीन। कहे जाते संगी हुआ रुख लगाबो सुख पाबो, धरती है हो ही धनवान। सही माँ जब रुख राई रथे ना धरती नाइन के कोरा माँ तो सबसे धनवान तभे माने जाते। तो रुख लगाबो सुख पाबो, धरती है हो ही धनवान, और आमा जामुन अमरूद ले महक ही हमर शहर और गांव। तो संगवारी हो एक फलदार वृक्ष सिर्फ छाव नहीं देवाए, बल्कि ओकर से मीठा फल, साफ हवा और संगे संग चिड़ई चुरगुन भर आसरा और किसान मन भर तो अतिरिक्त आमदनी के जरिया घलो बनते। तो देखा भाई आज एक पौधा रोप देवा कल बन ही बड़ उपहार, आज एक पौधा रोप देवा तो कल बन ही बड़ उपहार, और हरियर हो ही धरती दाई, खुशहाल हो ही जन और परिवार। तो संगी हुआ

आमा अमरूद लिमाऊ कटहल हो गए, सीताफल हो गए, जामुन हो गए, मुनगा हो गए, ये सब पौधा फलदार जो है ओला लगाए ले हमन अपन गांव ला हरियर बना सकत हन। और ये पौधा मन ना आने वाला बरसों तक हम सब के सेवा करत रही। कैसे जाना था ए मतलब एक घं लगा देवा बढ़िन आमा के पेड़ ला देख था, जामुन हो गए, कटहर हो गए, ये सब पौधा मल्ला ना एक बार लगाया ना तहले कई साल तक आप मल्ला मल्ला झांके बने लगा बिचारा हर हर साल फल आप मल्ला टुकना भर भर के दी। तब भाई यही बात कही वो रुख है जीवन के आधार है। और ये बात ला जानो सब, रुख है जीवन के आधार, ये बात ला जानो सब। एक एक पौधा लगा के हरियर भविष्य गढ़ाओ सब। तो आवाओ संकल्प लें, सिर्फ पौधा लगाना भर नहीं है, है ना। जैसे क्या करते हैं आजकल वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण या पौधारोपण करें के लगा दी तो होती हिरक के नहीं रहा निहारा तो भाई होला देखी है नहीं। तो कैसे नान कुन लेकर रही थे तेकर कतका देखभाल करथन, समय में दूध पिलाथन, समय में सुताथन, समय में तबियत खराब हो गए तो इलाज पानी भी करथन। बस वही नान कुन लैका ये पौधा है जे आप मन रोपे है तो उन्हें तो देखभाल भी उतके अच्छा से करना है भाई। पानी देवाओ ओकर तीरे तीर बाड़ लगा देवा ताकि जो पशु मन है आवारा गरुआ बछरू मन चराय मत और समय समय में देख रेख तभो करो तभे पौधा बड़े रुख बनही और फलदार वृक्ष बनही। फलदार वृक्ष बनही संगी हुआ आपके लगाए पौधा ला जब ओकर खाही ना फल ला तो देखी है कतका आशीर्वाद मिली। तो ए अभियान में अपन सहभागिता निभावा, एक पौधा जरूर लगावा, प्रकृति के सेवा करा और आने वाले पीढ़ी पर हरियर भविष्य छोड़ा। यही संदेश के संग आवा कार्यक्रम में आगू बढ़ीन। और गोठ बात तो बहुत हो गए है, सब्बे जन कथे कजरी दीदी गोठे गोठ करथस नहीं भाई, गोठ के संग संग गीत भी सुनाबो। तो आवा एक गीत सुनी

0: छोटे छोटे बात लगाबू नहीं बतावया ज्यादा नहीं पिरावया मेरे आगे फूल बीत आया बहिना खिला लेना।
1: हाँ संगी हुआ देखा सुने इन बैतल राम साहू के स्वर में सुख घर गीत ला आप पारी आ गए भेंट वार्ता सुने के। भेंट वार्ता के क्रम में संगी हुआ आज के विषय हवा है बदलते मौसम में किसानों का सुरक्षा कवच कृषि वानिकी। ये विषय के विशेषज्ञ हैं श्री अजीत विलियम्स वैज्ञानिक वानिकी कृषि।

0: महाविद्यालय बिलासपुर ऐखर सोसुक घर गोट बात हमार महंगो भैया करे हैं त आवा सुनिन भेंट वार्ता।
1: कल्पना करो आप मन समय में बुआई करो बीजा खरीदो और खाद डालो मेहनत करो फिर बारिश अच्छा नहीं होए के कारण कभू सूखा तो कभी बाढ़ तो कभू लंबा ड्राई स्पेल ऐसा स्थिति में किसान का करें। आज के किसान केवल मौसम के भरोसा नहीं रह सके उनसे ऐसा साथी की ओला जरूरत है जो उन्हर हर मौसम में ओकर साथ खड़े रहे ऐसा साथी हवाए पेड़ पौधा यही विषय में आधारित आज के हम ये भेंट वार्ता लाने हैं। विषय हवाए बदलत मौसम में किसान के सुरक्षा कवच कृषि वानिकी ये विषय में जानकारी देवत हवाए हमारे स्टूडियो में आए हुए श्री अजीत विलियम्स जी मन जो हवाए वैज्ञानिक वानिकी कृषि महाविद्यालय बिलासपुर में। तो सबले पहले तो स्वागत कर लेते हैं श्री अजीत विलियम्स जी आप मन के हमारे स्टूडियो में स्वागत हवाए आप मन राम राम।
2: किसान भाइयों राम राम महंगू भैया राम राम।
1: सबले पहले जानना ये चाहतन कि आज जिसन किसान सबले ज्यादा कौन बात ले चिंतित हवाए इला आप थोड़ा सा बताओ।
2: महंगू भैया यदि आज किसी किसान से पूछा जाए कि उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या है तो उसका उत्तर होगा मौसम। पहले किसान आसमान देखकर वर्षा का अनुमान लगा लेते थे आज मौसम का व्यवहार बदल गया है जून में बारिश नहीं हो रही है एक ही दिन में पूरे महीने भर की बारिश हो जाती है। छत्तीसगढ़ में धान की खेती मुख्यतः वर्षा पर आधारित है ऐसे में मानसून की अनिश्चितता किसानों की चिंता बढ़ा रही है।
1: का जलवायु परिवर्तन अब वास्तव में कहे जाए तो किसान के खेत तक पहुंच चुके हवे ऐसा बात दिखत हवे का।
2: बिल्कुल मैंगू भैया सबसे पहले हमें समझना है कि जलवायु परिवर्तन है क्या। देखिए जलवायु परिवर्तन का अर्थ है मौसम के सामान्य चक्र में असामान्य परिवर्तन। ये सब किताबों का विषय नहीं रह गया है आज आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि गर्मी पहले से ज्यादा हमें महसूस हो रही है लू का जो समय है वो बढ़ गया है वर्षा का जो वितरण है वो असामान्य हो गया है कीट एवं जो व्याधि है उसकी समस्या बढ़ गई है ये सब जलवायु परिवर्तन के संकेत है।
1: ऐसा परिस्थिति में कृषि वानिकी किसान के कैसे मदद कर सकत हवे ये बात ला थोड़ा फुरिया के बताओ आप मन।
2: सबसे पहले हमें ये समझना है कि कृषि वानिकी है क्या। देखिए खेत में जो कृषि फसल है और पेड़ दोनों का समन्वय ही कृषि वानिकी कहलाता है। मैं कृषि वानिकी को किसानों का हरा बीमा कहता हूँ। फसल केवल एक मौसम की हमें आय देती है लेकिन पेड़ कई वर्षों तक हमें आय देते रहते हैं। यदि किसी वर्ष धान की फसल खराब हो जाए तब भी खेत में लगे जो वृक्ष है वो किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हमें एक ही भूमि से खाद्यान्न मिल जाता है चारा फल ईंधन लकड़ी और अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। इसलिए ये कृषि वानिकी किसानों की मदद करने में अत्यंत सहायक है।
1: का पेड़ वास्तव में खेत के तापमान ला घला कम करते ऐसा कुछ वैज्ञानिक बात हो तो बताओ अपन।
2: जी हाँ किसान भाइयों हमने लगातार वैज्ञानिक प्रयोग डाले हमने अध्ययन किया और ये पाया कि जो वृक्षों की छाया है और जो वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है उसके कारण खेत का तापमान कई डिग्री तक कम हो सकता है। जो वृक्ष है उसको हम प्राकृतिक एयर कंडीशनर भी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां पर वृक्ष अधिक होते हैं वहां नमी भी अधिक रहती है और आपने स्वयं महसूस किया होगा कि छायादार स्थान का तापमान खुले स्थान की अपेक्षा 4 से 5 डिग्री तक कम रहता है।
1: छत्तीसगढ़ के किसान कृषि वानिकी काबर अपनावे ये बात ला बताओ।
2: देखिए कृषि वानिकी उन्हें मुख्यतः 4 प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। एक तो मिट्टी में वो नमी का संरक्षण करता है तो जल की सुरक्षा होती है। दूसरा जो वृक्ष है वो हमको लकड़ी फल बांस और अन्य उत्पादों से हमें आय प्रदान करता है तो हमारी आय की बचत होती है आय की सुरक्षा होती है। ये जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण में उसको उपयोग करता है तो जो वायुमंडल की कार्बन है वो लकड़ी के उत्पादन के रूप में हमें दिखाई देती है। साथ ही साथ जो जैव विविधता है जैव विविधता बनाने में भी जो वृक्ष है मुख्य भूमिका निभाते हैं तो जो पर्यावरण का जो संतुलन बनाने में जो वृक्ष है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ ये मूल्यवान संपत्ति लकड़ी के रूप में हमें प्रदान करती है तो ये हमारे भविष्य की सुरक्षा भी हमारी सुनिश्चित करती है।
1: अच्छा का पेड़ वास्तव में किसान के पेंशन बन सकत हवे का कैसा नीला आप बता सकत हो?
2: निश्चित रूप से।

0: मैंगू भैया, जिस प्रकार कोई व्यक्ति बैंक में पैसे जमा करता है, उसी प्रकार किसान पेड़ लगाकर भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। आज लगाया गया कोई भी वृक्ष, चाहे वो सागौन है, खमार है, बांस, ये कुछ वर्षों बाद हमें लाखों रुपए का मूल्य देते हैं। इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि जो पेड़ है वो किसान की सबसे बड़ी सुरक्षित FD है, सावधि जमा। इस सेवा के लिए वो कोई भी शुल्क हमसे वृक्ष नहीं लेते हैं, बल्कि हमें नाना प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं।
1: जब चाहे तब भजा सकत हैं, लग कहे
0: जी
1: जाए,
0: हाँ,
1: और अपन समय में काम वही कहे जाए। मानसून के अनिश्चितता ला देखत हुए एकदम दौर चलत हवे, इमें कौन कौन से पेड़ पौधा ला लगाया जा सकत हवे और सबले ज्यादा उपयोगी कौन से पेड़ हा, वृक्ष हवे?
0: किसान भाइयों, देखिए, अगर आपको इमारती लकड़ी चाहिए तो सागौन, खमार, शीशम, बांस, महोगनी, मालाबार नीम, ये वृक्ष है। आपको साल भर जलावन की लकड़ी चाहिए तो आप बबूल, नीलगिरी का रोपण कर सकते हैं। फल आपको प्रदान करने के लिए बहुत सारे वानिकी वृक्ष हैं, जिसमें आंवला, कटहल, जामुन, बेल, मुनगा, अमरूद, आम, ये सभी वृक्ष हमें फल प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें अपने पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से और सुंदरता की दृष्टि से, तो गुलमोहर है, अशोक, कदम, पारिजात, मौलश्री, पेल्टाफारम, जारूल, कचनार और अमलतास के वृक्ष का आप रोपण कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे वृक्ष हैं जो बहुउद्देशीय वृक्ष कहलाते हैं, जो हमें नाना प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं, जिसमें नीम, मुनगा, अर्जुन, महुआ, पलाश, करंज, आंवला और शहतूत के वृक्ष हैं। तो ये वृक्ष कम देखभाल में भी हमें अच्छे परिणाम देते हैं और हमें नाना प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं।
1: अब बात आते का सिर्फ कहे जाए तो बड़े किसान मन बर ही कृषि वानिकी उपयोगी हवे का, ऐसा बात ला बतावा?
0: ऐसा नहीं है किसान भाइयों, छोटे और जो सीमांत किसान हैं, इसके सबसे बड़े लाभार्थी हो सकते हैं। खेत की मेड़ों पर वृक्ष लगाकर भी कृषि वानिकी अपनाई जा सकती है। इसके लिए बड़ी भूमि की आवश्यकता नहीं होती है, और जो हमारा राज्य शासन है और केंद्र जो सरकार है, वो अनेक योजनाएं वो चालू कर रखा है उन्होंने, और वो अनुदान हमें उपलब्ध कराते हैं। किसान भाई उसकी जानकारी प्राप्त कर उससे लाभ ले सकते हैं। बस आपको अपने आसपास जो भी वन विभाग का जो कार्यालय है, वहाँ पर जाकर संपर्क करना होगा। और वैसे ही जो आप ऑनलाइन में भी जाकर अगर आप खोजें, तो आपको पूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकती है।
1: एक बहुत बढ़िया ढंग से कृषि वानिकी अगर मॉडल के रूप में कहे जाए तो आप कैसन ढंग से देखते हो, अगर किसान चाहें तो कर सकें?
0: देखिए किसान भाइयों, जब आप कृषि फसल के साथ वानिकी वृक्षों को लगाएंगे, तो वो एक मॉडल बन जाता है, जिसको हम कृषि वानिकी पद्धति कहते हैं। वहीं पर आप कृषि फसलों के साथ अगर आप फलदार वृक्षों को लगाएंगे, तो वो कृषि उद्यानिकी पद्धति कहलाती है। वहीं पर आपने चारा प्रदान करने वाले वृक्षों को लगाया, तो कृषि चारा पद्धति कहलाती है। तो आपका अपना उद्देश्य क्या है? आप इमारती लकड़ी लेना चाहते हैं, चारा की फसल लेना चाहते हैं, अगर आप पौधे या फल लेना चाहते हैं, तो आप उसका समायोजन कर सकते हैं। आप कृषि फसलों के साथ वृक्षों को लगा सकते हैं, मेड़ों का उपयोग कर सकते हैं उसके आसपास। उसके अलावा अपने घर के आसपास जो भी खाली स्थान है, वहां पर आप वानिकी वृक्षों को लगा सकते हैं। जो ग्राम पंचायत की खाली जमीन है, वहां पर भी आप वृक्षों को लगा सकते हैं। जो हमारे स्कूल है, नलकूप है और नहर के किनारे, वहां पर भी वानिकी वृक्षों को लगाकर वहां पर आप हरा भरा पर्यावरण कर सकते हैं, और उसके आपको फिर परिणाम विभिन्न रूप से पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि से आप महसूस को करेंगे।
1: जोन किसान भाई मन कृषि वानिकी ला अपनाना चाहत हुए, उनकर बार आपका कहना चाहत हो, कैसे ढंग ले ला अपना सकत हुए, कर सकत हुए आसानी ले?
0: किसान भाइयों, इसके लिए आप अपने आसपास जो भी कृषि महाविद्यालय है या कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर विशेषज्ञ है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो समय है, अभी जुलाई का आरंभ हो गया है, और यहाँ पे सरकार भी निशुल्क पौधे प्रदान करती है, तो वन विभाग की रोपणी है या वन विभाग का जो भी कार्यालय है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, योजना की जानकारी ले सकते हैं। अभी भी समय है काफ़ी, आप उसका लाभ ले सकते हैं।

0: अपने खेत की मेड़ों में अपने कृषि फसलों के साथ आप वानिकी वृक्षों का समायोजन करें और अपने पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान प्रदान करें।
1: जल संरक्षण माँ कृषि वानिकी की का भूमिका हवा इहू ला बता दो, काबर की अब जब शुरू मौसम ले देखा थन, पानी ले देखा थन, तो शुरुआत हो है तो आखिर में यही बात ला जानना बड़ जरूरी है।
0: किसान भाइयों, जैसे आप सभी जानते हैं कि वृक्ष वर्षा जल को मिट्टी में समाहित करने का कार्य करते हैं, उनकी जड़ें पानी को जमीन के भीतर पहुंचाती है। जहां पर पेड़ होते हैं वहां पर जो कुएं हैं, तालाब है, भूजल जो स्रोत है वो अधिक समय तक जीवित रहता है। तो इस प्रकार जो वानिकी वृक्ष है हमारे पर्यावरण संरक्षण में कितने मददगार है इससे आप अनजान नहीं हैं। बस आपको पहल करना है और अपने पर्यावरण के संरक्षण में अपना ये बदलते मौसम और अनिश्चित मानसून के इस दौर में कृषि वानिकी किसानों की आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा एवं मजबूत उनको आधार प्रदान कर

0: है और अपने पर्यावरण के संरक्षण में अपना, ये बदलते मौसम और अनिश्चित मानसून के इस दौर में कृषि वानिकी किसानों की आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा एवं मजबूत उनको आधार प्रदान कर सकती है। रहे हैं आप, मौसम बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, बारिश कम हो रही है, तो उसका एक ही समाधान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाकर अपने पर्यावरण का संरक्षण करें।
1: और बदलत मौसम में किसान की सुरक्षा कवच
0: जी
1: बन सका था,
0: बन सकता।
1: ये बात बड़ा बढ़िया ढंग से आप बताया। कृषि वानिकी सही में कहे जाए तो बहुत अच्छा हवा इला किसान भाई मन अपना सकत हवे, तो बड़ा बढ़िया विषय रही सब बदलत मौसम में किसान के सुरक्षा कवच कृषि वानिकी, ये विषय में जानकारी दिया। बेरा बखत में इसने जानकारी देते रही, आज जो जानकारी दिया, विस्तार ले जानकारी दिया, हमारे स्टूडियो में आया करबर श्री अजीत विलियम्स जी, आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद महंगू भैया।
2: संगी हुआ अभी सुनत रहे हैं कार्यक्रम भेंट वार्ता। आज के भेंट वार्ता में विषय रही से बदलत मौसम में किसान के सुरक्षा कवच कृषि वानिकी। ये विषय के विशेषज्ञ रही ने श्री अजीत विलियम्स जी, जो उन्हें वैज्ञानिक वानिकी कृषि महाविद्यालय बिलासपुर खर सो सुघर गोट बात हमारे महंगू भैया करत रही है। अब दीदी है बार बार इशारा करत है, कजरी बहनी हमन के संदेशा ल सुनाबे कि नहीं, वो कहा थे ले वो दीदी संदेशा ल सुना दे। वो
3: क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
4: पुतला बोल रहा
3: है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच
3: है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: अरे सुन तो,
7: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
6: किसको?
7: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
6: अच्छा ये बात है।
7: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
6: अब तो झट से बात हो जाती है।
7: ऐसा क्या?
6: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
7: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
6: हाँ,
7: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
8: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
3: संगी हुआ संदेशा भी सुनें, अब पारी आ गए सुघर संगीत सुने के। आवाज सुनें राकेश तिवारी जी के स्वरमय गीत।

संगी हुआ ये गीतला स्वर धेरे इन्हें राकेश तिवारी जी मन अब पारी आ गए मंडी कती जाके ता मंडी मा आज धान जो सामान्य धान होते ओकर कीमत रही से 2300 रुपए कुंटल गेहूं हवाए 2440 और अधिकतम हवाए 2585 रुपए कुंटल मक्का जिला जोंधरी कथे ओकरो कीमत हवाए 2100 रुपए कुंटल और सरसों 7100 रुपए कुंटल चली साग भाजी कती ता आज पताल हवाए 2200 रुपए कुंटल पत्ता गोभी हवाए 1500 रुपए कुंटल हरियर मिर्ची हवाए 4000 और रमकेरिया के भाव हवाए 2900 रुपए कुंटल लिमाऊ हवाए 8500 रुपए कुंटल और पपीता हवाए 4200 रुपए कुंटल धनिया बीज जन होते वह 7000 रुपए कुंटल हवाए और लौकी 800 से 1000 रुपए कुंटल तक है गाजर हवाए 3000 और अधिकतम 3200 रुपए कुंटल और भाटा हवाए 800 रुपए कुंटल और अधिकतम 1000 रुपए कुंटल और गोंदली के बात करबो तो गोंदली के भाव हवाए 2200 रुपए कुंटल और अधिकतम हवाए 2400 रुपए कुंटल संगवारी हुआ अब हम थोड़ा कन किसान भाई मन पर समसामयिक सुझाव जो लेके आए हैं वो मन ला बता दी महीना चला थे अषाढ़ और अषाढ़ में बरसात शुरू हो जा रहे थे तब बुआई के समय रहते है धान के खरीफ फसल में धान हो गए है ना मक्का हो गए

जो भी बुआ था आप सबके बुआई के समय रथे तो एमा ध्यान देना है कि यदि अच्छा फसल लेना है तो खरीफ फसल की बुआई के शुरुआती जो देखभाल है ओकर पर विशेष ध्यान देना रथे। कैसे मध्यम और देर से पकाए वाला बीज के किस्म के रोपाई जुलाई मध्य तक पूरे कर लेना जरूरी हवा और रोपाई जो करिया वाला 20 से 15 सेंटीमीटर के दूरी में ही करा ताकि आपके पौधा अच्छा रहे और बढ़िया बढ़ाए और रास्ता बीच में जगह भी मिलाए। रोपाई के 20 से 25 दिन बाद निंदाई गोड़ाई करा, आवश्यकता अनुसार यूरिया या फिर टॉप ड्रेसिंग करा। मक्का सोयाबीन या राहेर के जो बुआई करा था मैं ओमन बार अभी बुआई नहीं हो तो पर्याप्त नमी हो में ही बुआई करा, जिससे पानी गिर जाते थोड़ा बहुत तो खेत में नमी हो जाते तो तुरंत वो चीज़ की बुआई कर देवा। अधिक बारिश हो में खेत से अतिरिक्त पानी जो भर जाते ओला निकाले के निकासी के भी व्यवस्था कर लेवा ताकि आपके जो शुरू शुरू फसल लगाए हैं वह जलकै झन। और अंकुरण के बाद जो छोटे छोटे पौधा निकलते तो ओकर भी व्यवस्था करा कि कैसे ओकर लगाना है का करना है। और मृदा परीक्षण जरूर करवावा, ओकर अनुसार ही आप खातू माटी डाल सकत है। ये जरूरी बात है संगी हुआ। और जौन हमारे पशुपालन करे है संगवारी मन वो मन ध्यान देवा कि हरा चारा पशु मन ला जरूर व्यवस्था करा, काबर के बरसात में खुरपका मुँहपका गलघोंटू ये सब रोग जल्दी जल्दी होते तो एक बार टीकाकरण लगवावा और खान पान के बढ़िया व्यवस्था रखा। और जो कोठा में आप रखा था ओमा व्यवस्था रखा कि वो ठीक से रहे। और देखा मौसम के बात करबो तो आज की मौसम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस नोट किए गए। देखा बेरा बुलक गए कहते कजरी दीदी रेंग रेंग अपन घर कती तसंगी हुआ। आज के कार्यक्रम ले देवा विदा और झोंको राम राम जय जोहार।

किसान वाड़ी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत।

श्रोताओं, सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए पेश है पिनाज मसानी के स्वर में और एक गीत।

बिनाज मसानी के स्वर में ये गीत हमने सुना। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत आप सभी का रजनीगंधा के आज के अंक में। मीनाक्षी है आज आपके साथ। श्रोताओं, रजनीगंधा में आज हम बातें करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे महान गीतकार की जिनके शब्दों में भारतीय संस्कृति, भक्ति, राष्ट्रप्रेम और मानवीय संवेदनाओं की अद्भुत झलक दिखाई देती है। वे हिंदी सिनेमा के एक महान गीतकार थे। राजस्थानी और शुद्ध हिंदी शब्दों के अद्भुत मिश्रण के लिए उन्हें जाना जाता है। वे गीतकार जिन्होंने ऐ मालिक तेरे बंदे हम, आ लौट के आजा मेरे मीत जैसे कालजयी गीत लिखे हैं।

भरत व्यास का जन्म हुआ 6 जनवरी 1918 को राजस्थान के बीकानेर में। बचपन से ही उन्हें हिंदी साहित्य, कविता और भारतीय संस्कृति से विशेष लगाव था। इसी रुचि ने आगे चलकर उन्हें हिंदी फिल्मी जगत के महान गीतकार के रूप में बॉलीवुड में पहचान दिलाई। भरत व्यास ने अपने गीतों में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवीय संवेदनाओं को विशेष स्थान दिया। उनकी भाषा सरल, मधुर और भावपूर्ण थी।

श्रोताओं, भरत व्यास के गीतों में उनकी भाषा सरल, मधुर और भावपूर्ण हुआ करती थी। यही कारण था कि उनके गीत समय की सीमाओं को पार करते हुए आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण उनका शुरुआती जीवन बेहद कठिनाइयों में बीता। हालांकि इन सब बाधाओं के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और कला के प्रति उनका लगाव भी उनकी उम्र के साथ धीरे धीरे विकसित होता चला गया। भरत व्यास का मानना था कि गीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देने का एक सहज सरल माध्यम भी है। इसलिए उन्होंने हमेशा ऐसे शब्द चुने जो प्रेरणा दे सकें, सकारात्मक सोच जगाएं और हमेशा भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाएं।

अपने फिल्मी सफ़र के शुरुआती दौर में भरत व्यास फिल्म निर्देशक बनना चाहते थे। उन्होंने अभिनेता, गायक और निर्देशक के रूप में काम भी किया फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन शायद उनकी बेहतरीन रचनाएं बॉलीवुड को मिलनी थी, इसलिए सन 1943 में दुहाई फिल्म से उनके गीतकार के कैरियर की शुरुआत हुई। 1950 और 60 के दशक में विशेष रूप से पौराणिक और सामाजिक फिल्मों में उनके गीतों ने हिंदी सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। उन्होंने अपने कैरियर में तकरीबन 1000 से अधिक गीत लिखे हैं और सभी गीत सुनने वालों की जुबान पर हैं, जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं रेडियो पर और हमारे जहन में बसे हुए हैं वो सभी गीत।

श्रोताओं, भरत व्यास के गीतों में भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और प्रकृति का बेहद काव्यात्मक वर्णन हुआ करता था। उनके गीतों में इस्तेमाल की गई हिंदी इतनी सहज, सरल और मधुर होती थी कि वो सीधे सुनने वाले के दिल को छू जाती थी। आज के दौर में भी जब हम उनके गीत सुनते हैं तो हमारा मन श्रद्धा, प्रेम और अपनेपन से भर उठता है। उनकी रचनाएं नई पीढ़ी के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। उनका योगदान केवल फिल्म संगीत तक ही सीमित नहीं था श्रोताओं, बल्कि उन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भरत व्यास की रचनात्मकता, सादगी और भारतीयता उन्हें अन्य गीतकारों से अलग पहचान दिलाती है। 4 जुलाई 1982 को श्रोताओं उनका निधन हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके अमूल्य योगदान को नमन करते हैं और उनके आदर्शों से हम प्रेरणा लेते हैं।

0: रजनीगंधा के आज के अंक से बस यही विदा दीजिए, मीनाक्षी को नमस्कार।
1: के मेरे नैन में आज हुए ओझल।
0: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया, आप सभी यही नहीं रुक

0: फूकने वाले हैं।
1: आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
2: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांड संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टियर 2 और टियर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खमेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से।

0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: भरत व्यास का जन्म राजस्थान के चुरू बीकानेर में हुआ। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भरत व्यास बीकॉम करने के लिए कलकत्ता चले गए। पढ़ाई के दौरान ही भरत व्यास ने तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में बतौर निर्देशक काम करेंगे। इसीलिए 1940 में वो बम्बई आ गए, जो अब मुंबई कहलाती है। कोशिश तो उन्होंने निर्देशक बनने की, परंतु उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था।
1: अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की गोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो।
0: भरत व्यास निर्देशक तो नहीं, गीतकार जरूर बन गए। उन्हें पहली फिल्म मिली 1943 में दुहाई। इसी साल संगीतकार एस के पाल ने उनसे कुल 10 गीत लिखवाए फिल्म प्रेम संगीत के लिए। इस फिल्म में भरत व्यास ने एक दो गीत गाए भी, जैसे मैं आगरे से जूता लाया रे, शांता ठक्कर के साथ इस गीत को गाया, और दूसरा गीत था घायल करके हमसे पूछती हो। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से अपना ही जहां तैयार कर, ये भरत व्यास के अपने विचार थे। सफलता पाने का उनका यही मंत्र था और इस पर उन्होंने पूरी तरह से अमल भी किया। इसीलिए हिंदी फिल्म संगीत जगत में भरत व्यास ने अपनी कलम, अपने गीतों के दम पर एक अलग पहचान बनाई।

भरत व्यास ने 1943 में एक देशभक्तिपूर्ण गीत लिखा फिल्म स्कूल मास्टर के लिए, संगीतकार नीनू मजूमदार के लिए, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। 1944 में फिल्म मन की जीत के लिए उनके लिखे गीत पॉपुलर हुए। एक गीत शांता ठक्कर के साथ भरत व्यास ने भी गाया, छिप छिप कर मत देखो।

0: गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो गोरा गोरा गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो हमरी नजर भर जाएगी हमरी नजर भर जाएगी नजर भर जाएगी नजर।
1: अपने फिल्मी जीवन में भरत व्यास ने लगभग सभी स्थापित और बड़े संगीतकारों के लिए गीत लिखे। भरत व्यास के लिखे गीत भजन सभी बेहद पसंद किए गए।

सन 1950 और 1960 के दशक में गीतकार भरत व्यास ने जिन संगीतकारों के लिए गीत लिखे उनमें कुछ चर्चित फिल्मों के नाम हम आपको बताते हैं। संगीतकार अनिल बिस्वास के लिए बड़ी बहू, अंगुली

संगीतकार अविनाश व्यास के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा, द्वारकाधीश राम लक्ष्मण, संगीतकार बी एन बाली के लिए बागी सरदार राजा विक्रम, संगीतकार सी रामचंद्र के लिए स्त्री

संगीतकार दत्ताराम के लिए बालक, संगीतकार हंसराज बहल के लिए नखरे, राजपूत, जग्गू, अपनी इज्जत, संगीतकार हेमंत कुमार के लिए सहारा, फैशन।

संगीतकार इकबाल कुरैशी के लिए चा चा चा, जमाल सेन के लिए पतित पावन, कल्याण जी वीर जी शाह इनके लिए बेदर्द जमाना क्या जाने, और सम्राट चंद्रगुप्त।

रोशन के लिए आगरा रोड, सरदार मलिक के लिए रूप सुंदरी, नाग मोहिनी और सारंगा।

वसंत देसाई के साथ जिन फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे वो सभी की सभी फिल्में बेहद मकबूल रहीं और गीत भी आज तक लोगों की जबान पे हैं। लड़की सह्याद्री की, मौसी, गूंज उठी शहनाई।

हमने यहाँ पूरी लिस्ट प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि भरत व्यास के लिखे गीत जिन फिल्मों में हैं, अगर सिर्फ उनके ही नाम लिए जाएं तो भी इस कार्यक्रम का समय कम पड़ेगा।

अनेकों कर्णप्रिय मधुर गीतों के इस रचयिता भरत व्यास ने 4 जुलाई 1983 को मुंबई में अंतिम सांस ली और अपने पीछे छोड़ गए एक सुरीली विरासत

0: गीतकार भरतव्याज पर केंद्रित आज के इस कार्यक्रम में हमें प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, आलेख और स्वर अमरकांत का अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। शाम ढली और चांद निकल आया, मैंने पलकी मूंदी और तेरा चेहरा नजर आया। हर अंदाज था जुदा, हर अदा थी निराली, बहुत भा रही थी मुझे ये खुमारी। तेरे जलवों में खोया रहूं, तेरी पनाहों में सोया रहूं, तेरी बाहों में ही मेरी रात गुजरे, दिन जो भी गुजरे अब तेरे साथ गुजरे। न वक्त की परवाह है मुझे अब, न जिंदगी की फिक्र है, तू ही मेरी मंजिल है, मेरी सांसों में बस तेरा ही जिक्र है।

वो नूर की बूंद जो चांद से टूटकर बिखरी थी मेरे वजूद पर, अब तक भीग रहा है जिस्म मेरा उसी में, छाया है धड़कनों में उसी का सुरूर सा। चांद से मिलने चला था, तेरा चेहरा नजर आ गया, कहकशां तेरे कदमों पर बिछाने की ख्वाहिश जो की, सितारों में सिमटा तेरा हुस्न महफिल में छा गया। तेरे लबों की जुम्बिश, तेरी सांसों की हरारत, निगाहों में है मस्ती और अदाओं में शरारत। शोखी तेरे हुस्न की है सबसे जुदा, हर अंदाज लाजवाब है और आंखों में है वफा।

0: कल रात मेरे सिरहाने पर चांद का एक टुकड़ा बिखरा हुआ था। शायद ख्वाबों में आकर तुमने ही उसे रखा था। सुबह सवेरे जब नींद खुली तो गुलों की चादर बिछी हुई थी। शायद तुम्हारे कदमों की आहट यहां कैद हो गई थी। दरीचे से बाहर झांका तो आंगन में मोगरे के फूल खिले हुए थे। शायद तुम्हारी मीठी हंसी की गूंज इन्होंने सुनी थी। आज धूप की किरणें ज्यादा ही सुनहरी हैं। शायद तुम्हारी मखमली जुल्फों को छूकर ही वो यहां आई हैं। चांदनी को ओढ़कर जब तुम निकलती हो सरे शाम, सारे दिए जल उठते हैं और दिल पुकारता है बस तुम्हारा ही नाम।
1: न झटको जुल्फ से पा

अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है छाया गीत में। तुम्हारी हसीन यादों का सफर अक्सर मुझे भीड़ में भी तन्हा कर देता है। फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। तपता रेगिस्तान भी मुझे ठंडी झील सा लगने लगता है और मैं एक मुसाफिर सा उसके किनारे बैठकर तुम्हें सोचता हूं। फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। जिंदगी जब थकाने लगती है तो तुम्हारी खुशबू का असर कुछ ऐसा होता है कि हर रास्ता छोटा लगता है, हर मंजिल आसान लगती है। मैं चल पड़ता हूं फिर से उठकर तुम्हारी उसी खुशबू और खूबसूरत याद को आंखों में समेटे।

0: एक रंग तुम्हारी निगाहों का, एक रंग तुम्हारी अदाओं का, एक रंग तुम्हारे लबों का, एक रंग तुम्हारे गालों का। उस रंग में रंगी हो तुम, उस रंग में रंगा हूं मैं, उस रंग में रंगी हैं हसरतें हमारी, उस रंग में उलझी हैं जुल्फें तुम्हारी, उस रंग में रंगी हैं ये वादियां, उस रंग में खिली हैं कलियां। कहते हैं उसे रंग इश्क का, कुछ मदहोशी का, कुछ सुर्ख सा
1: रंग।

आंखों से खींचकर तुम्हारे दामन को, तुम्हारी एक एक अदा को पलकों में कैद कर लिया। तुम्हारे हुस्न के साए में है अब मेरी मंजिल, तुम्हें देखकर तुम में ही मैं जी लिया। जब भी शाम आती है तुम्हारी खुशबू सी महक जाती है, जब भी सुबह होती है तुम्हारी सांसों में धुल जाती है। कभी मोहब्बत की आहटों सी तुम गूंज उठती हो, कभी मत भरी शामों सी बहक जाती हो, कभी गुनगुनी धूप बनकर सहला जाती हो, कभी चांदनी बनकर धड़कनों को बहला जाती हो। पास आती हो तो जिंदगी बन जाती हो, दूर जाती हो तो बंदगी बन जाती हो।

0: नहीं है।
1: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है समाचार। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ

0: 90 runs for the loss of 7 wickets in the allotted 20 overs. Jacob Bethel was declared player of the match. And that's the end of this news bulletin.
1: समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिली किए जा रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण यहीं संपन्न हुआ। कल के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।